0: Kia ora, namaste, sat sri akal, assalam alaikum, aur aapka swagat karte hain aaj ke is khoobsurat din ke khoobsurat show mein. Mera naam Ketan hai aur aap mujhe sun rahe hain Lunchbox mein. Hum it is Hum 104.2 FM. 104.2 FM. Well, ek cheez maine yahan aake suni hai, kal kafi funny bhi tha. Kal main aise hi Ruzbe se baat kar raha tha aur kuch aisi baat hui regarding कि यार मैं आजकल ही ऐसी सारी चीज़ें सुन रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यू कमर है यहाँ पे इन न्यूजीलैंड एंड दे जस्ट हियर दैट यहाँ पे जीरो को ओ बोलते हैं. इज दैट वियर्ड और नॉट वियर्ड? काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि ऐसी याद लगी मैं इंडिया भी जाता हूँ तो वहाँ पे नंबर जो बोलता हूँ मैं ओ बोलने लग जाता हूँ मैं. और वो सचमुच बोलते हैं कि यार न्यूजीलैंड में ऐसे नंबर भी होते हैं, वो लिटरली ओ दबाते हैं. तो ये कन्फ्यूजन तो थोड़ी होती ही है. बट आप मुझे बताइए, जब आपने पहली बार ये सुना था तो रिएक्शन कैसा था आपका? आप मुझे 5599 में बता सकते हैं. बट यस, एट द सेम टाइम मेक श्योर कि आप हमें होम सिक रेमेडीज़ के भी टेक्स्ट मैसेज भेजें. मैं आपके लिए फ़ोन लाइन भी ऑन करने वाला हूँ, सो इफ़ समवन वांट्स टू कॉल एंड डिस्कस अबाउट दिस, डू नॉट हेजिटेट, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं थोड़ी देर में. बट उससे पहले ये गाना चलाता हूँ, चल मार वाजिद की आवाज़ में, एंड देन ऑफकोर्स दिल विच लग गया सोनू निगम कुणाल गांजा वाला की आवाज में. एंजॉय करिए.
1: बचाओ क्या,

Welcome back. You are listening to Lunchbox, and of course, हम आ चुके हैं यहाँ पे तो आपके बीच बहुत सारी बातें करेंगे. Homesick remedies के लिए आपके लिए फोन लाइन ऑन हो चुकी है. वैसे what you can do is आप मुझे कॉल करिए अभी 0800-004-866 और कौन सी ऐसी स्पेशल चीज है exactly खाने वाली जो आप अपने शहर से डेफिनेटली मिस करते हैं और आपको ये भी पता है कि वो कहीं नहीं मिल सकती, एंड दैट विल बी अवेलेबल ओनली इन योर सिटी, योर टाउन और योर विलेज. तो आप मुझे बता सकते हैं 0800-004-866 पे. मैं अपनी बात करूं तो जब तक मुझे कॉल्स नहीं आते हैं तब तक मैं बताता हूं दैट वन थिंग आई रियली मिस इज द, एक तो क्या बोलते हैं उसको, सेव दाने दालों दाल मोटर मूंगफली. ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कहीं पे भी मिल सकता है, लेकिन जो टेस्ट है, जो नमकीन का जो टेस्ट है, वो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो एनी अदर सिटी और एनी अदर स्टेट और एनी अदर कंट्री कैन हैव इट. और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली मैंने ऑब्वियसली मैं बचपन से खाते आ रहा हूँ नमकीन जो हमारे उदयपुर में मिलती है. एंड अगर मेरे यहाँ पे कोई लिसनर है जो उदयपुर से है वो डेफिनेटली रिलेट करेंगे. टेस्ट काफ़ी लोगों को रतलामी टाइप लगता है, बट वो रतलामी नमकीन नहीं है, वो एक अलग तरह की नमकीन है. एंड आई लव इट, आई लव इट. ईच टाइम व्हेन आई कम बैक फ्रॉम इंडिया आई बाय लाइक यू नो अराउंड आई थिंक 2-3 kg और वो लेके मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड देन आई गिव इट टू लिटरली ऑल माई फ्रेंड्स और उनको सबको टेस्ट कराता हूँ. और वो खुद ही बोलते हैं दैट इट इज़ सो स्पाइसी, एक्सट्रीमली स्पाइसी, बट इट इज़ सो यमी एज वेल, लाइक यू कांट स्टॉप. एक बार खाओगे थोड़ी मिर्ची लगेगी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी, बट थोड़ी देर बाद फिर आपको क्रेविंग होती है उसकी कि यार थोड़ा और देना, थोड़ा और देना. सो यस, दिस इज़ वन थिंग, not just one thing but one of the thing which I miss a lot yahan pe. And anyone you know, jab bhi koi mere shahar se aata hai to main use pakka bolta hu bhai please ye leke aa jana, kapde vapde to hum yahi se khareed lenge, to please ye leke aana namkeen ki ye kahin pe nahi mil sakte hain. To aapke bhi zehen mein aisi kuch cheez ho jo aapke shahar mein milti hai, and you know that this thing is not cannot be cannot be available anywhere unless wo recipe agar koi leke aa jaye to baat alag hai.

बट यस, तो यस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं 0800-004-866 पे आप कॉल करके। चलिए जल्दी से आप मुझे फोन करिए, फोन लगाइए और 0800-004-866 पे कॉल करिए और बताइए। कुछ मैसेजेस मिले हैं बट आई एक्चुअली वॉन्ट टू लिसन टू यू वाइल ऑन द फोन। आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए कौन सी ऐसी चीज़ जो आप सचमुच बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, है कोई यहाँ पे, और इज इट लाइक आपको लगता है कि आपके यहाँ पे जो भी चीज़ मिलती है वो यहाँ पे भी मिलती है, तो इट इज़ नॉट यू नो इट इज़ नॉट वर्थ कॉलिंग, इज इट। किसी का मैसेज आया, आई एम फ्रॉम उदयपुर, विच पेरी ऑफ पार्ट ऑफ उदयपुर यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम उदयपुर, ये इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, बढ़िया सा। आई लिव नियर टू फतेह सागर, नॉट वेरी फार, सो या फतेह सागर के पास ये है, देवाली है, देवाली, आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, बट यस उस एरिया में हम रहते हैं। सो यस आप मुझे बताइए आप कहाँ से रहते हैं, बट यस कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए मुझे कि व्हाट इज द वन थिंग यू मिस अलॉट। अभी तक तो कॉल आ जाने चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, बट यस मैं पढ़ लेता हूँ तब तक मैसेजेस। अनु कहती हैं, आई मिस माय मम नॉकिंग ऑन माय बेडरूम डोर एवरी मॉर्निंग विथ अ कप ऑफ टी, इट यूज टू अनॉय मी बट नाउ आई वुड गिव एनी थिंग टू हैव दैट स्टार्ट टू माई डे अगेन। ये इन्होंने लिखा है, डेफिनेटली ये चीज़ तो हम सभी मिस करते हैं। जब भी मैं घर जाता हूँ तो मैं भी चाय का लुत्फ बहुत उठाता हूँ। एक्चुअली मैं मेरी आदत चाय की ना इंडिया से ही पड़ी है, लाइक जब भी मैं घर जाता हूँ हर दिन, नो डाउट क्वांटिटी उतनी नहीं होती है बट इतनी पीने को मिलती है। सुबह उठो चाय पी लो, खाली बैठे हो चाय पी लो, कुछ काम कर रहे हो चाय पी लो, ब्रेक लेना है चाय पी लो, सोना है चाय पी लो, उठना है चाय पी लो, खाना खाना उससे पहले चाय पी लो, यही चलता रहता था हमारा, बट क्वांटिटी वॉज वेरी लिटिल तो उससे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था। रोहन कहते हैं, माई होम सिक रेमेडीज इज होस्टिंग अ संडे लंच एट माई प्लेस वंस अ मंथ, एवरी वन ब्रिंग्स वन होम मेड डिश एंड फॉर अ फ्यू आवर्स इट फील्स जस्ट लाइक बींग बैक होम विथ फैमिली। वेल ये तो यहाँ पे भी होती है, आई हैव सीन मैनी फ्रेंड्स इन माई यू नो ग्रुप एज वेल, जो उनके खुद का जो सर्कल है वो ऑलमोस्ट हर वीकेंड पार्टी करता है, हर वीकेंड। वैसे आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं शबनम का, आई मिस सेलिब्रेटिंग बर्थडे वेयर द हाउस वुड बी फुल फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, हियर इट्स यूजुअली अ क्वाइट डिनर बट बैक होम एवरी बर्थडे फेल्ट लाइक अ फेस्टिवल। दैट इज सो ट्रू, बट थैंक यू सो मच, आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू गेट सम कॉल्स बट इट्स ओके, आपने मैसेज भेज दिया कोई बात नहीं, बट किसने बताया नहीं मुझे कि क्या ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है शायद सिर्फ मैं ही हूँ जहाँ की चीज़ कहीं और मिलती नहीं है। Hopefully I'm not right. Lunchbox with Ketan. Mujhe pasand hai ladka. 80s ke retro gaane.

0: Utoit plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
2: Sun Tours के successful March 2026 Best of India Tour के बाद अब bookings open है for Best of India September 2026 Tour. Delhi की shopping, Agra का Taj Mahal, Jaipur Amer Fort और Elephant Ride, LP में houseboat का experience और आम चे Mumbai की Bollywood Studios visit with all buffet meals, flights और 5-star accommodation. All for just $8,500 per person. Contact Anil on 0800 for Sun Tours. That's 0800 47 8686. Limited spaces.
3: Not everyone's path starts in February. Maybe you uni didn't feel right. Maybe you're still figuring things out. Start ahead with SIT. Jump into certificates and diplomas with flexible study options. And as the first to do zero fees, SIT could help your qualification cost a fraction of what you'd pay elsewhere. Study online or on campus and start building real skills for the future.
4: Say yes to success and zero fees. Say yes to a smarter future with SIT.
5: Start ahead at sit.ac.nz. SIT, a smarter choice.
6: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
7: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
8: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते हैं.
8: हम playing Bollywood's biggest hits.
10: Lunchbox with Ketan.
11: हीरा लड़का है. टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.
10: हम office shoutout.
12: ऑफिस शॉट डॉट के सेगमेंट में आपका स्वागत है. आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स. मेरा नाम केतन है एंड 104.2 एफएम के जरिए आप मुझे सुन सकते हैं. मुझे कॉल आए थे होम से रेमेडीज के लिए, बट उनको पता नहीं था. उनको लगा शायद अभी मैं ऑन एयर हूँ, बट वो ऑफ एयर जा चुका था. बट यस, थैंक यू यार आपके कॉल के लिए. बट यस, लेट्स टॉक अबाउट होम, सॉरी ऑफिस शॉट आउट. आप एग्जैक्टली अभी क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, आप मुझे बताइए. 5599 पे, जहाँ पे हम बात करेंगे बहुत सारी, एज एन लाइक यू नो, आप एग्जैक्टली क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, ये सारी बातें भी आप मुझे बता सकते हैं. और अगर आपने ऑर्डर किया है कि यू नो कुछ ऑर्डर किया है बाहर से, तो वो भी आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपने कहाँ से किया है और कौन कौन लोगों के साथ आप खा रहे हैं. सो यस, 5599 नंबर, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं ऑन 0800 004 866 पे. सो यस, लेट्स टॉक अबाउट पॉडकास्ट. मीनवाइल आई रिसीव एनी मैसेज और कॉल्स. एक पॉडकास्ट और नया रिलीज हुआ है जिसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात हुई है यहाँ पे. और हर जगह AI अब आ चुका है, यानी कि आप कोई भी काम ले लो, कोई भी, फ्रॉम स्टडी से यू नो प्लेइंग या फिर कुछ और बात हो, वहाँ पे भी साइंस से लेके नॉन साइंस वाली बातें या फिर कुछ यू नो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कुछ मैन मेड वाली चीज़ें, जो मैनुअल चीज़ें हैं, उन सब पे हर एक चीज़, हर एक जगह AI आ चुका है. इनफैक्ट अगर आप देखें मेरी फील्ड में, हमें लगता था कि जब AI आ रहा, ChatGPT आया था और तभी से AI की इतनी वो बातें होने शुरू हो गई कि AI जॉब खा लेगा. और हमें लग रहा था कि हम आर्टिस्ट लोगों की जॉब तो सबसे एंड में जाएगी, बट अदर वे राउंड हुआ, हमारी ही सबसे पहले जॉब पे खतरा आने लग गया. यू सी हाउ मेनी वीडियोज, हाउ मेनी क्रिएटिव पीपल आर ऑलरेडी नाउ इन द मार्केट, जो अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं आपको. उनके पास टूल्स नहीं हुआ करते थे, विजन हुआ करता था, बट दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट इट. सो नाउ एवरीवन हैज द ऑप्शन टू डू दैट. सो यस, जो पॉडकास्ट है, हमारी लाइफ पे AI का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसके ऊपर हमने रिकॉर्ड किया है. सो यस, एक पॉडकास्ट हमने रिकॉर्ड किया जिसमें सैंडी और उसबे बात कर रहे हैं AI एक्सपर्ट दर्शित पांड्या से, जो कि सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड AWS कम्युनिटी बिल्डर के साथ. जी हाँ, चैट जीपीटी, जॉब्स का फ्यूचर, प्राइवेसी कंसर्न, एआई के अपॉर्चुनिटीज और फ्यूचर रेडी स्किल्स पर सिंपल और प्रैक्टिकल डिस्कशन, ये बातें डेफिनेटली होगी। अगर आप एआई को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्यूरियस हैं और थोड़ा कंसर्न भी हैं, तो ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड आपके लिए डेफिनेटली है। मैं तो कहता हूँ सभी को सुनना चाहिए। जो फुल ऑडियो लिंक है वो आप हमें ड्राइव लिखिए 5599 पे भेज दीजिए, ताकि आप तक लिंक पहुंच जाए, या फिर आप हमारे रो ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं। बट यस, ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमें विजय और पूजा के साथ ब्रेकफास्ट कैचअप के बेस्ट मोमेंट और कन्वर्सेशन को भी सुनने के लिए आप हमें BF लिखिए और 5599 पे भेज दीजिए। जल्दी करिए, इट इज न्यू पॉडकास्ट जस्ट आया है, सबसे सिंपल 5599 पे ड्राइव लिखिए और भेज दीजिए, सो दैट AI वाला जो कंटेंट है वो आप सुन सके व्हाइल वर्किंग।
8: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

Well, Jila Hilala, Dev Negi aur Monali Thakur ki awaaz mein aapne gaana suna hai. But yes, let's move forward. Aur aaj ki history of New Zealand ki bhi thodi baat kar lete hain. 25 June, yani ki aaj ke din 1860 ki baat hai, jab first Maori king, yahan ke first Maori king Putatau Te Ferovero died after serving only 2 years as king. जी हाँ, और उसे 1958 में choose किया था as a leader the Kingitanga, यानी कि Maori King Movement को, जिनका जो aim था वो basically था Maori tribes को unite करना, protect करना, और of course जो land disputes होते हैं उसको लेके एक law को भी establish करना. So yes, before becoming king, Te Ferovero was a prominent Waikato chief known as a leadership during inter-tribal conflicts, जो कि काफी साइन ट्रीटी ऑफ वाइटंगी रिफ्यूज भी किया था, बट ही मेंटेन रिलेशनशिप विद कॉलोनियल अथॉरिटीज और उन्हें गवर्नर्स को एडवाइस भी किया था काफी मैटर्स में, यानी कि उन्हें काफी हेल्प भी करी थी पब्लिक मैटर्स में भी. वेल यस, हिज अपॉइंटमेंट वॉज नॉट इंटेंटेड बाय हिम एज अ डायरेक्ट चैलेंज टू क्वीन विक्टोरिया, बट काफी ऐसे कॉलोनियल ऑफिशियल्स व्यू थे जो माओरी किंगशिप से एज अ राइवल सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि इनके जरिए वो चीज काम करवाया करते थे. ये डायरेक्ट कभी क्वीन विक्टोरिया से इंपैक्ट नहीं करते थे, बट यस आफ्टर उनकी डेथ उनका जो बेटा है टॉफियाओ, जो कि काफ़ी सक्सीड रहा है, एंड ऑफकोर्स उन्होंने जो किंगडम था उसे कंटिन्यू भी किया था. किंगीटांगा मूवमेंट को भी इन्होंने कंटिन्यू किया था. सो यस, ये थी आज की हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड. आप बने रहिए, अभी थोड़ी देर में आपको एक और चीज़ बताऊंगा रिगार्डिंग पद्मश्री भूषण जो अभी मिला है अलका याग्निक को. उसमें एक अलग ही प्रेजेंस उन्होंने दिखाई है, काफ़ी उनके फैंस काफ़ी शॉक थे दैट वो इस चीज़ में क्यों, यानी कि वो लिटरली व्हीलचेयर पे आई थी और उन्हें सहारा लेना पड़ा समवन टू यू नो वॉक फ्रॉम द सीट टू ऑल द वे टू द स्टेज. क्यों ऐसा बताऊंगा थोड़ी देर में.

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
2: इसके पीछे
3: हम।
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।
5: ये

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: rewind. Sif rova par.
1: High five! High five? Anybody? No? Ah, that's right. It's $5 week at Pack and Save. Low five! Ah, that's more like it. Although this would make a lot more sense if I had fingers. $5 week, on now at Pack and Save.
2: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
3: Wo indelible homes wali kahani sunao na.
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
5: And award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
6: Kahani of Indelible Homes.
7: Discover the magic at Go Bananas Chai Ke, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hain.
8: Go Bananas Chai Ke is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
7: So jaldi join kare to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Chai Ke Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. So deher mat kijiye. Call 0800 46 26 26 today.
8: Available at selected branches. T's and C's apply.
9: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/local board plans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
10: Working hard deserves a serious reward. There's never been a better time to get into an LDV. Choose a free accessory pack worth up to $5,000 on new T60 Utes. Plus, get a $1,000 fuel voucher with every new LDV purchase, along with sharp finance options across the range. LDV. Built tough, priced right, and now packed with deals. Visit ldv.co.nz to find out more. Terms and conditions apply. Offer ends 31st July while stocks last.
11: Bunnings Trade is here to help get interior jobs sorted with a huge range of kitchen and laundry cabinetry, flooring, wardrobes and more. Our kitchen experts can help with the plan and design of your next job. Call 0800 134 872 to arrange a quote or book a consultation at Bunnings Trade.
12: Today only, donations to rebuild Hātohone St John ambulance stations will be matched dollar for dollar. So, every dollar you give today will go twice as far. Donate at lighttheway.org.nz.
13: Lunchbox with Ketan.
14: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
15: हम चटनी शॉट्स.
16: चलिए फटाफट से अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं. सबसे पहले बिजनेस से खबर. एक मुस्टिल एक्सप्रेस प्रोसेसिंग कंपनी पर डजन्स ऑफ फॉल स्मेल कंप्लेंट्स के बाद फाइन लगाया गया है. अथॉरिटीज का कहना है कि एनवायरमेंटल रूल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया गया. पॉलिटिक्स का अपडेट. नेशनल पार्टी ने इलेक्शन प्रॉमिस के तौर पर सोलर लोन्स अनाउंस किए हैं, जिससे होम ओनर्स अपने घरों पर सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं. साथ ही प्लानिंग रिफॉर्म्स का भी प्रॉमिस किया गया है. वेदर अलर्ट भी ये है कि साउथ आइलैंड में हैवी रेन और स्नो की वजह से स्टेट हाईवे 3 का एक हिस्सा टेम्परेली बंद किया गया है. NZTA ने ड्राइवर्स से एक्स्ट्रा कॉशन रखने और ट्रैवल से पहले रोड कंडीशन चेक करने की अपील की है. इंटरनेशनल न्यूज में वेनेजुएला में बैक टू बैक पावरफुल अर्थक्वेक आए हैं, जिससे कई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. स्पोर्ट्स से ऑल वाइट्स बेल्जियम के खिलाफ अपने मस्ट विन फीफा वर्ल्ड कप मैच से पहले कॉन्फिडेंट नजर आ रही है. टीम का कहना है कि अब फोकस सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पर है. एंटरटेनमेंट से टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्स की शादी की रूमर्स फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक हुई नहीं है. क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज. वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बताया कि स्टार ऑलराउंडर नेट सीवर ब्रंट की इंजरी सीरियस नहीं है और उनकी फिटनेस को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हाँ।

0: चेतन।
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम ड्राइविंग यू होम ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
5: Get the kids creating these school holidays with free arts and crafts workshops at Warehouse Stationery. From making slime or creating beaded animals to painting a Matariki masterpiece, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.com.
6: Roadside drug testing is here. New Zealand police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drug driving.
7: And फिर Mrs. Singh से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा? बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
8: Mrs. Singh।
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
0: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz। फिल्म बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल। इंडियाज फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल, स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर।
10: एक जबरदस्त कहानी है।
11: और टाइटल क्या है फिल्म का?
10: वेलकम टू द जंगल।
0: वेलकम टू द जंगल रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन 26 जून। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म। रेटिंग TBC।
12: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
11: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
12: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
13: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
14: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri-peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. All yours now. T's and C's apply.
15: Today only, donations to rebuild Hātohone St. John ambulance stations will be matched dollar for dollar. So, every dollar you give today will go twice as far. Donate at lighttheway.org.nz.
16: टाइम हो चुका है दिन के ठीक एक।
17: हम न्यूज ब्रॉट टू यू बाय लॉजिक फाइनेंस लिमिटेड, चेंजिंग लाइव्स विद लॉजिक।
18: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 1. A drop in diesel prices could bring some relief for struggling households. Transporting NZ says most truck stops have lowered theirs. Spokesperson Mark Stockdale says the price hikes have been felt across the board.
19: It's not like freight can stop moving. We need goods to be moved around the country. Those costs have to be passed on, and ultimately that flows through to the end user, the consumer.
18: Venezuela has been rocked by two strong back-to-back earthquakes. Both of a magnitude of more than 7, they hit in the space of less than a minute and saw buildings collapse across the capital, Caracas. Footage shows scenes of panic with people spilling onto the streets, surrounded by downed structures and debris. The Auckland Harbour Bridge may have to shut tomorrow. Strong winds with gusts of up to 95 km are expected from 1 to 6pm, which could see all lanes closed. Drivers are urged to pay attention to electronic message boards on nearby motorways. And wild winds are also causing headaches in the far north. Top Energy says the blustery conditions, along with bouts of recent heavy rain, are causing trees and branches to break and damage lines. Its website shows a number of power outages. To sport, Brazil has secured the top spot in Group C at the FIFA World Cup. Their 3-0 win over Scotland sees them finish ahead of Morocco on goal difference. The Moroccans survived a scare to eventually overcome Haiti 4-2. Scotland must now wait and see if they make the round of 32 as one of the 8 third-placed finishers. The final games in Group A are just kicking kicking off with Mexico facing the Czech Republic and South Africa playing South Korea. Football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup.
17: Sports News. Brought to you by

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चाल, आज 70% आज बारिश के आसार है। 19 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 9 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। आज का सनसेट होगा 5:14 पे।

0: with Ketan.
1: Kiran, namaste, sat sri akal, aapka swagat karte hain aaj ke is lunch box show mein fir se. अगर आप मुझे सुन रहे हैं 12 बजे से तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी अभी ज्वाइन किया है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. वैसे आप बने रहिए बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारी बातें होने वाली है आपके लिए. स्पेशली स्टार्ट करूंगा मैं लंच टाइम रेंट लाइन पे, यानी कि कुछ ऐसी रेंट वाली बातें करेंगे आप जो सच में आपको इरिटेट करती है, बट यू मे और मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग. और साथ में आपको मैं अपनी भी बात बताऊंगा. एंड ऑफकोर्स एज आई सेड दैट वी रिसेंटली हैव दिस पद्म जो इंडियन अवार्ड्स होते हैं, हाई जो प्रेसिडेंट की तरफ से अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे कि पद्म भूषण हो गया और बाकी सारे जो भारत रत्न है, ये सारे जो अवार्ड्स दिए जाते हैं जो अपनी फील्ड में अचीव करते हैं बहुत ही एकदम हाई रखी, तो उनके लिए अवार्ड्स होता है. तो उसमें हमने देखा है कि रोहित शर्मा को भी आई थिंक पद्मश्री या पद्म भूषण मिला है उन्हें. साथ में अलका याग्निक जो बहुत ही ब्यूटिफुल नाइटिंगेल ऑफ की कहा जाता है उन्हें, वो भी नाइटिंगेल नहीं एक्चुअली, बट या शी एक्चुअली रूल्ड 80s एंड 90s का एरा. और अभी रिसेंटली उन्हें हमने देखा है जब उनका वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे वो व्हील चेयर पर आई थी, तो काफ़ी लोग शॉक्ड हैं, उनके फैंस भी काफ़ी शॉक्ड हैं कि भाई इनको अचानक क्या हो गया, क्योंकि इतने टाइम से तो लाइमलाइट में थी नहीं, अचानक से दिखी हैं तो इस तरह से दिखी हैं दैट शी रियली नीड असिस्टेंट टू गो एनीवेयर. तो उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली उनके साथ हुआ है. बट यस, बॉलीवुड की भी अपडेट लूंगा यहाँ पे थोड़ी देर में, लेकिन आप मुझे लंच टाइम रेंट लाइन के लिए टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं.

0: एनीवे राइट सो यस लंच टाइम फ्रंट लाइन के लिए मैं थोड़ी देर में फोन लाइन भी ऑन करने वाला हूँ. आप मुझे मैसेजेस भी भेज सकते हैं. आई वुड लव टू हियर व्हाट यू थिंक द रेंट इज ऑल अबाउट एंड उसके बाद हम बात करेंगे मैसेजेस पे भी जो आप मुझे भेजेंगे. बट यस आई वुड लव टू हियर यू व्हाइल यू ऑन द कॉल. बट यस ऑकलैंड आप सभी रेडी हो जाइए फॉर एक अमेजिंग एंटरटेनमेंट होने वाला है. गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर स्टारिंग द लेजेंडरी सिद्धार्थ रंडेरिया. वेल उनके प्रोडक्शन में सिद्धार्थ रंडेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शंस लेके आ रहे हैं ये इवेंट. और लेट मी टेल यू एंड आई एम प्रीटी श्योर आप सभी को पता है और आप ये चीज़ फेस नहीं करना चाहोगे कि भाई हाउसफुल हो गया है और आप टिकट खरीदने से अभी भी वंचित हैं. वेल ये चीज़ ना हो इस वजह से अभी जाइए बिकॉज उनका रिकॉर्ड रहा है दैट व्हाटएवर शो वेयर ही गो एंड डू इट इट इज़ ऑलवेज हाउसफुल. जी हाँ हमेशा हाउस टाइम से पहले ही सोल्ड आउट हो जाता है. सो यस प्रीमियर टिकट पे जाइए और आप ले सकते हैं टिकट्स premierTickets.co.nz की वेबसाइट पे जाके. 3 जुलाई को ये इवेंट होने जा रहा है 7:30 बजे के बाद विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग शो एक्सचेंज ऑफर. जी हाँ एक ऐसे एक्सचेंज ऑफर में फंसते हैं जहाँ से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है जो आगे जाके काफ़ी अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेके आते हैं. और ऑफकोर्स हर एक पल हर एक बातों में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है बहुत ही हंसने को मिलेगा. डायलॉग एक से बढ़कर एक है. काफ़ी अमेजिंग आर्टिस्ट है काफ़ी बढ़िया एक्टर हैं एंड ऑफकोर्स गुजरात ह्यूमर भी इसमें भरपूर है. सो यस आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाइए और एंजॉय करिए शो जो कि होने वाला है 3 जुलाई को 7:30 बजे शाम के विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ऑकलैंड में.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: इसके पीछे ना 3-4 लड़कियां पड़ी हुई हैं.

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Want $500 to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
2: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
3: Oh my, oh my, Grey South Road, greater than ever.
4: South Auckland's buses just became a lot better.
3: Weymouth Road, way better buses.
4: With better bus routes, more frequent buses, more early morning and late night buses and more.
3: Woody, no worries, MIT, A-OK.
4: Search AT Better South Auckland Buses for details.
3: Airport, got your transport.
4: Then turn up and go.
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
9: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
8: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
9: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
10: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
11: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर। दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और 5-star अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन। कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours, दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6। लिमिटेड स्पेसेस।
12: लंच बॉक्स विद केतन।
13: मुझे पसंद है लड़का।
12: हम लंच टाइम रेंट लाइन।
14: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। और जल्दी से मुझे फोन करिए 0800-004-866 पे और आप मुझे बताइए लंच टाइम रेंट लाइन की कुछ बातें जो आपके साथ घटित हुई हो आज या फिर हो सकता है एनीवे बिफोर। रेंट लाइन के लिए आप मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और बताइए कुछ ऐसी बातें जो आपके साथ आज या कल या फिर कुछ वक्त पहले बीती हो। वेल यस, ये रहे कुछ मैसेजेस हैं, मीनवाइल मैं मैसेज भी पढ़ लेता हूँ। मोहित हेयर फ्रॉम मनुकाओ कहते हैं, पीपल रिटर्निंग शॉपिंग ट्रॉलीज एवरीवेयर एक्सेप्ट द ट्रॉली बैग, इट्स ओनली अ फ्यू मोर स्टेप्स, दैट इज सो ट्रू। थोड़ा सी देर आराम से रह सकते हैं, बट चलिए फोन भी उठा लेते हैं। हेलो,
15: हेलो,
14: हाय तनीज, सॉरी तनाज, आई ऑलवेज प्रोनाउंस इट अदर वे अराउंड, बट हाय तनाज, कैसे हैं आप?
15: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
14: एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ जी बताइए, क्या ऐसा रेंट लाइन हुआ आपके साथ, क्या ऐसी रेंट वाली बातें आप बताना चाहेंगे?
15: आज तो मेरी दुख भरी कहानी तो क्या बताऊँ, सब लेडीज की है।
14: अच्छा,
15: मैं सुबह उठ के देखा कि सन आउट है तो मैंने कपड़े धोए, बाहर सुखा दिए,
14: राइट,
15: और रेन, वो बारिश तो 2 बजे बाद होने वाला था ना, मौसम में दिखा रहा था बट अभी आ गया तो मैं कपड़े अंदर ले गई, मैं बोला बारिश अभी ड्रिजलिंग चालू हुआ है तो अंदर ले जाती हूँ ना।
14: हाँ हाँ हाँ।
15: जैसे मैं कपड़े अंदर ले गई फिर धूप निकली फिर मैं बाहर डाला कपड़े तो फिर बारिश आ गई, मैं बोला अभी नहीं रखती हूँ बाहर, अंदर डाल दिया मैंने कपड़े।
14: ये एक्चुअली बहुत कॉमन है यहाँ पे, ये नहीं बट हाँ, ये आपकी दुख भरी से सब रिलेट करेंगे, ये सभी की दुख भरी कहानी है। इनफैक्ट से कपड़ों का भी नहीं, कुछ और भी चीजों की होगी, हम प्लान करते हैं। इनफैक्ट मेरा भी एक शूट था आज, काम था एंड बिकॉज इट वाज सनी, बट जैसे मैंने कंफर्म किया उधर फिर बारिश हो गई, तो आई हैव टू पोस्टपोन इट अगेन। सभी की कहानी है और ये न्यूजीलैंड है, यहाँ पे यही रहता है वेदर, कब बारिश हो जाए कब नहीं हो कुछ पता नहीं चलता है। और एक ही चीज मेरे को लगती है, एक ही चीज मुझे लगती है दैट वेदर जो फोरकास्ट है वो एक्यूरेसी बताए दैट इज रेयर, राइट?
15: कभी नहीं होता। हाँ वही तो, मैं 20 साल से ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना विंटर में कि कपड़े यू नो बाहर धूप की वेट करते कि आज धूप आने वाली है तो आज कपड़े धोएंगे ना,
14: राइट?
15: इवन इफ यू टेक इट इन द ड्रायर इट्स नॉट द सेम थिंग एज ड्राइंग इन फ्रेश एयर ना।
14: तो फिर
15: हाँ,
14: दैट्स व्हाई यहाँ पे जो एक्सटर्नल ड्रायर्स और वो जो है ना वो बहुत अच्छा बिजनेस है। आप एक शॉप खरीद लो जहाँ पे वो ड्रायर उनकी मशीन होती है, बिकॉज दैट इज व्हाट मेनली हैड टू डू, राइट? वो ही लगता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है, क्योंकि घर पे तो सूखने
15: से। तो उन चोरों का क्या करूं, उसको मेंटेन करते मेरा सारा इनकम चला जाएगा।
14: वो भी है। बट कूल, थैंक यू तेनाज जी आपके कॉल के लिए। यू एक्चुअली कॉल करके बहुत ही बढ़िया बात बोली आपने, बट थैंक यू सो मच, यू हैव अ लवली डे।
15: थैंक यू,
14: बाय। चलिए दूसरा भी फोन उठाते हैं। हेलो, किससे बात हो रही है?
13: I'm शिफाली से।
14: Hi शिफाली, how are you?
13: I'm good, how are you?
14: All good, thank you. बताइए आज आपके साथ क्या घटना घटित हुई?
13: मेरे साथ घटना नहीं घटित हुई, मेरे साथ थोड़ा पहले हुआ था।
14: Right.
13: तो मैं अपने बच्चों को लेकर एक, मैं जगह का नाम नहीं बोलूंगी।
14: हाँ।
13: तो मैं बच्चों को वहाँ घुमाने लेकर गई, जैसे कि वो एक जैसे डिज्नीलैंड या रेनबो जोन ऐसा कुछ था।
14: अच्छा।
13: तो मेरी बेटी छोटी थी उस टाइम 4 साल की थी, क्योंकि दिसंबर की बात है।
14: राइट।
13: तो मुझे लगा कि ऐसे बड़े बड़े से राइड पे वो नहीं अलाउड होगी, क्योंकि एज और फिर हाइट भी होता है ना प्रॉब्लम। तो ऑपोजिट ही हुआ, जितने बड़े बड़े राइड थे उन सब में उन लोगों ने उसे जाने दिया, हाइट का कोई टेंशन नहीं था। और जो बच्चों के राइड है उसमें उसको अलाउ ही नहीं किया हाइट की वजह से।
14: So is she really tall or what?
13: नहीं इतना नहीं, पर जैसे 4 साल में मैंने उसकी हाइट नहीं नापी है। पर जैसे 80 से थोड़ी सी ऊपर ही है कि सेंटीमीटर से।
14: राइट।
13: हाँ तो पर जितने बड़े बड़े से राइट से जो एडल्ट के लिए होते हैं जो 110 होता है उन सब में अलग, उन सब में उसमें वो बैठी, पर जो बच्चों के राइड है जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए होते, तो मेरा बेटा तो सभी में गया, मेरी बेटी को अलाउ ही नहीं किया।
14: स्ट्रेंज,
13: आई नो राइट? कितना स्ट्रेंज। तभी मैं सोच रही, तो एक जैसे झूला सा था, जैसे आप बैठ जाओ उसे बेल्ट बांध के, तो वो उसे स्विंग की शेप में था, तो वो खाली बस ऐसे गोल गोल घूमेगा और कुछ नहीं, ऐसे कुछ ज्यादा स्पीड नहीं कुछ नहीं, उसने अलाउ ही नहीं किया।
14: राइट, काफी स्ट्रेंज बात है ये। ये ऑकलैंड में हुआ है?
13: हाँ
14: हाँ, नाउ वी नो किसकी बात कर रहे हैं आप। बड़ा ऑब्वियस।
13: तो पता चल गया।
14: हाँ अब तो पता चल ही गया। बट काफी स्ट्रेंज है, बट होप आपने जो टाइम है और सब बढ़िया एंजॉय किया होगा आपने वहाँ पे।
13: हाँ माशाल्लाह।
14: इज इट वर्थ गोइंग देयर, बिकॉज़ मैं कभी गया नहीं वहाँ पे। इज इट वर्थ गोइंग देयर?
13: हाँ, इट्स वेरी वर्थ, लाइक डिपेंड्स आप किस कौन से जोन से जाते हो, लाइक फ्रेंड जोन में जा रहे हो कि फैमिली की फैमिली लेकर जा रहे हो, बट अगर फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो बहुत ही मजा आएगा।
14: राइट, मेरे को बस खाली पेट जाना पड़ेगा, बस ये ऐसा है, क्योंकि राइड में पता पड़ा मैं खा के गया तो अलग ही, क्योंकि काफी साल हो गए मैं ऐसे राइड में बैठा नहीं हूं।
13: हां मुझे पता है, मेरा भाई गया था जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे, तो उसमें एक राइड ऐसे, लाइक अब तो पता ही चल गया, स्टेटस सीएम में उसमें बैठा था, तो उसने क्या तो उसने कैरेमल पॉपकॉर्न खाकर वो बैठ गया, लाइक मेरे को तो ऐसे घूमने से तो चक्कर आने लगता है, तो मैं, मेरे हस्बैंड नहीं बैठे, मेरा भाई, उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैंने कहा ठीक है।
14: Right.
13: वो जाकर जैसे ही बैठा वो वहां से उतरा, उसने कुछ बोला नहीं हमसे, वो सीधा घर चला गया, जान गई।
14: नहीं, सही है। बट कूल, थैंक यू सो मच आपके कॉल के लिए भी। यू ऑल्सो हैव वंडरफुल डे, एंड होप शी, आपकी बेटी माइंड नहीं करे कि मुझे मेरे ही ग्रुप में एंट्री क्यों नहीं मिली। बट कूल, थैंक यू, यू हैव अ लवली डे, बाय बाय।
13: थैंक यू, बाय। लंच के मंच पे
12: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Bollywood.
1: जो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स. मेरा नाम केतन है. अभी वैसे लेटेस्ट खबर पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं. काफ़ी अच्छा लगा अभी थोड़ी देर पहले सर से बात करके. फ़ोन पे बात करने का मज़ा ही अलग है. एटलीस्ट हम इंटरेक्शन अच्छे से कर सकते हैं. वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उस पर भी हम थोड़ा ध्यान देते हैं. ऑफकोर्स हमारी तरफ से भी जवाब आता है. अब क्या है कि मैसेजेस रीड करते हैं, उसमें उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन जो है वो पता नहीं पड़ता है. बट यस, अभी लेटेस्ट खबर ये है कि वेलिंगटन सिटी काउंसिल ने अपने रिफर्बिश्ड सेंट्रल लाइब्रेरी टे मटापिही के लिए बनाई गई लगभग $600,000 वेबसाइट पर रिव्यू शुरू कर दिया है. वेबसाइट के हाई कॉस्ट को लेकर पब्लिक और काउंसलर्स ने सवाल भी उठाने शुरू कर दिए, जिसके बाद स्पेंडिंग और प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस की जो जांच है वो भी की जा रही है. क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि इतनी बड़ी रकम एक लाइब्रेरी वेबसाइट के लिए जस्टिफाई करना काफ़ी मुश्किल है. जबकि काउंसिल फाइनेंशियल प्रेशर के सामने सामना कर रही है. सो लेट्स सी कैसा जाता है. बट यस, रिव्यू का फोकस होगा कि प्रोजेक्ट जो है उसकी कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग और वैल्यू फॉर मनी ठीक थी या नहीं पे बात करना. वेबसाइट लाइब्रेरी की रीओपनिंग प्रोजेक्ट्स का हिस्सा थी जो कई सालों की अर्थक्वेक स्ट्रेंथनिंग और रिफर्बिशमेंट के बाद दोबारा खुली है. जी हाँ, तो ये चीज़ तो चलो अच्छी बात है कि खुली है. बट ऑन अदर साइड पीपल आर सेइंग दैट $600,000 फॉर दिस प्लेस डजंट मेक सेंस. क्या लगता है आपको, इज इट रियली डजंट मेक सेंस और इट इज एक्चुअली वेल? आप ये तो आप बता सकते हैं, बट अभी आप बने रहिए बिकॉज मैं आपके लिए थोड़ी देर में लेके आने वाला हूँ मौका जहाँ पे आप मुझे कॉल करेंगे. मैं कुछ रैपिड फायर सवाल पूछने वाला हूँ फॉर राहत फतेह अली खान जी के शो के लिए. जी हाँ, उससे रिलेटेड कुछ भी सवाल हो सकता है. इट कुड बी एनीथिंग. सो यस, अगर आप डबल पास जीतना चाहते हैं उनके शो के फॉर फ्री, तो आप बस बने रहिए. थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे. बट यस, आई विल बी कॉलिंग यू, सो मेक श्योर कि आप फ़ोन भी फ्री रखें टू कॉल मी.

0: चेतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: हम
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
2: The Breakfast Show with VJ and Pooja,
6: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
2: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
8: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
2: Lunchbox with Ketan.
9: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
1: Iske piche?
2: Lunch ke munch pe.
4: Kira, namaste. Welcome back. You're listening to Lunch Box. और यहाँ पे हम बात करेंगे, for some reason I don't know like why the music is not playing, उसे थोड़ी देर में हम fix कर देंगे जल्दी. But जैसा कि मैंने आपको mention किया था कि अलका याग्निक इतनी legendary singer, you all know her, और उनके साथ जो अगर आपने देखा है कि you know कुछ अजीब सी मतलब मुझे personally as a big fan of वो जब आई थी भारत भूषण पद्म भूषण लेने आई थी, वो उन्हें ये चीज़ मिला था और वो व्हीलचेयर पे पहले तो आई थी और उसके बाद उन्हें असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ी स्टेज तक जाने के लिए. तो मुझे लगा कि यार ऐसा क्यों होगा, लाइक होपफुली शी इज़ ओके और नॉट. बट देन थोड़ा मैंने रिसर्च किया है तो बेसिकली लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को बहुत ही नर्व हियरिंग लॉस की वजह से एक सडन वायरल अटैक हुआ था, जिसे कहते हैं रेयर सेंसोन्यूरल एक तरह की, मतलब काफ़ी लोगों ने सुना नहीं होगा ये, बट ये चीज़ उन्हें हुई है और उस वजह से उनकी सडन जो हियरिंग पावर है वो चली गई और उसी वजह से उन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, दे रहा है. और इसी वजह से प्रोफेशनली स्टूडियो से भी वो जहाँ पे वो रिकॉर्डिंग किया करते थे उससे भी लास्ट के 2 से 3 साल पिछले 2-3 सालों से वो दूर है. बट यस, इट इज़ वेरी सैड टू सी अवर लेजेंडरी जो हम बचपन से सुनते आए, बचपन से एक्चुअली हम नहीं, हमारे पापा भी उनके गाने सुनते आए हैं. आई थिंक 80s से तो डेफिनेटली उन्होंने गाने रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए, इतने एक से बढ़कर एक गाने, और मेरे को लगता है उनको कोई अभी तक रिप्लेस कर पाया. व्हाट यू थिंक, आपका फेवरेट गाना जो है क्या है अलका याग्निक का, मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं 555 पे.

0: वेलकम बैक, म्यूजिक भी आ चुका है, क्या बात है। बढ़िया लगता है यार, म्यूजिक अगर बैकग्राउंड में चल रहा है तो आई लव टॉकिंग व्हेन द म्यूजिक इज देयर। नहीं तो डेड सा साउंड करता है यार, डेड सा साउंड करता है। वैसे आप बताइए, इज इट विदाउट म्यूजिक और विद म्यूजिक कौन सा अच्छा लगता है आपको? मुझे 5599 पे टेक्स्ट कर सकते हैं वैसे तो। बट यस, आप बने रहिए, इस आर में भी काफी कुछ आपके लिए स्पेशल चीजें लेके आऊंगा। नया मैच शुरू हो चुका है फीफा, अगर वर्ल्ड कप आप फॉलो कर रहे हैं तो। अभी हाल फिलहाल चल रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेज कोरिया रिपब्लिक, एंड सेशिया एंड मैक्सिको के बीच में भी मैच हो रहा है, उनके बीच में भी मैच हो रहा है, तो देखते हैं अभी क्या स्कोर रहता है। आगे जाके हम आपको जरूर अपडेट करेंगे, बट उससे पहले कुछ और भी मैचेस हुए हैं। स्विट्जरलैंड वर्सेस कनाडा, स्विट्जरलैंड ने 2-1 से जीत लिया है मैच। बोस्निया वर्सेस कतार में 3-1 से मैच जीता है बोस्निया ने। स्कॉटलैंड वर्सेस ब्राजील में मोरक्को वर्सेज हाइती में मोरक्को मैं मोरक्को ना बचपन में ना मोनेको करता रहता था, यानी कि मोनेको बिस्किट आते हैं ना इंडिया में, वो करता था। बट यस, मोरक्को जीत चुकी है 4-2 से, और बाकी के दो मैच जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो अभी चल रहे हैं। इट इज नॉट देयर येट, मतलब अभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है, बट स्कोर में 0-0 दिखा रहा है, तो हाँ मतलब लग रहा है शायद टीम ग्राउंड में जा रही होगी। सो यस, आप बने रहिए, ऐसे और भी खबरें मैं आपको दूंगा, कुछ और भी स्पोर्ट्स के बारे में बताता रहूंगा, लेटेस्ट खबर भी लेके आऊंगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करते रहिए मेरा शो अंटिल 3। बचाओ क्या?
1: इश्क वो बला है, इश्क वो बला है, जिसको छुआ इसने वो जला है।

0: Welcome back. Well, yes, अभी आप सभी के लिए मैंने फोन लाइन जो है शुरू कर दी है, जहां पे आपको मुझे कॉल करना है और बताना है वो सवाल के जवाब जो मैं आपसे रैपिड फायर में पूछने वाला हूँ। तीन सवाल करूंगा, उन तीनों के जो भी सही जवाब देगा वो ले जाएगा अपने चांस ड्रॉ में शामिल होने के, और वो ड्रॉ आपको मौका देगा डबल पास जीतने का। सो यू नेवर नो, आज आपका दिन हो सकता है बहुत लकी हो, आप क्या पता यहाँ पे भी ड्रॉ में शामिल होकर टिकट जीत जाए और उसके बाद आप लॉटो भी जीत जाए, यू नेवर नो। सो यस, जल्दी से फोन उठाइए, मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे। यहाँ पे शो होने जा रहा है बहुत ही जल्द हमारे शहर में 25 जुलाई को, जी हाँ 25th of July, जो कि प्रेजेंट किया है जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन की तरफ से। dryTickets.com पर जाके आप टिकट ले सकते हैं, बट यहाँ पे आपके पास मौका है जहाँ पे आप जीत सकते हैं मौका ड्रॉ में शामिल होने का, और यस डबल पास जीतने का भी फॉर फ्री। सो यस, फोन उठाइए और मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे, ताकि हम यहाँ पे आपको मौका दें वो तीन सवाल पूछने का, तीन सवालों के जवाब देने का, जिसने बहुत ही कम टाइम पे जवाब दे दिया दे विल गो इनटू ड्रॉ फॉर द शो। चलिए पहला कॉल आ रहा है, बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: किससे बात हो रही है? हेलो
1: एच
0: ASH, ऐश, कैसे हो ऐश भाई?
1: बढ़िया हैं, आप सुनाइए, गाने सुन रहे हैं आपके खूबसूरत।
0: क्या बात है, थैंक यू, होप यू एंजॉयिंग।
1: यस आई एम
0: परफेक्ट। वेल यू नो द रीजन ऑफ कॉल, आपको मैं तीन फटफट से सवाल करने वाला हूँ राहत फतेह अली खान के से रिलेटेड, एंड जैसे ही आपने जवाब दिया तो आप ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे और जीत सकते हैं 25 जुलाई के शो के इवेंट का फ्री टिकट, वो भी डबल पास, यानी कि दो टिकट मिलेंगे आपको।
1: ऑलराइट, आई कैन ट्राई।
0: परफेक्ट। चलो पहला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ आप कितना जानते हो राहत फतेह अली खान को, नॉट पर्सनली ऑफ कोर्स, बट कितना आप फॉलो करते हो, कितना आप जानते हो?
1: I like her, his song. Few songs I like very much. Yeah.
0: Right. तो पहला सवाल मेरा ये है कि राहत फतेह अली खान कौन से मंथ में पैदा हुए थे?
1: अरे बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ
0: लिया। मतलब पहले ही ऐसा बोल दे, अरे भाई क्या यार, थोड़ी ट्रायल बॉल तो डाल।
1: मैंने गाना वाना पूछे, मुझे जन्म पत्री थोड़ी पता उसकी।
0: ये भी सही है। अच्छा एक गाना जो मेरा फेवरेट, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं पूछूंगा वो कौन सा है, मैं बस आपको हिंट देता हूं कि इनका एक गाना काफी फेमस हुआ था जिस पे पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है किसी ने।
1: हाँ जी हाँ।
0: तो वो गाना कौन सा है?
1: सलमान खान।
0: नहीं, गाना कौन सा है?
1: क्या बात है।
0: पहला
1: क्वेश्चन पता है, पर जन्म पत्री नहीं पता पैदा हुए
0: थे। हाँ अभी खैर मेरे और ही जन्म पत्री के आसपास ही वाला एक और क्वेश्चन था, वो तो पूछने से मैं पूछने वाला इनकी वाइफ का क्या नाम है वो नहीं याद। चलो कोई बात नहीं। वैसे आखिरी बार कौन से ईयर में आए थे ऑकलैंड राहत फतेह अली खान?
1: 2 साल पहले आए थे शायद।
0: राइट, कौन सा ईयर था 2 साल पहले? आई एम वेरी गुड इन मैथ्स, पहले बोल रहा हूँ मुझे पता है, बट आई एम आस्किंग यू
1: 2024।
0: परफेक्ट। अब आपने पहले ही आपने वैसी बात की है तो अभी मेरे को थोड़े का सवाल बदलने पड़ेंगे। आपको ये पता है, ये एक और शख्स आ रहे हैं यहाँ पे इनके साथ, वो इनके क्या लगते हैं?
1: वो इनके भतीजे लगते हैं।
0: क्या लगते हैं?

0: इनके नेफ्यू?
1: नहीं, नेफ्यू नहीं लगते, आई थिंक, आई डोंट थिंक सो नेफ्यू लगता है.
0: यार तुमने सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे थे, डिफिकल्ट डिफिकल्ट.
1: नहीं नहीं, बहुत इजी यार, ये तो मतलब ये तो
0: भाई मैंने सोचा कुछ काम बन जाएगा, पर ये तो आपने तो
1: वेल आपसे वैसे बात करके काफी इंटरेस्टिंग लगा. वैसे आप काफी क्लोज हैं, बट वो उनके भतीजे नहीं, उनके बेटे आ रहे हैं इनके साथ.
0: चलो कोई बात नहीं.
1: शेजवान खान, जी हाँ. बट
0: मर्जी है, डाल देना नहीं डालना नहीं सही, हम तो हर हाल में खुश हैं.
1: नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपका भी दिन बहुत ही बढ़िया रहे, और यू एंजॉय द सॉन्ग. थैंक यू, बाय बाय.
2: लंच बॉक्स विद केतन.
3: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
2: Bunnings Traders here to help get insulation jobs sorted. Save time and money with Earthwall Glasswall R7.0. It's quick and easy to install in a single layer, meeting H1 ceiling compliance. Call 0800 134 872 to arrange a quote and easy on-site delivery at Bunnings Trade.
3: If your bank makes gajillions in profit, how come you never get a slice of it? At the Cooperative Bank, we share our profits directly with our customers. Over $25 million and counting, in fact.
4: Better.
3: To prove we put our money where our mouth is, if you switch your banking to us, you'll get a share of $25,000. Not bad, eh?
4: Better.
3: Bank Better New Zealand. Switch to the Cooperative Bank today. Apply by the 31st of July. T's and C's and eligibility criteria apply.
5: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
6: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
7: And award goes to Indelible Homes.
6: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
8: Film bilkul fake aur danger ekdam real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
9: Ek zabardast kahani hai.
10: Aur title kya hai film ka?
9: Welcome to the Jungle.
8: Welcome to the Jungle, releasing in cinemas on 26th June. Distribution partner Forum Films, rating TBC.
11: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
12: Sorry about that.
11: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true.
12: Kogan Mobile, true Aussie value.
11: Terms and conditions apply.
13: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
14: Kabhi bhi, kahi bhi. Mast malang jo. Lunchbox with Ketan.
15: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
14: Iske piche.
13: Hum.
14: Skip your replay.
16: वेल चलिए बात करते हैं एक लेटेस्ट खबर की। अभी आई है ऑकलैंड पुलिस और एक 13 इयर्स ओल्ड लड़की एमिली का परिवार ने पब्लिक से मदद मांगी है, यानी कि दे हैव रिक्वेस्टेड टू एवरीवन हु आर लिसनिंग ओवर हियर एंड टू हूएवर इज गोइंग टू रीड द न्यूज़ ऑनलाइन। एमिली को कल आफ्टरनून मिसिंग रिपोर्ट की गई है और पुलिस को लगता है कि वो आज सुबह सिल्वर पार्क एरिया में देखी गई है। जी हाँ, जो 13 साल की लड़की है एमिली, जो आज ऐसा लगता है पुलिस को कि उन्होंने सिल्वर पार्क में शायद उन्हें देखा है या देखी गई है किसी के थ्रू। एमिली जो ओपाहेके साउथ ऑकलैंड की रहने वाली है, लास्ट टाइम रेड जंपर, ब्लू डेनिम 3/4 पैंट्स, ब्लैक स्नीकर्स और ग्रे नेट बैग के साथ देखी गई थी। मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आप बाहर है, यू नेवर नो, यू माइट बी द वन हु कैन फाइंड द पर्सन, और सडनली अगर आपको दिख जाए तो आप डेफिनेटली इन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो उन्होंने लास्ट जो कपड़े पहने थे वो थे रेड जंपर्स, ब्लू डेनिम 3/4 पैंट्स, ब्लैक स्नीकर्स और ग्रे नेट बैग के साथ देखी गई थी। पुलिस और फैमिली दोनों उनकी सेफ्टी को लेकर काफ़ी कंसर्न है। तो यस, जिस किसी को भी एमिली दिखती है या उनकी जैसी दिखती है, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन हो उन्हें पुलिस को 111 पे कॉल करके बता सकते हैं या फिर 105 के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करने की अपील भी कर सकते हैं। सो यस, एमिली जो कि 13 साल की है इज़ मिसिंग फ्रॉम यस्टरडे और उन्हें आखिरी सिल्वर पार्क में देखा गया था। तो जस्ट इन केस इफ एनीवन ओवर हियर जो सिल्वर पार्क की तरफ जा रहे हैं या फिर यू नो वहीं पे हैं ऑलरेडी जो मुझे सुन रहे हैं, जस्ट कीप एन आई ऑन यू नो अराउंड कि क्या पता आपको शायद वो एमिली वहीं पे हो अभी हाल फिलहाल।
14: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

What a song यार, हीरिये, ये वो वाला हीरिये हीरिये। जसलीन रॉयल ने भी इसमें हिस्सा लिया है, उन्होंने भी अपनी आवाज़ दी है, बट बहुत ही खूबसूरत गाना यार, अरिजीत सिंह ने गाया है। अब तो यार अरिजीत सिंह भी धीरे धीरे प्लेबैक मूवीज़ में तो कम ही करेंगे, वो अपने सिर्फ सोलो एल्बम पे ही काम करना चाहते हैं। जो एक्चुअली देखे तो नॉट रॉन्ग, बिकॉज ऑफ कोर्स सबका अपना अपना यू नो पर्सनल गोल होता है, और वो अरिजीत सिंह अभी इस स्टेज पे है कि एक्चुअली पीपल, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेसिकली। हो सकता है इंडस्ट्री को फ़र्क पड़े, हमको भी पड़े, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फिर भी ऑडियंस जो है मिलेगी ही कल को जब भी वो नया गाना लेके आते हैं। ऑफकोर्स कमर्शियली हम उनको ज़्यादा सुन नहीं पाएंगे, बट ऑफकोर्स उनके चैनल पर तो डालते रहेंगे और लाइव शोज तो वो करते ही रहेंगे। मैं बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से मैं उन्हें फिर से देखूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे डेफिनेटली मैं जाऊँगा उनके शो को देखने। बट यस, सनराइज व्यूज या फिर नई दोस्ती या फिर एक रोड ट्रिप प्लेलिस्ट, साथ में बहुत सारा खाना और एंडलेस लाफ। जी हाँ, मैं कोई मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई स्टोरी है किसी फिल्म की, ये एक्चुअली आपकी खुद की स्टोरी हो सकती है। इट कुड बी योर ईस्टर 2027। काफी इनकम्प्लीट लग रहा है, राइट? वेल, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको ट्यून इन रहना पड़ेगा, बिकॉज हम जल्द ही आपको इसके बारे में बताएंगे कि एग्जैक्टली मैंने ये क्या कहा और क्यों कहा और इसके पीछे का मकसद क्या है।

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Dad, I feel sick.
3: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness. Avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz
7: Today only, donations to rebuild Hātohone St. John ambulance stations will be matched dollar for dollar. So, every dollar you give today will go twice as far. Donate at lighttheway.org.nz.
8: The red hot sale is on now at Mazda, with great deals across a range of SUVs. But hurry, these prices are too hot to last. Don't miss out. Head to Mazda.co.nz and book a test drive today. Mazda.
9: As a baby, I was burnt in hot water.
10: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
11: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
12: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
13: Non-stop Bollywood.
14: Hum.
13: Playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
15: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
13: इसके पीछे.
14: हम.
13: TikTok.
16: Well, TikTok की बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको अपडेट दे देता हूँ अभी मोरक्को वर्सेस हाइती के बीच में सॉरी सेजिया वर्सेस मैक्सिको के बीच में जो मैच हो रहा है 79 मिनट्स बीत चुके हैं और दो गोल हो चुके हैं मैक्सिको की तरफ से विच इज़ लुकिंग ग्रेट ग्रेट यानी कि बट वही है फुटबॉल है आखिरी मिनट में कुछ भी हो सकता है यू नेवर नो गोल पोस्ट हो गया फिर पेनाल्टी हो गई कुछ भी हो गया तो यू नेवर नो उसकी तरफ दूसरी अगर तरफ देखें साउथ अफ्रीका वर्सेस कोरिया रिपब्लिक में साउथ अफ्रीका ने एक गोल से बढ़त ले ली है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग जारी है बट ज़्यादा उतना डिफरेंस नहीं एक भी गोल हुआ तो ये ड्रॉ हो सकता है तो देखते हैं क्या होता है बट कल के मैचेस की भी अपडेट देता हूँ क्रोकाओ वर्सेज कोच देवेरो के बीच में मैच है इक्वेडोर वर्सेज जर्मनी के बीच में मैच है जापान वर्सेज स्वीडन Tunisia versus Netherlands, Turkey versus USA, Prague versus Australia के बीच में कल मैच है इसे आप देख सकते हैं पर यस अगर क्रिकेट की अगर बात करें जो ऑफकोर्स T20 वर्ल्ड कप चल रहा है कल के दिन कुछ मैचेस हैं उन्हें बताऊंगा लेकिन आज इंग्लैंड वर्सेज वेस्ट इंडीज के बीच में मैच हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने 38 रनों से मैच जीत लिया है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ यानी कि इस बार ये मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ का पहली हार है और इंग्लैंड मेरे को लगता है सेमीफाइनल में पहुंच भी चुकी है कल मैच होने वाला इंडिया वर्सेस बांग्लादेश साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड नॉर्वे वर्सेस लक्समबर्ग इनके बीच में मैच होने वाला और स्टैंडिंग की अगर बात करें राइट स्टैंडिंग कहाँ आता है राइट ओके यप दैट इज ट्रू और ऑफकोर्स दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया इज ऑन टॉप वेरी मच इंडिया इज़ ऑन सेकेंड साउथ अफ्रीका इज़ ऑन थर्ड एक जीत से ऊपर आ गई है और उसके बाद अगर ग्रुप बी की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड के चांसेस टफ हो रहे हैं बट लेट्स सी कैसा जाता है इंग्लैंड इज़ ऑन टॉप जो कि चारों मैच जीत गई है और पहुंच चुकी है सेमीफाइनल वेस्ट इंडीज़ अभी पहली हार का सामना करना पड़ा

एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. बहुत ही बढ़िया आज का दिन, समय, बातें एंड आपके साथ जो हमने गपशप की उसके बारे में भी. बट यस, बने रहिए. सैंडी विल बी जॉइनिंग शॉर्टली फॉर द कॉफी ब्रेक, बट आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम 12 से 3. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू.

3:04 हो चुके हैं और वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके मेरा और आपका साथ 4 तक कॉफी ब्रेक पे रहने वाला है और 4 के बाद यहाँ पे ड्राइव शो शुरू हो जाएगा। सो कैसे है आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? इट इज 25th June एंड अगर आज आपका बर्थडे है और वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे थर्सडे को हम ऑलमोस्ट फ्राइडे भी कहते हैं, इट फील्स लाइक ऑलमोस्ट फ्राइडे एंड एक वीकेंड और है और उसके बाद एक वीक और है और उसके बाद एक्चुअली में लॉन्ग वीकेंड आने वाला है माथा रिकी का, लेकिन उसके बाद बहुत देर बाद लॉन्ग वीकेंड आएगा। सो लॉन्ग वीकेंड से याद आया, अगले साल ईस्टर 2027 में अभी तक आपने कुछ अगर प्लान नहीं किया है तो सुनते रहेगा, बहुत ही जल्दी यहाँ पे कुछ आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। हो सकता है कि उस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग यहाँ पे कर लें।

0: PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. A mass food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz.
1: पर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में अगर बातें करते हैं तो आज जो मैचेस रहे स्विट्जरलैंड और कनाडा के बीच में, स्विट्जरलैंड की जीत हुई 2-1 के साथ। बॉस्निया एंड कतार के बीच में जो मैच था, बॉस्निया की जीत हुई 3-1 के साथ। देन मोरक्को एंड हाइटी के बीच में जो मैच था, मोरक्को की 4-2 के साथ जीत हुई। स्कॉटलैंड ब्राज़ील में जो आज का मैच रहा, उसमें ब्राज़ील की 3-0 के साथ जीत रही। एंड वैसे आज अर्ली में जो जो मैचेस हुए वो थे साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया का। साउथ अफ्रीका 1-0 से जीता। एंड चेक्सिया एंड मैक्सिको के बीच में जो मैच रहा, मैक्सिको की 3-0 के साथ जीत हुई थी। कल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच एक्चुअली में रहने वाला है। जर्मनी का जो मैच है कल, ये भी रहने वाला है। जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, तुनिसिया, ये कंट्रीज एक्चुअली में कल खेलने वाली है, जिसकी अपडेट्स यहीं पर आपको मिलती रहेगी।
2: कॉफी ब्रेक विद सैंडी।
3: उससे कोई पर्सनल सवाल नहीं पूछते, गुस्सा हो जाती है और सब बस कर देते सब।
4: 80s के रेट्रो गाने।

0: Don't be an egg. Have a crack at putting eggshells in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
1: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
2: क्यों? क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

3:18 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड फुटबॉल के बारे में हम यहाँ पे बात कर ही रहे थे। तो खैर ये जो गाना था जो कि फीफा के ऑफिशियल सॉन्ग्स की जो एल्बम आई है उसमें से वन ऑफ द सॉन्ग है जिसे नोरा फतेही ने गाया है। अगर आपने नहीं अभी तक सुना है तो गाना आप यहाँ पे सुनेगा एंड कुछ कॉम्पिटिशन्स भी है आज आपके लिए ड्राइव शो में, जैसे कि राहत फतेह अली खान के शो के लिए डबल पास जीतने का मौका आपको मिलने वाला है। रैपिड फायर सवाल आपके लिए रहेंगे जहाँ पे 3 सवाल रहेंगे एंड तीनों सवाल के जवाब आपको देने हैं, हर एक सवाल का जवाब विद इन 5 सेकंड्स में। इजी सवाल होते हैं सो राहत फतेह अली खान के बारे में ही होते हैं, उनके गानों के बारे में होते हैं। सो ऐसे कुछ सवाल आज भी आपके लिए रहने वाले हैं तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड।

326 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड मैं न्यूज पढ़ी थी रिसेंटली हमारे यहाँ पे सुपर सिटी में वैसे FIH हॉकी टूर्नामेंट के लिए इंडियन टीम भी यहाँ पे आई हुई थी, जो कि हॉकी टूर्नामेंट यहाँ से जीत के गई है, नेशंस कप यहाँ से जीत के गई है. हॉकी के रिलेटेड एक और न्यूज भी है, एंड दिस इज अबाउट तनुश्री दिनेश. सो तनुश्री जो है ये एक्चुअली में इसके बारे में इस बार न्यूज़ आई है बिकॉज द आर्टिकल जो है एक्चुअली में रीसर्फेस हुआ है बिकॉज इसकी सिलेक्शन के लिए फॉर इंडिया जूनियर वुमेन हॉकी टीम के लिए. नाउ तनुश्री की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है. शी इज़ अ डॉटर ऑफ अ टेलर फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज जो कि महाराष्ट्र में है. एंड सिलेक्शन जिसकी हुई है, लेकिन इसने 10 साल की उम्र से खेलना शुरू किया. शी पिक्ड अप अ हॉकी स्टिक एट द एज ऑफ 10. सो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी तभी हॉकी स्टिक उठाया कि हॉकी खेलते हैं. एंड फ्रेंड्स के साथ इसको हॉकी खेलना 10 साल की उम्र से पसंद था, बट बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड था. सो लेकिन मुश्किल था, बट स्टिल उसने स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट, स्पेशली हॉकी में डिटर्मिनेशन के साथ अपना इंटरेस्ट आगे रखा. एंड आई थिंक यहाँ पे हैट्स ऑफ टू पेरेंट्स एज वेल, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया. बिकॉज कई बार ये भी होता है कि अगर यू नो आप फाइनेंशली वेल भी नहीं है घर पे, एंड स्पेशली घर पे अगर बेटी कह रही है कि स्पोर्ट्स में उसको ये सब करना है, तो कई बार मोटिवेशन ज़्यादा नहीं मिलती है. तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है मोटिवेट करने के लिए आगे, और उसको के लिए जो रेवेन्यूज़ है ये ओपन अप करने के लिए. सो यस, इसी डिटर्मिनेशन के कारण तनुश्री आगे बढ़ती गई, एंड स्लोली शी अर्न्ड हर सिलेक्शन एज वेल, विच इज़ अमेजिंग. यूके टूर किया था वैसे इस टीम ने, जहाँ पे इंडिया प्ले 7 मैचेस अगेंस्ट टीम्स फ्रॉम स्कॉटलैंड, US, इंग्लैंड, बेल्जियम. सो ये प्रेपरेशन थी फॉर द अपकमिंग इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिसमें जूनियर एशिया कप है. सो तनुश्री हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द मिड फील्डर्स इन द स्क्वाड. नाउ एक स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र से टू वेयरिंग इंडिया की जर्सी, एक टीम की जर्सी, बहुत सारे बच्चों का यू नो ऐसा ड्रीम होता है कि ये जर्सी जो है यू नो वाइल वॉचिंग द स्पोर्ट्स की एक दिन ये 10 नंबर की या 18 नंबर की या कोई भी जर्सी हमें भी पहननी है. तो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग अचीवमेंट आई विल से. एंड अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो बताइए कि किस स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्टेड है. एंड कोई बोर्ड गेम्स में भी इंटरेस्टेड होता है, आजकल तो बोर्ड गेम्स में भी बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं, नॉट नेसेसरी कि बार फिजिकल एक्टिविटीज़ में. बोर्ड गेम्स लाइक चेस, इसमें भी काफ़ी बच्चे जो है ये इंटरेस्टेड रहते हैं. आपके अगर बच्चे हैं और वो इंटरेस्टेड है किसी गेम में, किस गेम में वो इंटरेस्टेड है, किस स्पोर्ट्स में वो इंटरेस्टेड है, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं आप कॉल करके या फिर मैसेज करके 5599 पर.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट का गाना भी हम यहाँ पे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले वैसे बताने का वक्त आ चुका है पॉडकास्ट के बारे में जो हमने रिसेंटली रिकॉर्ड किया है। कल ही इस पॉडकास्ट को हमने रिलीज किया है। एंड ये जो पॉडकास्ट है गाइस, ये हम सबको सुनना चाहिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट बिकॉज ये AI के बारे में है। AI के बारे में बहुत बातें होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। नाउ AI हमारी लाइफ में आ चुका है, ये हमारी जॉब्स में भी आ चुका है। मैक्सिमम जॉब्स मुझे लगता है जो वर्क प्लेसेस है वहाँ पे अभी AI का किसी न किसी वे से, चाहे स्मॉल अमाउंट में, यूज़ हो ही रहा है। आने वाले दिनों में न्यूजीलैंड में स्पेशली जहाँ पे हम रह रहे हैं, AI जो है ये एक थ्रेट होने वाला है या फिर हमारी हेल्प करने वाला है। अगर हमें साथ में चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों के बारे में हमने जो पॉडकास्ट है ये रिकॉर्ड किया है दर्शित पांड्या के साथ। दर्शित पांड्या जो है ये AI स्पेशलिस्ट है, ये सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर भी है प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड AWS कम्युनिटी बिल्डर भी है। तो इन्होंने ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो टॉपिक है इसको बहुत ही अच्छे वे से, इन्होंने ईजी वे से इसको ब्रेक डाउन किया है, समझाया है कि हमारी लाइफ में AI एक्चुअली में है क्या। ये जो हम ChatGPT बोलते हैं, Gemini बोलते हैं, Claude बोलते हैं, ये जो सब टर्म्स है हमारी लाइफ में आ चुकी है, ये क्या है। देन जॉब सिक्योरिटी के बारे में, प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, सब कुछ इन्होंने इस पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छे वे से समझाया है। जैसे आप एक 10 साल के बच्चे को समझाएंगे किसी चीज़ के बारे में, उसी वे से एक्चुअली में हमने उनको बोला था इस पॉडकास्ट में समझाने के लिए, सो दैट हमें अवेयरनेस भी मिले और हमें समझ में भी आए कि क्या हो रहा है दुनिया में अभी। सो थोड़ा सा बिट मैं इसमें आपको सुनाती हूँ जहाँ पे दर्शित जो है ये बात कर रहे हैं कि हमें AI को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उसको क्या एक्सेस देना चाहिए। सो कई बार इससे पहले उन्होंने बोला था कि इसी पॉडकास्ट में इन्होंने बोला था कि कई बार अपने फोल्डर, पिक्चर्स के फोल्डर्स का काफ़ी लोग जो है ये एक्सेस देते हैं काफ़ी चीज़ों को सॉर्टेड करने के लिए या कुछ बनाने के लिए, तो उसमें हम क्या क्या AI को सेफली जो एक्सेस है वो दे सकते हैं।
1: पर्सनल फोटोज या फैमिली फोटोज मैं इतना नहीं रखता हूँ, मूव कर देता हूँ। अगर आप लोगों को मतलब कोई मीडिया एजेंसी में, समझ लो कि मीडिया में है, मीडिया में तो भाई फोटो वीडियोस के अलावा काम नहीं चलेगा, कंटेंट वहीं से बनाना है, तो या दे दो, और बेटर कि उसका एक फोल्डर बनाओ कि वर्क फोल्डर ओके, या पर्सनल फोल्डर और कंटेंट फोल्डर, और वो फोल्डर का ही एक्सेस दो
0: ओके,
1: सब ओपन न कर दो। जैसे हमारे फोन में हम सब ने ये किया है, कोई भी ऐप डाउनलोड करते थे ना इतने सालों से, तो भाई यस यस यस करके डालते, कौन टर्म्स एंड कंडीशन पड़ेगा, कौन पॉलिसी पड़ेगा, लेकिन वो सब में छोटा छोटा होता है कि भाई ये एप्लीकेशन जब आप यूज़ कर रहे होगे तो वी विल यूज़ माइक टू लिसन यू एज वेल। कई बार होता है कि जैसे हम लोग बातें कर रहे हैं, शायद फेसबुक जाके आपको या इंस्टाग्राम जाके आपको बता देगा कि भाई अभी AI की ही रील्स आएगी, AI की ही फीड आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें कर ली, क्योंकि वो एप्लीकेशन अभी वो डेटा सुन रहा है, बातें सुन रहा है, क्योंकि हमको जब अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था, हमको ऐप चाहिए थी, भाई मुझे इसका एक्सेस करना है, देखना है, तो अग्री करके दे दिया, लेकिन जब तक समझ आया तब तक बहुत लेट हो चुका था। AI में भी सेम चीज है, AI मांगेगा, सब कुछ मांगेगा, लेकिन आप उसको एक कैटेगराइज कर दो कि मैं तेरे को ये ही एक्सेस दूंगा। अगर वो कैटेगराइज करने के बाद एक आप जो मार्कडाउन फाइल इंग्लिश में बनाने का मैं बता रहा हूँ उसमें बताना, डोंट यूज अदर फोटोज, फॉलो ओनली प्रोवाइडेड गिवन एक्सेस।
0: सो इस वे से उन्होंने पूरे के पूरे फाइल में हमें एक्चुअली में क्या लिखना चाहिए, AI की कौन सी सेटिंग्स है जहाँ पे जाके हमें कुछ टाइप करना चाहिए, हमें एग्जैक्टली वहाँ पे क्या लिखना चाहिए ताकि जो प्राइवेसी डाटा जो है वो भी हमारा सेफ रहे, हम डाटा ज़्यादा उसमें दे भी नहीं रहे हैं, हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है, मतलब AI हमें मतलब इधर उधर की बातें इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें कैसे दे, तो ये सारे हैक्स भी उन्होंने उसमें बताए हैं एंड बहुत ही अच्छे वे से समझाया है कि हम कितना शेयर कर सकते हैं AI के साथ भी, काम में कितना यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में कितना यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी इंसाइटफुल एपिसोड आई विल से। सो उसमें क्या किया है ना, हमने इसके इस पॉडकास्ट के चैप्टर्स बना दिए हैं। ये जो पॉडकास्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे, आप ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, आपको फुल लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप रोवा पे, स्पॉटिफाई पे, आप जाइए अनफिल्टर विद सैनी एंड रुज़बे सर्च कीजिए, आपको एपिसोड्स, आपको ये पॉडकास्ट मिलेगा, टॉप पे ये एपिसोड आपको मिलेगा। तो एपिसोड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एपिसोड के नीचे आपको डिफरेंट चैप्टर्स, ऐसे डिफरेंट टैब्स दिखाई देंगे, तो वहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने किस टॉपिक के ऊपर बात की है। तो अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर क्लिक भी कर सकते हो कि यहाँ पे अब हमने इस चीज़ के बारे में बात की है, यू विल हैव एन आइडिया अबाउट इट। सो जस्ट गो एंड लिसन टू इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी करंट सिचुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है आई विल से, बिकॉज हर एक वर्क प्लेस में गाइज, चाहे कोई भी जॉब है, AI आने ही वाला है जिसे हम भाग नहीं सकते हैं, तो वाई नॉट एक्सेप्ट इट एंड एम्ब्रेस इट बेसिकली। तो शुरुआत करने से ही पता चलता है कि चीज़ें कैसे जाने वाली है, सबसे पहले अवेयरनेस की ज़रूरत होती है, इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट किया है जिसमें उन्होंने हमें अवेयर करवाया है चीज़ों के बारे में। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप AI सीखना चाहते हैं ना, तो आपको स्टार्ट कैसे करना है वो भी इस पॉडकास्ट में एक्चुअली में बताया गया है। सो डू लिसन टू दिस पॉडकास्ट, आप ड्राइव लिख के भेजिए 5599 पर, अभी नहीं लेकिन बाद में कभी भी आपको टाइम मिलता है इस पॉडकास्ट को ज़रूर सुनेगा। पॉडकास्ट को सुनने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं, आप कब सुन सकते हैं, आई विल गिव यू एन आइडिया। फॉर एग्जांपल आप कुकिंग कर रहे हैं अपने घर पे, उस समय पर हेडफोन लगाइएगा, पॉडकास्ट सुनिएगा। आप अपने घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं अपने घर पे, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ, यू नो, अपने हेडफोन लगाइएगा, सुनिएगा। कहीं पे भी आप वॉक करने के लिए निकलेंगे, यू विल हैव एन आइडिया कि मैंने वॉक करने के लिए, मैंने यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे इतनी वॉक करनी है, जब तक ये पॉडकास्ट ख़त्म होता है मेरी वॉक कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट्स अनदर वे, अनदर आइडिया कि आप पॉडकास्ट किस समय पर सुन सकते हैं।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 15 डिग्रीज और आज का ओवरनाइट 9 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम वैसे आज के बारिश होने के चांसेस बने रहेंगे। सनसेट आज का 5:14 पर।
2: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
1: चार बज के 2 मिनट हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ड्राइव शो आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ। रुजवे का साथ मेरे साथ यहाँ पे 5 बजे के बाद होगा। सो कैसे हैं आप? आपका डे आज का कैसा जा रहा है? हाउ इज इट गोइंग सो फार? मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है कि 3 चीज़ें जो है ना, वो किसी ना किसी वे से हमारी लाइफ में बहुत कनेक्टेड होती हैं। ये है रेन, वेदर लगा लो, मे बी वेदर, ट्रैफिक एंड कॉफी कल्चर। वेदर में भी रेन मोस्टली। आपकी लाइफ में व्हाट डू यू थिंक इज हैवीएस्ट इन न्यूजीलैंड लाइफ राइट नाउ फॉर यू? आपकी लाइफ में रेन, ट्रैफिक या कॉफी कल्चर क्या है? बिकॉज रेन को लेके कि लेट्स बी ऑनेस्ट कि यू कैन चेक द वेदर ऐप इन द मॉर्निंग एंड स्टिल आपका जब डे निकलता है तो डिफरेंट ही वेदर बाहर आप देखने वाले होंगे। ट्रैफिक जो है, जहाँ पे आपको 10 मिनट लगने हैं वहाँ पे 45 मिनट्स भी आपको लग सकते हैं। सो ट्रैफिक भी काफ़ी लोगों की लाइफ का पार्ट बन चुका है, लाइक डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। कॉफ़ी कल्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने देखा कि कॉफ़ी कल्चर बहुत ही हैवी है। मतलब एक गली में ना, मतलब एक लेन में अगर 10 कॉफ़ी शॉप्स रहेंगी तो वो 10 कॉफ़ी शॉप्स भरी ही होती है। मतलब उस पर जा ही रहे होते हैं कस्टमर। सो कॉफ़ी कल्चर यहाँ पे कि आपकी लाइफ में भी घुस चुका है, जहाँ पे लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी एंड वहाँ पे देन डीप लाइफ कन्वर्सेशंस हो रही है, आपकी मीटिंग्स हो रही है, या फिर आप अपने काम में निकलने से पहले रास्ते में रुक ही रहे हो कहीं ना कहीं पे कॉफ़ी जो है ये लेने के लिए, अगर आपकी ड्राइविंग जॉब है तो आपकी लाइफ में इन तीनों से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड क्या है? कॉल करके या मैसेज करके यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में इस समय पर हैवीएस्ट क्या है? इज इट रेन, इज इट ऑकलैंड का ट्रैफिक, या फिर इज इट कॉफ़ी कल्चर, या कॉफ़ी आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं? तीनों में से क्या है यहाँ पे बताइएगा। एंड कुछ और भी बातें रहेगी, बॉलीवुड में क्या क्या हो रहा है, टिंसल टाउन में क्या क्या हो रहा है, ये भी बात करेंगे। फर्स्ट होम बायर्स के बारे में एक आर्टिकल आया है, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टे ट्यून्ड।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।
1: Super Cheap Auto's big brand sale is on now. Save big on Turtlewax car detailing chemicals and accessories, now 25% off, and Raptor spray paints, now 20% off. Sale ends June 28th. T's and C's apply. Make it super. Super Cheap Auto.
2: When you see them on the road, you're suddenly not in as much of a rush to get home. Suddenly, texting your back can wait. You suddenly remember to put your seatbelt on. And you suddenly remember what your indicator's for. Yep, seeing them means you're suddenly on your best behavior. Drive like cops are around. Because they are.
3: Waitoa free-range chicken, full of natural goodness and deliciousness. For that cozy family night feeling. All the feels for all the meals.
4: बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
5: क्यों, क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ। अच्छा,
7: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
6: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz। The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
10: Super Se Upar, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited, Tinsel Town.
11: 4:16 हो चुके हैं। टिंसल टाउन यानी कि बॉलीवुड की दुनिया के बारे में यहाँ पे बातें करते हैं। तो एक मूवी का ट्रेलर आया है, बेबी डू डाई डू। एक्चुअली में डू और डाई नहीं है, बेबी डू डाई डू। सो ये एक्चुअली में हुमा कुरैशी की आने वाली मूवी है। हुमा कुरैशी की मैंने एक सीरीज़ देखी थी, मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, रानी उस सीरीज़ का नाम है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है वो। अगर आप कभी कोई सीरीज़ ऐसे ढूंढ रहे हैं जो आप यू नो गुड पॉलिटिकल ड्रामा अगर आप एक्चुअली में देखना चाहते हैं, तो इज़ अ दैट काइंड ऑफ सीरीज़, थ्रिलर भी है वो। और ये जो मूवी है बेबी डू और डाई, ये साकिब सलीम ने बनाई है, जो कि एक्चुअली में हुमा कुरैशी के भाई है। इस मूवी में चंकी पांडे भी है। तो इसमें जो रोल किया है हुमा कुरैशी ने, इसमें सिकंदर खेर भी है वैसे, इसमें जो रोल किया है हुमा कुरैशी ने वो एक हिट वुमेन का रोल प्ले किया है। सो इसमें दिखाया गया है ट्रेलर में कि इंडिया की पहली हिट वुमेन, जो बात नहीं करती है सिर्फ हिट करती है, वो भी अम्ब्रेला के ज़रिए। सो थोड़ा सा इसका जो ट्रेलर है ये मैं आपके लिए प्ले करती हूँ।
12: तीन बार लंबी सांस ले, सब डर भाग जाएगा।
13: यात्री कृपया ध्यान दें, ये कोई टाइम है घर आने का?
14: पता नहीं क्या करती रहती है रात रात।

0: I'm Gif.
1: Nom, nom. Bachi?
2: अरे ओ मैडम वो डमशरा जो इंग्लिश इंग्लिश
1: बेबी
3: अगला स्टेशन डेस्टिनेशन बंदी फुल फायर ना सुनेगी ना बोलेगी खूनी ऑन हायर थोड़ा जिगरा बिगरा बगरा बगरा रख साइड
0: हर गृहस्थी में उसको कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है हाथ से निकल रही है लड़की
1: बेबी
4: हमारे धंधे में सिर्फ इनकमिंग कोई इनकी सुविधा तो है ही नहीं हमारे ऊपर भी लोग हैं पावरफुल लोग और हम भी तब तक हैं जब तक उनके काम आ सके
0: सो चंकी पांडे इज द वन जो कि रोल प्ले कर रहे हैं इसमें जो ट्रेन कर रहे हैं टू बी हिट वुमेन आपने नोटिस किया है बॉलीवुड में सिमिलर कॉन्सेप्ट्स की मूवी बहुत पास पास आती है जो कि जस्टिफाइड नहीं है यार अभी अल्फा आ रही है अल्फा में इज अ काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ रोल आलिया भट्ट का जिसमें वो एक असैसिन बनी है एंड उसमें शर्वरी भी है एंड ये मूवी भी एक्चुअली में 3 जुलाई को रिलीज़ होने वाली है बट एनीवे इंडियन सिनेमा के बारे में अगर बातें करते हैं तो एक बार फिर से वर्ड ऑफ माउथ से ये मूवी ने कमाल किया है आई एम टॉकिंग अबाउट मैं वापस आऊँगा रिमेंबर हाउ वी वर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग की मूवी की और स्क्रीनिंग्स नहीं बाकी है बट अभी यहाँ पे भी इवन सिनेमाज में भी इसकी स्क्रीनिंग्स ओपन अप हो चुकी है बिकॉज लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसके बारे में कि ये मूवी वो सिनेमा में जाके देखना चाहते हैं वेल आप भी जाइएगा इस मूवी को बाद में देख के अगर आप मास्टरपीस कहने वाले कि यार ये मास्टरपीस तो सिनेमा में देखनी चाहिए थी नाउ इज़ द टाइम एंड या अपने टिकट्स बुक करवाइएगा एंड डेफिनेटली जाइएगा आई विल से ओनली थिंग आई विल से कि ये जो मूवी है ये क्रेडिट्स तक आप ज़रूर बैठेगा बिकॉज एक तो है कि जब आप इमोशनल होते हैं क्लाइमेक्स के सीन में काफ़ी लोग इमोशनल हो जाएंगे लाइट्स बड़ी जल्दी ऑन कर देते हैं सिनेमा वाले थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है लेकिन उसके बाद क्रेडिट्स पे ज़रूर रुकिएगा बिकॉज क्रेडिट्स में अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो जो क्रेडिट का गाना है ना और उसकी जो पिक्चराइजेशन है उसकी जो वीडियो है इट्स अबाउट एक्चुअली ग्लोबल थिंग जो ग्लोबल में सब कुछ हो रहा है ना डिफरेंट कंट्रीज़ में जो सब कुछ हो रहा है वो सबकी स्नेप्स एक्चुअली में उस गाने में ली गई है क्या कमाल है उस गाने में सो ज़रूर जाइएगा एंड क्रेडिट्स तक रुकेगा उस सॉन्ग को इन्जॉय कीजिए एंड रिमेंबर दिस इज़ इम्तियाज़ अलीज़ आर्ट इस पर बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी बोली हैं एंड जिस वे से वो बहुत सारी चीज़ें बताना भी चाहते हैं वेदांग रायना इज़ अ सुपर्ब एक्टर बहुत ही अच्छे सिंगर भी है वो खैर शर्वरी ने बहुत अच्छा काम किया है दिलजीत दोसांझ ने जिस वे से रिप्रेजेंट किया है कहानी को जैसे उन्होंने जोड़ा है और सामने रखा है वो कमाल है एंड ऑल्सो दिस सिंगर जो बॉलीवुड मोस्ट वांटेड में जिसका गाना आप सुनने वाले हैं फ्रॉम दिस मूवी शी इज़ ट्रेंडिंग अ लॉट राइट नाउ दीपाली सहाय व्हेन शी पार्टिसिपेटेड इन अ रियलिटी शो उस समय पर इसकी रिजेक्शन हुई थी बहुत साल लगे बॉलीवुड में अपना गाना लेके आने के लिए बहुत साल लगे बट जब ये गाना आया है बॉलीवुड में तो ये कमाल ही एक्चुअली में कर रहा है
5: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
6: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ
7: मैं लाऊं अपना ए गेम
5: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स

0: दीपाली सहाय जिन्होंने 19 साल इंतजार किया अपनी ब्रेक थ्रू के लिए आफ्टर हर रिजेक्शन, हारनी वानी 19 साल इंतजार किया बॉलीवुड में इस ब्रेक थ्रू के लिए। मुझे लगता है कि और भी काफ़ी रास्ते इस सिंगर के लिए अभी ओपन अप होने ही वाले हैं। वैसे ये आर्टिकल आया है अबाउट फर्स्ट होम बायर्स। ये फर्स्ट होम बायर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ सॉफ्टर मार्केट। तो फर्स्ट होम बायर्स जो है, इनका जो डाटा है ये एक्चुअली में इंक्रीज हुआ है। न्यू डाटा जो है ये शो करता है कि फर्स्ट होम बायर्स नाउ अकाउंट फॉर 47.7% ऑफ ऑल प्रॉपर्टी परचेजेस इन न्यूजीलैंड। इवन दो ओवरऑल हाउसिंग सेल्स जो है ये रिलेटिवली सबड्यूड है, लेकिन few investors and existing homeowners jo hai they are competing for properties. Many first home buyers are finding opportunities jo ki a year ago nahi thi, lekin is baar unko kafi opportunities actually mein mil rahi hai. Some of the reasons jo hai experts kehte hain usme hai ki house prices jo hai ye below hai previous peak se, low mortgage rates hai recent year mein agar dekha jaye. Kiwi Saver jo hai ye kafi logo ki help kar raha hai with deposit. एंड जो बैंक्स है ये कंटिन्यू ऑफर कर रही है लो डिपॉजिट लेंडिंग ऑप्शंस एज वेल। सो एक प्रॉपर्टी इकोनॉमिस्ट है कैल्विन डेविडसन, जिन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट होम बायर्स है दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम मल्टीपल फेवरेबल कंडीशंस। सो यस, ये आर्टिकल है कि फर्स्ट होम बायर्स जो है इस बार काफ़ी घर खरीद रहे हैं। जब आप घर खरीदने के बारे में सोचते हैं, जब आपने कभी खरीदा होगा, जब भी सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर में कभी सोचेंगे, तो आपके माइंड में क्या रहता है? वुड यू रैदर लिव क्लोज टू वर्क जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर आप दूर घर लेना चाहेंगे जो कि अच्छी जगह पे है? यू डू नॉट माइंड कम्यूट, आपको ट्रैवल करना प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको चाहिए कि हमारे लिए ट्रैवल इज़ अ मेजर थिंग, कि काम पे जाना है तो ट्रैवल एक मेजर थिंग होता है, तो हमारा कम रास्ता होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये रिसेंट ऑब्जर्व किया है पहले कुछ सालों में, एंड कॉल कीजिए और बताइएगा कि अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ। रिसेंट सालों में ये ऑब्जर्व किया है कि पहले लोगों की प्रेफरेंस होती थी कि जो काम है वो पास होना चाहिए, लेकिन अब लोगों की प्रेफरेंस जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। मेरी ऑब्जर्वेशन में काफ़ी लोग दूर दूर जाके भी घर ले रहे हैं, ऑकलैंड के बाहर तक भी घर ले रहे हैं, लेकिन उतना ट्रैवल करते हैं अपने काम पर आने के लिए। ये रिसेंटली ही मैंने ऑब्जर्व किया है। पहले क्या मैंने ऑब्जर्व किया था वो ये था कि जहाँ पे काम है उसके आसपास कहीं पे सबर्ब्स में घर लेना, सो दैट यू नो इट्स इजी टू ट्रैवल। मुझे लगता है अभी ट्रैवलिंग टाइम जो है ना ये ऑलमोस्ट इक्वल ही हो चुका है हर जगह के लिए। उतना टाइम आपको लगता ही लगता है, मतलब हाफ एन आवर तो हर किसी के लिए लेके ही चलो, हाफ एन आवर तो इज़ अ टाइम जो हर किसी को लगने ही वाला है। एटलीस्ट 20-25 या हाफ एन आवर इज़ अ टाइम जो हर कोई लेता है कम्यूट करने के लिए। व्हाट अबाउट यू, आपका क्या टेक है इसके बारे में, और आपको अपने घर पहुंचने में कितना समय लगता है? आप अपने काम से फिनिश करके जब घर जाते हैं, अगर आपका ड्राइविंग जॉब भी है तो अपने एक स्टॉप से जब आप अपने घर जाते हैं तो आपको अपने घर जाने में कितना समय लगता है? हाफ एन आवर लगता है, कम लगता है, 15 मिनट 20 मिनट या 1 आवर लगता है, 1.5 आवर लगता है? आपको कितना समय लगता है अपने घर तक पहुंचने के लिए? 5599 पर मैसेज करके बता सकते हैं ड्राइव कीवर्ड के साथ, जिसके साथ आपको हमारा पॉडकास्ट का लिंक भी मिल जाएगा। वेल, पॉडकास्ट के बारे में भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ मस्ट लिसन पॉडकास्ट जो आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। नॉनस्टॉप बॉलीवुड जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
1: थोड़ा सा हॉल बना दे।

0: 435 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। हमारा नया पॉडकास्ट जो कि हमने कल ही एक्चुअली में लॉन्च किया है इज ऑल अबाउट AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI हमारी लाइफ में जो है ये आ चुका है, आने वाला है। आप ना गूगल में जाके आप कोई सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी AI ही एक्चुअली में अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो इट इज़ एवरीवेयर। और इस पॉडकास्ट में हमने बात की है AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या के साथ, जो कि सीनियर प्रिंसिपल इंजीनियर है प्लेटफॉर्म एट सर्को एंड AWS कम्युनिटी बिल्डर भी है। तो इन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ, बहुत ही ईजी वे से एक्चुअली में समझाया है AI के बारे में क्या है एंड क्या टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए, वो सब चीज़ों के बारे में इन्होंने समझाया है। थोड़ा सा बिट मैं यहाँ पे आपको सुनाती हूँ।
1: हमारे सबके पास व्हाट्सएप तो है, व्हाट्सएप में हमारा यू अकाउंट करके आता है पर्सनल। कई बार थॉट्स आया कहीं भी काम करे, थॉट आया वही यू में डाल दिया कि भाई मुझे ये करना है, करते ही होंगे, कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो कितनी सारी पाइलअप होती जा रही है चीजें, कभी हमने उस पर अटेंशन तो नहीं दिया। लगा लो क्लॉड एन एजेंट, इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू।
2: सो देन लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ना जर्नलिंग करता हूँ, मुझे जर्नलिंग करना बहुत पसंद है।
1: यस
2: ओके
1: यस।
2: सो मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार ये मैं सब लिख रहा तो हूँ, इट इज हेल्पिंग मी, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक एंड रीड इट।
1: ट्रू,
0: बिकॉज़ यू आर टेकिंग इट आउट ना उधर,
2: मैं सब वहां पे निकाल रहा हूँ। सो डू यू थिंक लाइक देयर इज एनीथिंग दैट कैन बी लाइक मे बी आई कैन पुट एन एजेंट टू जस्ट से कि भाई मेरा पैटर्न मेरे को बता, इसमें क्या पैटर्न आ रहा है,
1: किस दिन में सैड था, किस दिन पे मेरा क्या हुआ, कौन सा मेरा हाई मोमेंट था, लो था,
2: व्हाट मेक्स मी हैप्पी, व्हाट मेक्स मी सैड, ये सब भी वो एनालाइज कर सकता है ना उसमें।
1: उसको बोलते हैं सेकंड ब्रेन ऑफ जर्नलिंग, मैं नाम दे रहा हूँ सिर्फ अभी। आपको मैं कई बार एक बार बैठ के वो सिखा दूंगा, एक घंटे का सेटअप है।
2: Okay.
1: कर देंगे वंस यू लर्न, लाइक आपके चार पांच दिन की जर्नल निकाल के हम डालेंगे, देन आफ्टर यू कैन स्टार्ट फीडिंग मोर एंड मोर एज वेल। बट एक बार वो सेटअप हो गया, इट विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक यू, टॉकिंग लाइक यू एंड गिविंग यू दोस पर्सपेक्टिव एज वेल, एंगल्स एज वेल, सो विच इज मेक योर लाइफ मोर क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कर सकता है थॉट प्रोसेस को। और आप उसके बाद क्या करना, अभी तो आप लिख रहे हो, उसके बाद सिर्फ बुलेट पॉइंट्स देते जाना सिर्फ उसको कि आज का मेरा बुलेट पॉइंट्स ये है। टिल स्टार्ट क्रिएटिंग एग्जैक्ट जर्नलिंग व्हाट यू आर डूइंग सिंस इयर्स।
2: ओके
1: राइट, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स मतलब आपका टाइम भी बच गया, नो डाउट स्टिल यू आर राइटिंग, क्योंकि ब्रेन में है ना वो चीज तो रही। बहुत सारे ऐसे वियरेबल डिवाइस आएंगे AI के साथ कि जो आपके कई बार ब्लड फ्लो से डिटेक्ट करके भी आपको बताएंगे कि भाई आप ये सोच रहे हो, ये गलत सोच रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इट्स ऑलरेडी इन द POC मोड।
0: सो बेसिकली इन्होंने जो हो रहा है, जो कर सकते हैं, जो आने वाला है AI के जरिए, जो डिवाइसेस आने वाले हैं, इन सब के बारे में इसमें बातें की। एंड बहुत ही सारी चीज़ें उन्होंने और भी शेयर की कि कई बार हम चीज़ें लिस्ट कर देते हैं कि मुझे ये करना है, टू डू लिस्ट हम बहुत सारी बनाते हैं, तो उस टू डू लिस्ट को आप कैसे AI टूल में डाल सकते हैं एंड उसमें एक्चुअली में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं जो आपका बहुत समय से पेंडिंग है। तो ऐसी चीज़ें भी एक्चुअली में इन्होंने बताई है इस पॉडकास्ट में। सो इट्स अ वेरी नाइस इंसाइटफुल पॉडकास्ट। अगर आप ड्राइव लिख के भेजते हैं 5599 पर, फुल लिंक आपको मिल जाएगा।
3: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Buri planning se aaye hain. Shat pratishat tumko subah yahan se le jayenge.
6: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
7: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
6: कौन है?
7: हुनुआ और वेटाकरे।
6: अच्छा हुनुआ वेस्ट में?
7: किधर है हुनुआ?
4: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
3: brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
4: Weekdays 6 to 10 a.m.
8: Hum. Accurate traffic.
9: Delicious, tasty cookie dough bars.
10: Rain overnight for Auckland. Strong southwesters, a low of 9 degrees. The northern's heavy, heading north around Oniwa Road interchange through to AUT. Northwestern slowing from the city to Rosebank Road. The southern is slow from Simon Street through to Sylvia Park. Southwestern, reports of a crash affecting southbound traffic just past the Onihunga off-ramp.
9: Tasty cookie dough bars. A delicious cookie dough snack bar that the whole family will love.
11: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy any three products from Gillette, Nestle, Oral-B and more for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
12: Woody? No worries.
13: South Auckland's buses just became a lot better.
12: Oh my, oh my.
13: With better bus routes, more frequent buses and more.
12: Grey South Road? Now even greater.
13: Search AT Better South Auckland Buses for more.
14: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
15: Indelible Homes, your building expert.
16: Winter aa gaya hai at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson with deals on Karcher 18-volt garden skins or 20% off Mica Thermic and selected convection heaters. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
17: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Lowest prices are just the beginning.
18: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
19: क्यों, क्या हुआ?
18: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
16: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल

0: 447 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं और आपकी सुपर सिटी में बहुत ही जल्दी एक सुपर्ब एंटरटेनिंग शो होने वाला है जिसका नाम है गुजू भाई नी एक्सचेंज ऑफर, जिसमें सिद्धार्थ रंडेरिया यहाँ पे आके परफॉर्म करने वाले हैं। ये जो प्रोडक्शन है यहाँ पे आप ज़रूर जा सकते हैं बिकॉज ये क्लासिक गुजराती ह्यूमर शो रहने वाला है पूरी फैमिली के लिए। सो होल फैमिली कैन गो एंड एन्जॉय। अपने टिकट्स आप प्रीमियर टिकट स्टोर खोरड एनजेड पर जाके बुक कर सकते हैं। फ्राइडे 3 जुलाई को होने वाला है शो 7:30 PM ऑनवर्ड्स विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में। एंड ऑल्सो आपको याद दिला दूं कि फिजी इलेक्शंस के वोटर रजिस्ट्रेशन जो है ये ओपन अप हो चुकी है। कल ये फ्राइडे 24 से लेके 26 जून तक, एक्चुअली में ये वेंसडे से लेके फ्राइडे तक होने वाली है। सो कल का दिन तो जा चुका है लेकिन आज का दिन है अभी आपके पास, एंड कल का दिन भी है, 26 जून भी है। 12 PM to 8 PM मैंगरी सेंटर पार्क में, जो कि 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी में लोकेटेड है। सो फिजी इलेक्शंस में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे समय पर जो रजिस्ट्रेशंस है ये हो रही है और आप भी इसका हिस्सा जो है ये आप ज़रूर बन सकते हैं। फीफा के रिजल्ट्स अगर आपने आज के मिस आउट किए हैं आपको बता देती हूँ। साउथ अफ्रीका की जीत हुई साउथ कोरिया से 1-0 के साथ। चेक्स रिपब्लिक की मैक्सिको की एक्चुअली में जीत हुई 3-0 के साथ। स्कॉटलैंड ब्राज़ील में आज ब्राज़ील की 3-0 के साथ जीत हुई। मोरक्को हाइटी के बीच में मोरक्को की 4-2 के साथ जीत हुई। बोस्निया कतार के बीच में जो मैच था, देन बोस्निया की जीत हुई 3-1 के साथ। स्विट्ज़रलैंड कनाडा के बीच में जो मैच था 2-1 के साथ स्विट्ज़रलैंड की जीत हुई।
1: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Love.

0: brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: कुछ भी है क्या?
2: ये साले खून पी रहे हैं हमारा। हम लस्सी तो पी सकते हैं। बाजी, ये शादी है ना?

0: accurate traffic.
1: Manukau Toyota, fuel saver month.
2: Rain overnight for Auckland, strong southwesterlies, a low of 9 degrees. On the northern, it's heavy heading north from the city to Northcote Road. Northwestern, pretty slow from the city to Te Atatū. The southern is slow between Newmarket and Sylvia Park for traffic in both directions. And the southwestern, heavy between Mangere Bridge and Puhinui Road, again in both directions.
1: Buy a used Toyota, get a $500 fuel voucher. Terms apply. Visit Manukau Toyota.
3: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
4: At Woolworths, we go to great lengths to ensure only the finest quality meat makes the cut. Like our fresh beef mince, 1 kg, on special at just $16.99 each. That's the fresh food feeling at Woolworths. T's and C's apply.
5: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
6: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना। उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
7: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
8: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
7: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
8: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
9: Hum. Time check. Hum News. Brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
10: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The police and the independent watchdog are investigating complaints against Commissioner Richard Chambers. Deputy Commissioner Mike Pannett says the situation is being managed in accordance with proper processes, including oversight by the IPCA, and he has no further comment. Richard Chambers says he strongly rejects the claims that have been made and that he will cooperate fully with the investigation and looks forward to having the matter dealt with. National's latest election policy aims to get more people into solar energy. Its proposed Home Energy Fund will offer low-interest, long-term loans that are repaid through rates. Party leader Christopher Luxon.
11: You only get charged if you've signed up to put solar on your roof and you agree a 10 or a 15-year repayment schedule, whatever it may be, at more favourable terms than what you can finance through a bank.
10: Labor says the scheme on its own is not enough to reach the large number of households struggling with their power bills. The India Free Trade Agreement has passed its first reading in Parliament. Trade Minister Todd McClay says it will unlock new opportunities.
12: This once-in-a-generation agreement gives our exporters unprecedented access to 1.4 billion people. It will help diversify New Zealand's export market.
10: Oil prices have dropped back to pre-Iran war levels in trading today. Brent crude is now under $73 per barrel. To sport, day one of the third cricket test overnight between the Black Caps and England at Trent Bridge. It will be so hot that the Met Office has issued a rare red weather warning. Perhaps pace bowler Kyle Jameson might feel it's a good time to be rested. Play starts at 10 o'clock. And to football updates brought to you by Hisense, the late games at the World Cup today, wins for Mexico and South Africa, and they go through to the round of 32. South Korea is still a chance.
9: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
13: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
14: वेदर का हाल काफी बवाल आज के दिन. अब शाम को तो साउथ वेस्टर्लीज स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इन एक्सपोज्ड प्लेसेस और पॉसिबल हैवी रेन्स भी होंगे काफी जगहों पे. फील्स लाइक 13 डिग्रीज ओवरनाइट. टेम्परेचर इज गोइंग टू बी एज लो एज 9 डिग्रीज टुनाइट. 5:14 को आज होगा सनसेट. Well, if it's out yet.
0: Are you ready to go home?
8: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
9: Power Drive at 5. Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusbe.
15: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
14: 5:03 हुए हैं, ये 25 जून है आज. Welcome to the Drive Show with Sandy and Rusbe. Hi Sandy, good.
16: Good evening. कैसे हो तुम?
14: मैं बढ़िया हूँ Sandy. आप कैसे हो?
16: एकदम फर्स्ट क्लास. मेरा डे कैसा गया
14: ऐसा
16: आज का?
14: लग रहा नहीं आप फर्स्ट क्लास हो अभी दे, आपका देख के हालत देख
16: वो
14: के.
16: हेडफोन के बारे
14: में
16: है ना, दोनों हेडफोन नहीं चल रहे. हेडफोन नहीं, वो पैनल का थोड़ा पक गया, बट इट्स ओके. या तो मेरा डे कैसा गया आज का?
14: बहुत बिजी गया डे सैंडी, बट इट वाज गुड. आई एम हियर फाइनली.
16: या फाइनली यू आर हियर. और तुमने बताया कि बाहर तो एकदम मौसम का बवाल हो रखा है.
14: जी, मतलब काफी तेज हवाएं हैं. लकीली मेरे को बारिश नहीं एनकाउंटर हुई, लेकिन शाम को पॉसिबली हैवी रेन्स हो सकते हैं ऐसा कह रहे हैं. एंड या साउथ वेस्टलीज तो है बहुत स्ट्रॉन्ग.
16: ओके,
14: 3 लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एंड 1 विंडप्रूफ लेयर आल्सो इज रिकमेंडेड.
16: ओह वाओ. सो आज और कल ये दो दिन का ऐसा वेदर रहने वाला है.
14: जी, कल भी बहुत ही धुएंदार वेदर है, और फिर सैटरडे अभी के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है. सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ओह माय गॉड, नेक्स्ट वीक वेनसडे इज गोइंग टू गो एज लो एज 5 डिग्रीज.
16: वाओ,
14: चिल्ड होने वाला है नेक्स्ट वीक.
16: कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है.
14: या बट आई ऑनेस्टली नाउ प्रेफर ठंड ओवर गर्मी नाउ, क्योंकि ये पिछले 2-3 दिनों में ना मुझे नींद ही नहीं आई अच्छे से.
16: क्यों?
14: क्योंकि इट्स लाइक इट्स अ वेदर जहाँ पे प्रॉपर ठंडी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है. मतलब समझ रहे हो,
16: मिक्स काइंड ऑफ वेदर है.
14: हाँ ना, मतलब समझ में, जैसे ही मैं वो डुए रखता हूँ अपने ऊपर मेरे को गर्मी लगने लगती है, उसको निकालता हूँ तो ठंडी लगती है.
16: मैंने आज ना सवाल पूछा था कि इन तीनों चीजों में से तुम्हें हैवीएस्ट क्या फील होता है न्यूजीलैंड में अपनी लाइफ में? इज इट रेन जो तुम्हारी डेली लाइफ का पार्ट, मतलब मोस्टली लाइफ का पार्ट है, इज इट ट्रैफिक और इज इट कॉफी कल्चर?
14: ओह, कॉफी कल्चर हैवी क्यों लगता है?
16: हैवी एज इन की
14: हाँ, $60 अगर कॉफी के पे करने तो हैवी लगेगा.
16: हैवी लगेगा ना.
14: सही बोल रहा.
16: और यहाँ पे बहुत सारी कैचअप्स कॉफी के ऊपर ही होती है, चाहे वो मीटिंग्स की कैचअप हो जाए, कोई भी कैचअप हो जाए, लाइक मेनी कैचअप्स आर अराउंड कॉफी ऑल्सो. सो तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इन तीनों में से कौन सा कल्चर है? ट्रैफिक है बहुत ज्यादा तुम्हारी लाइफ में, कॉफी है बहुत ज्यादा, या फिर रेन तो नहीं है अभी लग रहा है? खैर,
14: आई थिंक ट्रैफिक.
16: इट्स अ ट्रैफिक.
14: या ट्रैफिक फॉर श्योर. क्योंकि लाइक एवरी मॉर्निंग इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 hour ऑफ ट्रैफिक ना.
16: या
14: तो इट्स लाइक या
16: ओ 1 hour लगता है तुम्हें?
14: 1 hour, मोर देन 1 hour मोस्टली, बट या
16: या ओ पीक टाइम पे जाते हो ना तुम एकदम
14: पीक टाइम.
16: और
14: अभी आजकल ऐसा हो गया ना कि पीक टाइम भी चेंज हो गया है.
16: हाँ.
14: आप जल्दी भी निकलो वो भी पीक टाइम है. आप 7 बजे के, आप 6:30 बजे भी निकलो वो पीक टाइम है.
16: ओके,
14: आजकल सब कुछ पीक ही टाइम हो गया
16: है. या अंटिल अनलेस 10:30 बजते हैं, मेरे को लगता है उसके बाद थोड़ा सेटल हो जाता है.
14: टाइम है.
16: या उसके बाद थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाता है, व्हिच इज गुड. या ग्रेट इट इज. सो आप भी बताइए आपका डे कैसा गया. थोड़ी देर में आपको राहत फतेह अली खान के शो का पास जीतने का मौका भी मिल सकता है यहाँ पे.
14: आज हमने बोला था ना आपको कॉल करना है यहाँ पे, दो लोगों को हमने बोला था कि आज कॉल करो, आज दो लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन लगाएंगे हम लोग.
16: या एंड ऑल्सो आज अगर आप कुछ कन्फेशन करना चाहते हैं ड्राइव थ्रू कन्फेशन में, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 5599 पर.
14: जी, ड्राइव थ्रू कन्फेशन में वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम कन्फेशन टूडे. हमें आप मैसेज करके बताइए 5599 पे, या हमारे जो फेसबुक ग्रुप है
16: अनफिल्टर्ड क्रू में जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं.
14: अनोनिमस होके आप कर सकते हो वहां पर मैसेज, और आपकी जो प्राइवेसी उसको हम सर आंखों पे रखेंगे
16: 100%.
14: सो या प्लीज डू सेंड इन योर कन्फेशंस.

0: AR Rahman, man, he is the hit machine. Kya badhiya gana hai. Iska music and I think everything is just outstanding. Well, now is the time. Hum aapke saath aaj Thursday ko khelte hai ye. Drive-through confessions. Drive-through confessions में आपको यहाँ पे मौका मिलता है कि अगर आपको कुछ confess करना है, कुछ spill करना है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो और हम उसको confidential भी रखेंगे, आपका नाम नहीं लेंगे यहाँ पे. और आज हमारे पास एक बहुत interesting confession आया है सैंडी.
1: या तो बोलना चाहोगी?
0: मैं ही बोलूँ क्या इसके बारे में भी?
1: ओके चलो बोलती हूँ. ये confession आया है, इन्होंने बोला है कि I want to confess that I have been having in a affair for 1 year.
0: और फिर लॉल भी लिखा है.
1: लॉल लिखा है भाई. अब हमें ये नहीं पता है कि जो इन्होंने लिखा है
0: नहीं, affair... नहीं, तो, नहीं तो बेसिकली ना हम लोग ना देसी मतलब जो जब एटलीस्ट इंडिया में जो पले बड़े हैं हम लोग का ना अफेयर का मतलब ही अलग है. हम लोग रिलेशनशिप को अफेयर बोलते थे कि अरे आई हैव मेरा अफेयर चल रहा है ये वो, बट एक्चुअली अफेयर इज नॉट
1: द रिलेशनशिप,
0: इट इज एन समथिंग दैट इज
1: एक्स्ट्रा. या वही ना, इन शॉर्ट यही तो होता है.
0: या इट इज या नॉट लिजिट.
1: या अफेयर इज अफेयर. सो लेकिन या ये अब कौन सी टर्मिनोलॉजी है ये हमें नहीं पता है, बिकॉज साउथ एशियन कम्युनिटी में अफेयर वर्ड का मतलब बहुत बार होता है.
0: अगर उन्होंने कन्फेस किया है तो मतलब वो तो है ही ना, मतलब
1: हाँ हमें नहीं पता है. नो जजमेंट्स.
0: क्यों जजमेंट्स किया है उसमें? जजमेंट नहीं, अगर है भी तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी होता है अभी.
1: एग्जैक्टली, आपने कन्फेस करना था, आपने बस कन्फेस कर लिया. So all good, it's out
0: and see,
1: from
0: this,
1: your chest.
0: This is not a thing that we can also do. Okay, oh, can you relate to this?
1: क्योंकि आप कॉल करके थोड़ा ना बोलोगे. Yes, I relate to this.
0: Me too.
1: Yeah.
0: Hashtag me too. But anyway, but thanks so much for this confession.
1: Yeah. थोड़ी देर में आपके लिए सवाल भी रहेंगे. Remember, आपको यहाँ पे कॉल करना है 0800 00 हम पर. At least दो कॉलर्स हमारे पास आने ही चाहिए जो रैपिड फायर के इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पे राहत फतेह अली खान की शो की टिकट आपके नाम हो सकती है. यू कैन बी द विनर.
0: या बट सी, बिकॉज ये टॉपिक निकला है अभी कन्फेशन के अराउंड अफेयर के बारे में, तो एक कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा. दिस कम्स अंडर, आइडियली कम्स अंडर इनफिडेलिटी. और कुछ टाइप के इनफिडेलिटीज़ होते हैं, जैसे कि इमोशनल इनफिडेलिटी होती है, जहाँ पे आपको हाईली इंटीमेट फीलिंग्स डेवलप होते किसी और के लिए आउटसाइड योर प्राइमरी रिलेशनशिप. इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बस इमोशनल कॉन्टैक्ट होता है काफ़ी. एंड दैट्स व्हाई इट्स इमोशनल इनफिडेलिटी. देन देयर सेक्सुअल इनफिडेलिटी, जहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है और उसके कारण आप मतलब कहीं और जा रहे हो. देन देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज इंटरनेट या फिर डिजिटल इनफिडेलिटी. एंड दिस इज नथिंग बट जस्ट एंगेजिंग इन फ्लर्टेशियस या फिर डीपली इंटीमेट कॉन्वर्जेशन ऑनलाइन. और काफ़ी बार ये भी होता है ना कि ऑनलाइन आप किसी के साथ चैट कर रहे हो. काफ़ी लोग तो अभी AI के साथ भी ऐसे सारे चैट्स कर रहे हैं.
1: बट AI इज नॉट, उसको नहीं माना जाएगा.
0: क्यों? वो भी डिजिटल है.
1: नो नो नो, देयर नीड टू बी अ पर्सन जिसके साथ आप चैट कर रहे हो.
0: आई डोंट अग्री विद दिस पॉइंट. नो नो, आई थिंक अगर आप AI के साथ भी अगर कर रहे हो,
1: there is no person there na,
0: but that
1: it's a tool.
0: Okay, but okay, what is infidelity? Infidelity is jab hi aap jiske haq ka hai usko nahi de rahe ho aur kisi aur ko de rahe ho.

0: प्राइमरी रिलेशन छोड़ के एग्जैक्टली किसी और को दे रहे हो, किसी और पर्सन को, लिविंग बीइंग को
1: नहीं, बट अगर समझो आप एआई को दे रहे हो वो,
0: हाँ,
1: जो आप शायद आपके पार्टनर को देना चाहिए,
0: हाँ,
1: तो दैट इज इनफिडेलिटी ना यार. आई डोंट सी, आई डोंट नो, गिव अस अ कॉल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस?
0: या व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? बाय द वे एआई के ऊपर हमने फुल पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, मस्ट लिसन पॉडकास्ट है गाइस, सो ये आप जरूर सुनेगा. ड्राइव लिख के भेजो 5599 पर, फुल लिंक आपको मिल जाएगा. बट या आपका क्या टेक है इसके बारे में कि एआई के साथ फ्लर्ट करना, एआई जिन की चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसको जब आप सवाल पूछ रहे हैं, उसके साथ आप फ्लर्ट कर रहे हैं, तो वो भी चीटिंग होता है कि नहीं होता है?
1: मेरे को तो लगता है दैट इज आल्सो, दैट शुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज चीटिंग यार, बिकॉज़
0: और इट कैन बी अ ट्रेडिंग टूल फॉर समवन,
1: इमेजिन
0: हु वांट्स टू लर्न द मे बी कि कैसे अपने पार्टनर के साथ बात करनी है, या फिर होने वाले पार्टनर के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ कैसे बात करनी है. इट कैन बी अ ट्रेनिंग टूल एज वेल.
1: हाँ, अगर होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ बात करनी है तो ऑब्वियसली डजंट कम अंडर चीटिंग, क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं. बट अगर तुम इतने लायक हो कि तुम्हारी बीवी हो गई या पार्टनर हो गई है, हो गया है, और फिर तुम ट्राई आउट कर रहे हो कि अभी मेरे को सीखना है.
0: नो ना, कुछ लोगों को ऐसा कुछ ना होता है, कुछ लोगों को होता है कि इससे पहले कि वो बुरा माने, लेट्स आस्क दिस पर्सन, नॉट दिस पर्सन, दिस एआई, इसका क्या जवाब रहेगा?
1: That is a very big red flag. That is a very very big red flag in my opinion. Anyway, yeah. थोड़ी देर में राहत फतेह अली खान का कॉम्पिटिशन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं. So if you are listening to us through Rova, give us a call when you listen to this.
2: छुपाने वाली बातें अब सुनाई देंगी.
3: The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: मेरे दोनों बच्चे संस्कारी हैं.
5: Accurate traffic.
6: Switch to AMI car insurance.
7: Rain overnight for Auckland's strong southwesters, a low of 9 degrees. The northern is very slow from the city heading through to Northcote Road. Northwestern, reports of a crash between Waterview and Rosebank Road affecting westbound traffic. The southern is really slow in both directions between Newmarket and Sylvia Park. And the southwestern slow between Mangere Bridge and Puhinui Road.
6: AMI Roadside Rescue is free with every AMI comprehensive car policy. T's and C's apply.
8: If you want a good restaurant, you look for a queue. If you're looking for a new show, you watch what everyone's talking about. And when you're choosing a KiwiSaver fund, you look for the smart money. With thousands of Kiwis switching to the ANZ KiwiSaver High Growth Fund, search ANZ KiwiSaver to see if it's right for you. ANZ New Zealand Investments Limited is the issuer and manager of the ANZ KiwiSaver scheme. Find a copy of our product disclosure statement at anz.co.nz.
9: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
10: Farmers Lingerie Week is now on with 25% off women's lingerie, including Burley, Triumph, Fendon, Jockey, Bonds and more. Plus, earn double Farmers Club points on all lingerie brands. Farmers Lingerie Week is now on. Conditions and exclusions apply.
11: Film bilkul fake aur danger ekdam real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
12: Ek zabardast kahani hai.
13: Aur title kya hai film ka?
12: Welcome to the Jungle.
11: Welcome to the Jungle, releasing in cinemas on 26th June. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
14: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
15: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
16: Award goes to Indelible Homes.
15: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
17: Kahani of Indelible Homes.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: पावर ड्राइव एट 5 जा रही है आपके लिए और अभी मौका है आप यहाँ पे कॉल करें टू पार्टिसिपेट इन राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट का डबल पास अगर आपको जीतना है तो
4: सो कॉल नाउ 0800 00 हम पर आपको कॉल करना है 0800 00 4866 इज अ नंबर कॉल नाउ एंड कुछ सवाल आपसे पूछेंगे अगर आप जवाब सही देते हैं तो आपका नाम इस ड्रॉ में जाएगा जहाँ पे डबल पास आपके नाम हो सकता है
3: हाय गुड इवनिंग
5: हेलो
3: जी क्या नाम है आपका
5: रियांश
3: रियांश कैसे हो आप
5: मस्ता
3: क्या okay. बात है अच्छा तो रियांश आप राहत फतेह अली खान के बारे में जानते हो
5: लिटिल बिट आई एम ट्राइंग टू विन फॉर माय पेरेंट्स सो दे कैन गो आउट एंड आई कैन चिल एट माय फ्रेंड्स हाउस
4: ओके अपना प्लान सॉर्टेड करने है उसको इसलिए जीतना है
3: ओके ओके
4: सही है
3: So you think you'll be able to give the answers to us?
5: Hopefully.
3: Okay. And how old are you, Riyansh?
5: I'm 11.
3: You're 11. Okay.
4: Okay.
3: You know which song Rahat Fateh Ali Khan has sung? Any one song?
5: Any one song Rahat Fateh Ali Khan has sung?
3: Lifeline ko puch rahi hai.
5: I think it's like... there's one song that was like ek machli something.
3: Kya ek machli?
5: I don't know. No, ek machli something. Not sure what else.
3: Achha, okay. And Riyansh, who are you with right now? Aapke dad, aapke mom, kinke saath ho aap?
5: मम्मा
3: के साथ हो आप अच्छा
4: तो ठीक है मम्मा आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके क्वेश्चंस में ठीक
3: तो
4: है
3: मम्मा आप हेल्प करना ना तो आपकी रियांश जा नहीं पाएगा बाहर उसके फ्रेंड्स के घर पे ओके ओके मम्मा को मालूम है ना राहत फतेह अली खान कौन है हाँ ओके
4: या फिर इसका काम ही है बस भेजना पेरेंट्स को ओके
3: मतलब रियांश ने ऐसा भारी रीजन दिया है ना कि मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है कि यार इसके पेरेंट्स को जिता दो यार ओके एनीवे लेट्स गेट टू आवर क्वेश्चंस सो रियांश यू विल गेट 5 seconds यू एंड योर मम्मा विल गेट 5 seconds टू आंसर
4: फॉर ईच क्वेश्चन ठीक है तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 5 seconds मिलेगी टू आंसर एंड इफ यू गेट इट यू आर इन द ड्रॉ रुज़बे आर यू रेडी
5: ओके
3: अरे यार मैं रेडी तो हूँ एक मिनट होल्ड करो लेकिन मेरा वो दूसरा वाला टाइमर किधर गया
4: वेट ओके
3: यार ये बहुत हाँ चलो आई एम रेडी
4: यू आर रेडी ओके
3: या बट दिस गोइंग टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टाइमर टुडे
4: ओके लेट्स स्टार्ट सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हिच कंट्री वाज राहत फतेह अली खान बॉर्न
5: पंजाब आई थिंक सो Yes.
4: Which country?
3: Punjab. अरे country Punjab.
5: Pakistan.
3: अभी तक नहीं हुई.
4: Pakistan बोला. Pakistan बोला. Okay.
3: दे. Okay.
4: Fine. Okay. The second question is, his singing style is it classical, pop or fusion?
6: Sufi songs.
3: Classical, pop या fusion?
4: राहत हैज ऑल्सो सर्व्ड एज जज ऑन इंडियन सिंगिंग रियलिटी शो
3: ट्रू और फॉल्स
5: ट्रू
3: यू गॉट इट ओह कांग्रेचुलेशंस
4: नाइस सो रियांश आपकी मम्मी का नाम क्या है
6: Hi, both. This is Deepthi here. I listen to every time whenever we are traveling, we listen to you both. Oh my God, you've both got such an amazing chemistry, I must say.
3: Thank you.
4: Thank you, Deepthi. एंड दीप्ति आपका
3: दीप्ति पहले क्यों शर्मा रही थी आप हमसे बात करने के लिए?
4: पहले ऐसा कंपटीशन का वो था ना.
6: एक्चुअली मैं कभी भी फोन नहीं करती हूँ. आई मीन आई लिसन टू यू ऑल एंड माय सन इज लाइक मामा लेट्स ट्राई लाइक नहीं यार नहीं आई डोंट यू नो ही इज लाइक आई विल ट्राई. आप मत बोलिए मैं ट्राई करता हूँ अगर मिला तो ठीक है नहीं तो नहीं. मैंने बोला अच्छा कर जा.
3: वेल डन रियांश सो प्राउड ऑफ यू मैन.
4: वेल डन
3: रियली
7: थैंक यू.
3: Well done, superb. देखा इंडिपेंडेंस के लिए बच्चे कितने हद तक जाते हैं.
6: Exactly. So true.
4: Nice.
6: It's fun to listen to both of y'all. I must say, you know, you're not truly entertaining.
4: Thank you so much.
3: Thank
4: really
3: you,
4: appreciate
3: it. इसको काट के प्ले करेंगे अभी हम. Thank you so much, यार दीप्ति. Thanks,
4: Riyansh. Thank you, bye.
3: आपका नाम ड्रॉ में शामिल हुआ है अभी फाइनल ड्रॉ होगा आई थिंक अभी.
4: या एक्चुअली मैं कल ही होने वाला है फाइनल.
3: कल ही हो रहा है फाइनल ड्रॉ.
4: Yes.
3: अच्छा तो कल सुनना याद से.
6: 100%.
3: ओके चलो
4: बाय
3: बाय
4: दीप्ति.
3: थैंक यू.
4: थैंक यू रियांश. बाय.
3: सो आज ये फाइनल कॉम्पिटिशन था मतलब.
4: Yeah, it's a final competition and कल जो है ये ड्रॉ होने वाला है. कल कुछ विनर्स के नाम अनाउंस हो गए यहाँ पे. कुछ विनर्स मतलब कि एक
3: कुछ
4: से
3: विनर्स है. ओह yeah. कुछ विनर्स है. अच्छा ठीक yeah. है.
2: Bollywood's most wanted.
8: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ.
9: मैं लाऊं अपना A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
2: Accurate traffic.
3: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
4: Rain overnight for Auckland. Strong southwesters, a low of 9 degrees. The northern is very slow from the city heading through to Northcote Road. Northwestern, reports of a crash between Waterview and Rosebank Road affecting westbound traffic. The southern is really slow in both directions between Newmarket and Sylvia Park. And the southwestern slow between Mangere Bridge and Puhinui Road.
3: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
5: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
6: When winter bites, Rebel delivers. Shop great deals on hoodies, sweats, jackets and vests, built to keep you moving when it's cold. Plus, get 30% off all Huffer adult clothing. These winter deals and more are on now, only at Rebel Sport. See online for T's and C's.
7: At Bunnings, costs are kept low by buying in bulk, so you save more. And that means low prices for all kinds of useful supplies, like all-set 50-litre modular storage container, only $8.99. Finished Quantum dishwashing tablets, 72-pack, $34.99. Philips LED Cool Daylight 19-watt globe, only $24.95. Where you find a competitor's lower price and the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
8: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे, सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी, हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी। Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
9: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेकू के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी, और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
10: Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.

0: Happy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
3: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए हम यहाँ पे एक से एक गाने तो लेकर ही आते हैं, लेकिन काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिसके डिटेल्स आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करते हैं, जो आप अटेंड कर सकते हो और जिसका आप मजा उठा सकते हो. जैसे कि गुज्जू भाई ने एक्सचेंज ऑफर ये हो रहा है, सिद्धार्थ रंदेरिया लेजेंडरी यहाँ पे आ रहे हैं गुज्जू भाई प्रोडक्शन से, और आपको इसके टिकट्स मिलेंगे premierTickets.co.nz. नेक्स्ट फ्राइडे को ये शो होने वाला है, Friday 3rd July 7:30 एट विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर. तो यहाँ पे आप पहुँच जाइएगा और लोटपोट कॉमेडी में का अगर आपको आनंद उठाना है गुजराती में तो वो आप यहाँ पे उठा सकते हैं.
4: या एंड ईस्टर 2027
3: मैंने ये वाला जो बन रहा है ना, ये मैंने गुजराती में करना चाहिए प्रमोट यार.
4: हाँ तो करो.
3: नहीं अभी, लेकिन अभी मैं कॉन्शियस हो गया हूँ.
4: अरे तुम गुजराती बोलते समय ऐसा कॉन्शियस क्यों हो रहे हो?
3: अरे क्योंकि मेरा पारसी गुजराती है तो लोगों को ऐसा एकदम ही.
4: तो तुम पारसी गुजराती में बोलो.
3: अगर तुमने लोटपोट थई ने हसू छे ने मजा मारवी छे આપણા ફ્રેન્ડ્સના સાથે, તો ગુજ્જુભાઈ આવી રહ્યા છે અહીંયા. ગુજ્જુભાઈની એક્સચેન્જ ઓફર લઈને લેજેન્ડરી સિદ્ધાર્થ રંદેરિયા અહીંયા આવવાના છે. તો તમે ટિકિટ્સ ફટાફટ બુક કરી લેજો premierTickets.co.nz પર. ફ્રાઈડે 3rd July 7:30 PM વિક્ટરી કન્વેન્શન સેન્ટર પર આ થવાનું છે.
4: ક્યા બાત હૈ, બહુત અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ હૈ ગુજરાતી દેખા જાય તો.
3: મેં ક્યુંકી મેં બોલ રહા
4: હું ના,
3: જો ગુજરાતી ઉસકો અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ નહીં હૈ.
4: अगर आप गुजराती है, कितनी परसेंटेज से कितनी सही परसेंटेज गुजराती में रुजबे ने ये बोला है तो प्लीज बताओ कितना प्रतिशत आप इसको देना चाहेंगे. 60% 70% 80% 100% 20% 10% क्या देना चाहेंगे, क्या प्रतिशत आप इसको देना चाहेंगे,
3: क्या मार्क्स देना चाहोगे, मतलब ऐसा मतलब
4: प्रतिशत या
3: ठीक है
4: आप देना चाहेंगे.
3: मेरे को ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि मेरे को स्कूल में भी कभी 60-70 से ज्यादा मिले नहीं है.
4: हाँ गुजराती में
3: नहीं, इन जनरल.
4: इन जनरल ओके,
3: सो आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज.
4: ओके एनीवे, लेकिन एक जगह पे एक्सपेक्टेशन जरूर है. मैं ईस्टर 2027 के बारे में बात कर रही थी कि ईस्टर 2027 व्हिच इज नेक्स्ट ईयर गाइस, तो ईस्टर के अराउंड अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं तो होल्ड ऑन, बिकॉज आपके प्लान्स में सनराइज व्यू हो सकता है, वार्म वेदर अराउंड ईस्टर हो सकता है,
3: नई दोस्तियां
4: या रोड ट्रिप प्लेलिस्ट हो सकती है, ग्रेट फूड एंड बहुत सारा हंसी मजाक हो सकता है. सो या दैट कैन बी योर ईस्टर 2027, स्टे ट्यून फॉर दिस.
3: जी बोलिए आप भी. हाय स्वागत है आपका.
5: अरे ये 95% है रुजबे का गुजराती.
4: 95% और एक ने यहाँ पे 200% लिख दिया है भाई, ये ज्यादा तो नहीं हो गया?
3: प्यार है उनका.
5: नहीं नहीं, आई बिलोंग टू गुजराती. मैंने बहुत पारसी, मैंने भरूच में मेरा फर्स्ट जॉब था, मैं भरूच में रहा था. बहुत से पारसी हमारी फ्रेंड मेरे फ्रेंड से, तो वो आए बोलते है ना, रुजबे ने बोला आए. That's a little bit, you know, I would say like a, क्या बोलते हैं उसको, टंग का जो AEIOU आए
4: वो बोल जैसे.
5: बाकी 100% है. गुज्जू भाई को मैं बहुत बार मिला हूँ, मेरे पास फोटोज है, अभी आएगा वो सब है. मेरी डॉटर भी मिलती है, बहुत फैन है. पर ये जो आए आते है ना, तो वो रॉन्ग था, उसका लास्ट वर्ड था.
4: कौन सा वर्ड था रुजबे? वो
3: लास्ट वर्ड मैंने जो बोला ना कि आए ले ले जो टिकट आए, तो वो गलत हो गया ना.
4: अच्छा उसकी जगह क्या बोलते हैं?
5: सही पकड़े.
4: तो वो अगर ना बोलना हो तो क्या बोलते?
5: आ ए नहीं बोलते.
4: हाँ
5: आए है,
4: आए आ ए नहीं आए ऐसे.
3: अच्छा हाँ साइंडी को समझ
5: आए. ये भी नहीं, आई है.
3: सैंडी फुल समझ गई है, अभी अगला सैंडी करेगी गुजराती में.
5: वाई ई है ही नहीं.
3: अच्छा
5: आ है, आ का मतलब आ, दिस मीन्स
3: आ का मतलब आ ई उ.
5: आ ये नहीं, आए मतलब
3: आए नॉट सैंडी
5: आ गुजराती है, आ सैंडी है,
3: आ सैंडी हाँ सैंडी छे सुप्रशांत तमारा भी मार्क्स कापवा पर से बने
5: अरे मारा काफी थैंक यू
3: चलो थैंक यू
4: ये वाला जो आ था ये बिना पंजाबी वाला आ था आ थे सेम
3: चलो एनीवे अभी सुनते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट फिर उसके बाद आज ट्रेंड मेकर्स में क्या होने वाला मेरे लिए भी सरप्राइज है तो नहीं आज किसका बर्थडे है ना
4: सरप्राइज है
3: किसी का बर्थडे
4: करिश्मा कपूर
3: करिश्मा कपूर करिश्मा कपूर यार
4: उसने बहुत लेट बताया कि मेरा नाम करिश्मा है नॉट करिश्मा
3: इसने पहले पूरे बचपन हमको करिश्मा बताया था फिर जैसे ही हम बड़े हो गए ये करिश्मा हो गई है
4: नाम से हैच ही निकाल दिया
3: हाँ वही तो this was like
4: charisma
3: this was like how pronouns came into our lives bachpan mein kuch aur hi sikha tha fir jaake kuch aur sikha
4: yeah

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paar denge.
3: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Chhe baj chuke hai, Trend Makers ka time shuru ho gaya hai. Hi Sandy, good evening once again.
4: A very very good evening. Trend Makers pe aaj hum baat karne wale hain Karishma Kapoor ke bare mein, jise humne bachpan se Karishma Kapoor bola hai.
3: हाँ, करिश्मा का
4: Just
3: करिश्मा,
4: in case you are confused.
3: मेरे को लग रहा है करिश्मा का करिश्मा रिलीज होने के बाद उसने सोचा कि भाई मैं मेरा नाम बदल देती हूँ और उसके बाद उसने करिश्मा कर दिया उसका
4: करिश्मा
3: नाम, और वो टाइम पे बाइक भी आई थी ना करिश्मा.
4: पर करिश्मा कपूर को अगर यू नो माइंड में आती है तो 90s में ऐसी बहुत सारी मूवीज आती है माइंड में रुजबे, जहाँ पे डांस नंबर्स है, जहाँ पे गोविंदा के साथ बहुत सारे डांस
3: गोविंदा के साथ बहुत कोलैब किया था,
4: या बहुत सारी मूवीज, इवन सलमान खान के साथ बहुत सारी मूवीज है उसमें भी डांस नंबर्स है, जैसे कि जुड़वा मूवी आई थी, बीवी नंबर वन, ऑल दोज मूवीज. एंड वो जो करिश्मा कपूर की लुक थी वॉज वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू लुक ऑफ राजा हिंदुस्तानी.
3: सो
4: राजा हिंदुस्तानी के बाद में शी आई थिंक दैट वॉज अ मूवी ना जहाँ पे उसने नाक की सर्जरी करवाई थी.
3: वो सब मैंने इतना फॉलो किया सैंडी.
4: सो या शी डिड द सर्जरी, और मतलब ये सिर्फ आज ही की बात नहीं है, उस समय पर भी एक्ट्रेसेस ये सब करवाती थी.
3: बट एक्चुअली में लोलो को सिंधी में मतलब स्वीट होता है, तो स्वीट या फिर स्वीट हार्ट. और जो उनकी मॉम है बबीता, उनकी मदर टंग भी सिंधी थी.
4: ओके,
3: तो वैसे तो वो कहते हैं कि लोलो वॉज आफ्टर द लेजेंडरी इटालियन हॉलीवुड एक्ट्रेस जीना लोलो ब्रिगिडा,
4: या उसी के नाम से रखा था,
3: लेकिन वो गलत है. मतलब एक्चुअली में वो सिंधी में लोलो मतलब स्वीट
4: ऐसा है. okay.
3: अभी पता नहीं, मतलब दोनों रीजन है.
4: बट इसकी कॉमिक टाइमिंग भी बड़ी सही थी अगर देखा जाए इनके रोल्स में, चाहे वो अंदाज अपना अपना है. रिमेम्बर अंदाज अपना अपना में ऑल्सो शी वॉज देयर अलॉन्ग विद रवीना टंडन. आज करिश्मा कपूर की मूवीज के गाने आप यहाँ पे सुनने वाले हैं, थोड़ी उनके बारे में हम यहाँ पे बातें भी करने वाले हैं.
5: हेलो 9821026212 BPL. अरे 9820026235 मैक्स टच.

0: लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स आपके लिए ट्रेंड मेकर्स में. आज हम करिश्मा कपूर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. आज उनका बर्थडे है.
1: या करिश्मा कपूर का बर्थडे है. यू नो काफ़ी एक्ट्रेसेस अब जाके जो 90s की एक्ट्रेसेस है अब जाके OTT पे आना शुरू हुई है. बट करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी ये इन्होंने एक शो था ये लॉन्ग बिफोर द एयर ऑफ OTT. शी शॉक्ड द इंडस्ट्री बाय ट्रांजिशनिंग टू TV अपने करियर के पीक पे.
0: टीवी पे गई थी वो.
1: टीवी पे गई थी सहारा 1 पे. एंड इट वॉज हाई बजट मेगा

0: किया है. कुछ एक्ट्रेसेस होती है ना कि सब पिकी होती है कि कुछ ही स्टार्स के साथ काम करना है. शी हैज वर्क लाइक मेनी एक्टर्स.
1: या एंड आई थिंक बट करिश्मा इज स्टिल रिमेंबर्ड फॉर हर वर्क विद गोविंदा यार. मतलब वो हीरो नंबर वन, वो सारे मूवीज
0: लाइक व्हाट इज मोबाइल नंबर, या वो भी, या हसीना मान जाएगी.
1: हसीना मान जाएगी में भी बहुत कमाल काम किया है.
0: बट एपिक. बट आल्सो ना
1: इवन विद सलमान खान बीवी नंबर 1
0: एंड जुड़वा. उसके लिए जाने जाती है रुजबेन, लेकिन उसको जो अवार्ड मिले हैं, जैसे राजा हिंदुस्तानी के लिए मिला, फिजा मूवी के लिए मिला जहाँ पे उसने बहन का रोल किया था. क्या क्लासिक रोल था यार वो. देन जुबेदा मूवी याद है तुम्हें?
1: हाँ, जुबेदा. अरे
0: जुबेदा मूवी जहाँ पे उसने इल फिटेड क्वीन का,
1: वो अकेली उसमें थी वो
0: उसे बहुत अच्छे से वो किया था वो रोल. सो शी हैज डन दिस काइंड ऑफ सिनेमाज एज वेल.
1: जुबेदा में कुणाल राव कपूर थे शायद से.
0: या ये रानी होती है, ये क्वीन होती है, ये
1: उसका ऐसा रोल है साइड, मतलब ऐसा
0: बीच में किसी का ऐसा रोल था.
1: एनीवे और भी बातें करेंगे हम आज करिश्मा कपूर के बारे में. कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चले उनके बारे में. उनको कहा जाता है कि क्वीन ऑफ मेजर रिफ्यूजल्स. क्यों ऐसा कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे बस थोड़ी देर में.

0: Trend Makers.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
4: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: 28 plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
2: Winter आ गया है at Mitre 10 Mega Westgate और Henderson with deals on Karcher 18 volt garden skins or 20% off Mitre thermic and selected convection heaters. Plus, spend $20, enter online and be in to win 5 grand. Ends June 30th. T's and C's apply.
3: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
4: Sorry about that.
3: But it's about time you got a taste of Aussie style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
5: Oh, don't slip up on a banana skin. Throw it in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūtaki. All together, Auckland.
6: The beat of Bollywood.
7: World's best. Hamari good brands nahi hai.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: You're listening to Hampling Bollywood's Biggest Hits. आपके लिए करिश्मा कपूर स्पेशल आवर लेकर आ रहे हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए.
2: राजा हिंदुस्तानी में कमाल का काम किया था करिश्मा ने, और स्पेशली ये मूवी हाईलाइट हुई थी बिकॉज ऑफ वन किसिंग सीन ऑफ हर एंड आमिर खान.
1: आई नो, एंड वो जमाने में होते नहीं थे ऐसे किसिंग सीन,
2: उसमें होता नहीं था. सो उसके लिए भी एक्चुअली में हाईलाइट हुई थी ये मूवी. मतलब ये हमेशा बोल्ड रोल्स इसने किए हैं. तुम्हें पता है, मैं पढ़ रही हूँ कि शी वॉज द ओनली वुमन इन फोर्थ जनरेशन ऑफ द कपूर क्लैन टू बी ब्लेस्ड विद रेयर ब्लू ग्रीन आईज.
1: ओ वाओ.
2: या
1: और वो पहली कपूर फीमेल रही है जिसने बॉलीवुड में झंडा गाड़ा है. उससे पहले उनकी एक कजिन है, मतलब संजना कपूर जो शशि कपूर की बेटी है.
2: ओके, द बिग मतलब सिर्फ करिश्मा कपूर ने शुरू किया.
1: करिश्मा कपूर ने हिट होना शुरू किया कि भाई मतलब कपूर खानदान से, बट ये हिट और मतलब
2: फीमेल लीड. कपूर खानदान में मेल लीड में सारे थे
1: हमेशा. एंड संजना कपूर वाज नॉट दैट सक्सेसफुल. उन्होंने डेब्यू किया था 1981 में 36 चौरंगी लेन के साथ, और फिर उन्होंने हीरो हीरा लाल में भी स्टार किया था, लेकिन फिर उसके बाद वो उनका फोकस थिएटर मैनेजमेंट में चला गया था. बट करिश्मा कपूर वाज वन हु वाज नोन फॉर एक्टिंग एंड यू नो बीइंग द लीड. उसके बाद करीना कपूर आई, एंड करीना कपूर ने भी काफी अच्छा काम किया.
2: बट कपूर खानदान में बेसिकली दो ही है फीमेल्स जो मूवीज में है.
1: अभी तीन है ना
2: वो. हाँ वो स्टिल लेके लाइक एज इन की आलिया भट्ट कपूर. वो तो अब कह सकते हैं
1: उसने नाम नहीं बदला उसका. उसका आलिया भट्टी नाम है शायद.
2: वो आलिया भट्टी है.
1: आई डोंट थिंक शी, नहीं भट्टी नहीं, आलिया भट्ट.
2: हाँ
1: आलिया भट्ट
2: भट ही है.
1: या बट करिश्मा कपूर के बारे में काफी लोग जानते हैं कि वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है. और उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट इसलिए उन्होंने किया था क्योंकि उनको सपोर्ट करना था अपनी मॉम को और सिस्टर को.
2: ओके,
1: तो इसलिए उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया और फिर उन्होंने एक्टिंग फुल टाइम परस्यू करना शुरू कर दिया. और उन्होंने डेब्यू किया था प्रेम कैदी 1991 में जब वो सिर्फ 16 साल की थी.
2: वाओ, सो अर्ली. वेल, चाहे स्कूल में इतना नहीं गई, रुजबे पढ़ाई इतना नहीं की, लेकिन ग्लोबल स्पीकर भी बनी है. वो कॉन्फ्रेंस हुई थी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जहाँ पे शी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक सॉफ्ट पावर ऑफ बॉलीवुड.
1: सॉफ्ट पावर ऑफ बॉलीवुड. ओह वाओ, इंटरेस्टिंग है. अभी के लिए चलो कुछ गाने भी सुन लेते हैं करिश्मा कपूर की मूवीज से.
3: पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है.

0: 104.2 FM या रोवा ऐप के जरिए यू आर लिसनिंग टू ट्रेंड मेकर्स. करिश्मा कपूर को आज हम शाउट आउट दे रहे हैं.
1: Yes, and Karishma Kapoor के कुछ facts आपके साथ हम share कर रहे हैं. दिल तो पागल है, काफी लोगों ने मना की थी ये मूवी.
0: एक्चुअली में इनको कहा जाता है क्वीन ऑफ मेजर रिफ्यूजल्स. और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि दिल तो पागल है में काफी लोगों को मना किया था. एंड में करिश्मा कपूर को मिला ये रोल और उनने नेशनल अवार्ड जीता इसके लिए. रवीना टंडन को भी ऑफर किया गया था वो रोल, निशा का रोल, उन्होंने भी टर्न डाउन किया था. इंटरेस्टिंगली राजा हिंदुस्तानी के लिए भी करिश्मा कपूर वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस. इट वॉज ओरिजिनली गोइंग टू बी ऐश्वर्या राय'स बिग डेब्यू मूवी. बट ऐश्वर्या राय हैड टू पास इट, क्योंकि उनके मिस वर्ल्ड के कमिटमेंट्स थे वो टाइम पे. सो दैट्स व्हाई शी कुडंट डू द मूवी. एंड देन करिश्मा कपूर डिड इट एंड वन अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर इट. सिमिलरली एक उनके साइड से जो एक मतलब यू नो जो उनके फेवर में नहीं गया वो था कुछ कुछ होता है. कुछ कुछ होता है मूवी में टीना का रोल जो है, जो रानी मुखर्जी ने प्ले किया था, वो एक्चुअली में करिश्मा कपूर को ऑफर किया गया था. बट शी डिडंट वांट टू प्ले लाइक अ सेकंड लीड.
1: ओके,
0: शी वांटेड टू बी द प्राइम लीड. सो दैट्स व्हाई रानी मुखर्जी गॉट इट.
1: ओह, शी वांटेड टू बी काजोल.
0: शी वांटेड टू बी काजोल बेसिकली.
1: या बट टू प्रिटी, मतलब की रानी, मतलब आई मीन की काजोल के ऊपर वो रोल सूट किया टॉम वॉयश वाला. मेरे को लगता है कि करिश्मा कपूर बिकॉज आंखें भी उसकी ऐसी एंड वेरी प्रिटी एक्चुअली में.
0: एंड आई थिंक रानी
1: टॉम वॉयश का रोल करने के लिए
0: आप देखोगे तो रानी मुखर्जी को इसलिए कलर्ड आइज दिए थे, उसमें लेंस लगाई थी उसने, क्योंकि ओरिजिनल करण जौहर का आई थिंक पिक्चराइजेशन वॉज करिश्मा कपूर ना. तो ब्लू आईज एंड दैट वे लाइट आईज.
1: सो इंटरेस्टिंग. वेल, करिश्मा कपूर के बारे में आज इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिकॉज आज बर्थडे है, तो गाना भी सुनते जाते हैं. दिस इज क्लासिक सॉन्ग यार.
0: ये गाने के मेरे को लग रहा है कि आज भी मतलब इस गाने को आप फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो आपके हाथ पाव तो मूव होंगे. इट्स अ क्लास सॉन्ग, एंजॉय कीजिए. कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में दिस इज मैं तो रस्ते से जा रहा था.

0: sleepyhead sleep easy queen beds from only $7.99. On sale now.
1: Hum. Accurate traffic.
2: What's my house value.co.nz.
3: Rain overnight for Auckland. Strong southwesters, a low of 9 degrees. The northern is heavy in both directions between Esmond Road and Northcote Point. Northwestern reports of a crash just past Waterview heading west to Massey, 29 minutes. On the southern, 50 minutes to Drury. It's heavy heading north from Princess Street to Newmarket, south from Queen Street to Sylvia Park, and the southwestern heavy Massey Road to Ōnehunga.
2: Looking to sell your home? Visit whatsmyhousevalue.co.nz.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है हाँ.
5: अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
8: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
9: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
10: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
11: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
10: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
11: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09-846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
12: दादी के हाथ की चूरी हो या माँ के हाथ के पराठे सबका फेवरेट हलवा हो या तवे पे फूली हुई रोटी हर याद में बसी है कशिश चक्की फ्रेश आटा की वही मीठी खुशबू जो दिल भी जोड़े रिश्ते भी Eat better, live better now with Kashish Chakki Fresh Atta and Multigrain Atta. Available in all leading stores nationwide. www.kashishfoods.co.nz.
13: अरे सुनो मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला
14: फ्री कंटेनर तो अच्छा है लेकिन डोसा कैसा था
13: डोसा तो ठीक ही था लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है
14: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड ट्रेडिशनल कोकोनट टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू
15: Let's go! 3, 2, 1.
16: Trend makers.
17: You're listening to Humbling Bollywood's biggest hits. आपके लिए Karizma Kapoor special hour ये लेकर आ रहे हैं to celebrate Karizma Kapoor's birthday today.
18: Yeah, and अभी वक्त आ चुका है यहीं पे आपको टाटा बाय बाय कहने का Karizma Kapoor के जो गाने हैं well, सारे epic गाने तो classic गाने सावर में हम नहीं play कर सकते but कुछ गाने आपके लिए यहाँ पे हम जरूर play कर रहे हैं
17: जो हमें लगा था कि you know will make the cut and will be one of the top songs वो हमने आपके लिए play किया अभी जाने से पहले एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा इज़ अबाउट Karizma Kapoor ने एक्चुअली में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया करीना कपूर की फिल्मोग्राफी भी क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करीना कपूर को एक्चुअली पास ऑन किए थे सो लाइक फॉर एग्जांपल मूवी असोका 2001 की जो मूवी है वो ओरिजिनली ऑफर की गई थी Karizma Kapoor को बट उन्होंने उसको टर्न डाउन करके उसको करीना कपूर के ओर ढकेला एंड सिमिलरली जो तलाश मूवी थी 2012 की थ्रिलर उसमें भी करीना कपूर को रोल एक्चुअली मैं पहले Karizma Kapoor को किया था अप्रोच
18: लेकिन शी गिव इट टू करीना कपूर
17: गिव इट टू करीना कपूर
18: मेरे को दोनों एक्ट्रेसेस अच्छी लगती है मेरे को करीना कपूर भी एज एन एक्ट्रेस अच्छी लगती है मतलब कुछ स्टार्टिंग की मूवीज उसकी मुझे नहीं अच्छी लगी जैसे वो उसका एरा था ना मैं प्रेम की दीवानी वो सब बट देन इवेंचुअली जब उसने डिफरेंट मूवीज करनी शुरू की तो मुझे वो अच्छी लगनी शुरू हो गई
17: मेरे को ऑनेस्टली उसको वो थ्री इडियट्स में भी बहुत अच्छी लगी थी
18: थ्री इडियट्स इवन तलाश में हीरोइन मूवी में बहुत अच्छी लगी थी मुझे वो सो क्वाइट गुड मूवीज इवन Karizma Kapoor वो भी हर एक रोल अच्छे से कर लेती है अभी मर्डर मुबारक आई थी ना उसकी
17: मर्डर मुबारक आई और अभी एक कोई सीरीज भी आई है कोई आई है कि आई है शायद से उसमें भी एक एकदम थ्रिलर वाला रोल किया है मतलब आई थिंक पुलिस वाला रोल या ऐसा कुछ किया है
18: यस
17: सो या Karizma Kapoor डेफिनेटली अ लेजेंड उनको आज शाउट आउट दे रहे थे बट आई होप यू एंजॉय द शो आपको मिलेंगे हम कल ड्राइव शो में 4 से 3 से 7 के बीच

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है. वे सिटी GWM हैवल. हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स. आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले. लिमिटेड टाइम ऑफर. टीज एंड सीज अप्लाई. फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
5: Today only, donations to rebuild Hātohone St John ambulance stations will be matched dollar for dollar. So, every dollar you give today will go twice as far. Donate at lighttheway.org.nz.
6: Get the kids creating these school holidays with free arts and crafts workshops at Warehouse Stationery. From making slime or creating beaded animals to painting a Matariki masterpiece, there's free fun for everyone these school holidays. Sign up now at warehousestationery.co.nz.
7: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
8: There's a reason the Big Ben six-pack is a go-to in Kiwi homes. Everyone gets hungry, just not at the same time. Someone's just walked in, starving. Someone's heading out, also starving. Someone said they weren't hungry. Now they are. Someone's just eaten. And somehow hungry again. Waves of hunger just keep coming, but so do the pies. That's the genius of a Big Ben six-pack. So if hunger's a constant force at your place, grab a pack. Big Ben, feed your mission.
9: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: आपका मोमेंट क्रिश का मैजिक ओनली ऑन हम.
1: You're listening to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. नाइट कैफे जारी है. रिदम एंड रोमांस आप सुन रहे हैं और एक के बाद एक ये सारे प्यारे गाने जो रोमांटिक सॉन्ग्स हैं वो भी आपके लिए हम पेश करते रहेंगे. साइंटिस्ट का मानना है, जो इंटरनेशनल मेडिकल रिव्यू में पब्लिश किया गया है, रिसर्चर्स इनफेक्ट का मानना है कि वेपिंग लाइकली कॉजेज लंग एंड ओरल कैंसर. एक मेजर रिव्यू ने एग्जामिन किया है एविडेंस ऑन ई सिगरेट यूज़ और रिसर्चर्स ने कहा है कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन सामने आता है ऑफ कैंसर रिस्क. ह्यूमन लेबोरेटरी और एनिमल स्टडीज़ को एनालाइज किया गया है और फाइंडिंग्स ने चैलेंज किया है क्लेम्स की वेपिंग हमले से, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कॉशन अर्ज किया है और कहा गया है कि लॉन्ग टर्म यूज़ से बचे और लॉन्ग टर्म यूज़ से कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती है, जो इस रिसर्च का मानना है. 21 जून ऑफ दिस ईयर को इस रिसर्च को पब्लिश किया गया है बाय इंटरनेशनल मेडिकल रिव्यू. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. कुछ और सामाजिक सूचनाएँ भी आपके लिए शामिल करेंगे प्रोग्राम.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स नाइट कैफे जारी है और मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ। एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी हम पेश करेंगे आपके लिए। ओकलैंड के लिए सूचना है फिजी इलेक्शंस वोटर रजिस्ट्रेशन की ओर से कि वेंसडे टू फ्राइडे यानी 24th to 26th June ऑफ दिस ईयर दिन में 12 से लेकर रात 8 बजे तक वोटर रजिस्ट्रेशन ओपन है आपके लिए। मैंगरी सेंटर पार्क आप जा सकते हैं, 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी। तो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं मैंगरी सेंटर पार्क, 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी। दिन में 12 से लेकर रात 8 बजे तक होगा, 24th to 26th of June तक। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ और भी प्यारे गाने आपके लिए। नाइट कैफे जारी है।

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: You're listening to Krish on your number one hum, playing Bollywood's biggest hits. हम के साथ जब भी आप रहते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा होते रहता है. कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हम लेकर आते हैं जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा होता है. What if ये ईस्टा सिर्फ एक लॉन्ग वीकेंड नहीं रहता, लेकिन सन, स्टोरीज, केओस और ए क्रू साथ में कहीं पर जाते, एन ए क्रू हेडिंग ऑफ टुगेदर. तो अगर आपको थोड़ा कुछ हिंट मिल रहा है या आप सोच रहे हैं क्या, किसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको हमें सुनते रहना है, बिकॉज यू वुड नॉट वॉन्ट टू मिस दिस. ये सूचना, ये जो अनाउंसमेंट है, ये आपको सुनना है हमारे साथ होकर. इसलिए आपको हम के साथ चिपके रहना है, हमें सुनते रहना है, क्योंकि ये ईस्टा सिर्फ जस्ट अ लॉन्ग वीकेंड नहीं रहेगा, लेकिन सन, स्टोरीज, केओस और अ क्रू हेडिंग ऑफ टुगेदर. इसके लिए आप हमें सुनते रहो. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. जारी है आपके लिए हम पर नाइट कैफे.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
5: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m.
6: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active with gentle movement that's right for you can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
7: Please use your imagination for the following ad.
8: If I won Powerball, I'd plan to do something crazy like... And once I'd calmed down, I'd actually do something like...
9: Imagine winning $15 million this Saturday. Play in store or online.
10: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है. अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं. मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं. कशिश प्रीमियम बासमती राइस. ईट बेटर, लिव बेटर. फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz. अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स.

0: whispers of ishq.
1: You're listening to number one hum playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. हम podcast के बारे में जितना बातें करें उतना ही कम है interesting information इनके साथ होता है. Unfiltered Drive में recently रिज़बे और सैंडी ने बातें किया निवेदिता विज के साथ में, discussing thalassemia and its impact on the South Asian community. तो podcast में ये इन बातों पर गौर फरमाया गया है और आप ज़रूर सुने. One simple screening family का future बदल सकता है, तो आप last minute तक इंतज़ार ना करें, too late तक इंतज़ार ना करें. Silent carriers एक hidden जेनेटिक थ्रेट होता है जो साउथ एशियन फैमिलीज के लिए एक थ्रेट बन चुका है. क्यों अर्ली थैलेसीमिया स्क्रीनिंग ज़रूरी है? वाइटल कन्वर्सेशन हर एक घर में होना चाहिए. और क्यों साउथ एशियंस हायर रिस्क होते हैं फॉर थैलेसीमिया, और क्या आपको जानना ज़रूरी है? निवेदिता शर्मा विज के साथ ज़रूर जो बातें हुई है ये आप सुने. ये एक सीजनड हेल्थ प्रोफेशनल है, अ मदर विद लिव्ड एक्सपीरियंस पायनियरिंग सेल्फ केयर. और साथ ही में अगर और जानकारी के लिए आप ड्राइव टेक्स करते हैं 5599 पर, तो फुल ऑडियो के लिए जानकारी आपको मिल जाएगा. साथ ही में ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय और पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, ये सुनने के लिए आप BF टेक्स करें 5599 पर और कैचअप कीजिए अपने आप को या अपने साथ ऑन पॉडकास्ट जो हम पर आपके लिए जारी है और जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए डिस्कस करता है. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ.

0: moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: You're listening to number one, humping Bollywood's biggest hits. Main Krish aapke saath de raha hoon. Oakland, get ready. Ek evening of laughter entertainment hone ja raha hai with Gujju Bhai ni exchange offer, jisme legendary Siddharth Randeria aa rahe hain. Ye brand new comedy hai jisme Gujju Bhai finds himself caught up in an unusual exchange offer, jisse series of hilarious misunderstandings, unexpected twists aur laugh out loud situations aate hain. Witty dialogues hai, relatable family moments honge aur is show mein classic Gujarati humor bhi sunne ko milega, dekhne को मिलेगा. एक होल फैमिली शो ये है आपके लिए. सिद्धार्थ रंधेरिया, गुज्जू भाई प्रोडक्शन, जहां पर भी जाते हैं ये सेल आउट हो जाते हैं. तो लास्ट मिनट तक आप टिकट का इंतजार ना करें. टिकट्स आज ही बुक कीजिए premiertickets.co.nz और एक्सपीरियंस कीजिए द मैजिक ऑफ गुजरात्स मोस्ट लव्ड कॉमेडी कैरेक्टर लाइव ऑन स्टेज. ये 3 July को होने जा रहा है, 7:30 PM विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर ओकलैंड में ये होगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

फिल्टर्स पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywood's biggest hits.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आपसे रैप का नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश के साथ है और बहुत सारे लेजेंडरी सिंगर्स को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं और ये लाइव शोज भी करने के लिए आ रहे हैं। एक ऐसा लेजेंडरी सिंगर है राहत फतेह अली खान जो ओकलैंड आ रहे हैं एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक के लिए। ये मैजिक आपको एक्सपीरियंस करना है क्योंकि टाइमलेस हिट्स होंगे, सोल स्टिरिंग कवाली होंगे, इनके पावरफुल वॉइस में, कैप्टिवेटिंग वॉइस में आपको सुनना है ऐसे गाने जो आपको बेहद पसंद है। बॉलीवुड में इन्होंने बहुत सारे गानों को रिकॉर्ड किया है। 25 जुलाई को ये शो होगा ट्रस्ट अरीना में और जय के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन की ओर से ये शो आपके लिए होने जा रहा है। dryticketsdotcom से आप टिकट्स ले सकते हैं। डबल पास जीतना है तो एक रैपिड फायर क्वेश्चन हमारे साथी आपसे जब भी पूछेंगे आपको तुरंत कॉल कर या टेक्स्ट कर जवाब देना है। ड्रो में शामिल होकर डबल पास जीतने का मौका होगा। लेजेंडरी राहत फतेह अली खान को देखने के लिए आप टिकट जरूर ले। 25 जुलाई को ये शो होने जा रहा है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: At Bunnings, you know you're going to get the lowest prices every day. Because where you find a competitor's lower price on the same in-stock item, we'll beat it by 15%. Conditions apply. See website for details. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
2: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale. Here's your chance to save on their range of best-selling carpet and hard flooring. Discover the sale at your local Flooring Extra today.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
4: Night Cafe. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
5: Whispers of Ishq.
4: Aapka moment. Krish ka magic. Only on Hum.
6: You're listening to number one, Hum playing Bollywood's biggest hits. कुछ ही देर तक और इस घंटे पर आपका साथ रहेगा। याद रहे 12 तक मैं आपका साथ दूंगा। रिदम एंड रोमांस आपके लिए जारी है। बॉलीवुड न्यूज़ भी आपके लिए हम लेकर आए हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा कहा गया है कि एक रेयर जीन वेरियंट में प्रमोट हेल्थी एजिंग, इस पर भी जानकारी मैं दूंगा। इंटरनेशनल जेनेटिक्स रिसर्च से ये पब्लिकेशन हमारे हाथ लगा है और बहुत इंटरेस्टिंग रीड है ये, जिसके बारे में जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जितने भी हमारे लिसनर्स अभी ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते पर हैं, आपको भी शामिल करते हैं। ट्रक ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर्स और ऊबर ड्राइवर्स, हमेशा हम की गूंज आपके पास होती है, नज़दीक होती है। जब भी आप जाते हैं, सफ़र करते हैं, हमारा साथ देते हैं। थैंक यू सो मच। अगला गाना आप सभी के नाम।

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits, Krish के साथ है. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है. श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है. स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है. सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है. 8 अगस्त को होगा और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग

0: Cafe on Hum. Jazbaat ki narmi, mohabbat ki raaz.
1: Whispers of Ishq.
0: Aapka moment, Krish ka magic. Only on Hum.
2: It is our final hour aur main Krish aapka swagat karta hoon. Thank you so much for your great company jo abhi 8 to midnight hame milta hai. Monday to Thursday night cafe lekar main aa jata hoon. Kuch hafton se hamara saath hamesha banta hai. Every week without a miss aur bahut hi acha lagta hai jab aapka saath hame milta hai. Is ghante par bhi interesting khabrein main aapke liye lekar aaya hoon jo aapke saath main share karunga. Kya kuch ho raha hai hamare beech is par bhi jankari. Interesting science related information hai. Khaas taur par main aapko batana chahunga about ki ये एक रेयर जीन वेरिएंट है जो हेल्थी एजिंग को प्रमोट कर पाएगा. आई एम श्योर हेल्थी एजिंग हर कोई करना चाहेगा, तो इस पर जानकारी मैं आपको दूंगा. आज थर्सडे है, रोमांटिक प्रोग्राम आपके लिए जारी है. सेंसुअस गाने आपके लिए, बहुत ही प्यारे गाने आपके लिए. इनफैक्ट गाने तो ऐसे जो आपको सूदिंग फील कराए, रिलैक्सिंग फील कराए. जबकि आज थर्सडे है, वेरी क्लोज टू द वीकेंड. तो मैं क्रिश आपका स्वागत करता हूँ न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स अपडेट के बाद में. अभी 30 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप म्यूजिक आपके लिए, जो एक के बाद एक आपके लिए आपके फेवरेट स्टार्स, फेवरेट आर्टिस्ट लेकर आ रहे हैं. और गाने सारे के सारे बहुत रोमांटिक है, बेहद रोमांटिक है आपके लिए, जो आप इन्जॉय करेंगे. सुनते रहो, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ऑन हम.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: All your favorite songs हमारे साथ होगा, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. इंटरनेशनल जेनेटिक्स रिसर्च ने 21 जून ऑफ दिस ईयर एक रिसर्च पब्लिश किया है, जहाँ पर साइंटिस्ट ने फैमिलीज विद अनयूजुअली लॉन्ग लाइफ स्पेंस को स्टडी किया और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ रेयर जेनेटिक वेरियंट्स जो एसोसिएटेड है विद हेल्थी एजिंग. एक म्यूटेशन से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है और डिस्कवरी अब आगे चलकर लॉन्गजेविटी को की अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर पाएगा, जिससे अब न्यू एंटी एजिंग थेरेपीज भी तैयार हो सकते हैं. तो ऐसे ही हमारे आर्टिस्ट जो हमारे जो स्टार्स हैं, जो साइंटिस्ट है, जो इतने बड़ा बड़ा काम कर दिखाते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो, ह्यूमैनिटी के लिए भलाई हो, ऐसा ही कुछ करते हैं. कुछ बीमारियों के लिए दवाइयाँ या कुछ ऐसे चीज़ें जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, वही जानकारी आपके लिए हम शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं. कृष्ण का साथ है.

0: नाइट कैफे ऑन हम। हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है, क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें, गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.govt.nz/floods।
2: Dad, I feel sick.
3: Yep, we've all been there, and so has Sea Legs. For over 55 years, Sea Legs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sea Legs and enjoy the journey. Sea Legs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness, avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
4: Jen didn't think she needed a DVS system.
5: Oh, I've got insulation in that.
4: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
5: Ah, yeah.
4: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
6: To all you tradies out there, sick of those freezing 5 a.m. starts? Keen to get off the tools? If you know your way around a bathroom and have the gift of the gab, Elite Bathroomware is looking to build you a career as a professional sales consultant. No experience? No problem. Just bring your can-do, go-getter attitude. Imagine ditching the tools, the muddy boots and the sorebacks. Sound like a dream? Send over your CV today. Head to elitebathroomware.co.nz.
7: Night Cafe on Hum. Just baat ki narmi, mohabbat ki raaz.
0: Whispers of Ishq.
8: You're listening to number one Hum playing Bollywood's biggest hits. Krish ka saath hai aur hamara saath rahega midnight tak kuch hi der tak aur hum aapka saath denge. Aapko bas hamara saath dena hai. मैं क्रिश आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी लेकर आता हूं जो लोग सुनना पसंद करते हैं. बॉलीवुड की खबरें भी आपके लिए हम शामिल करते हैं. और अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की खबरों में यहां पर हमारे पास जो जानकारी है दैट इज़ कि आमिर खान का वेडिंग प्लान कंफर्म हो चुका है. इन्होंने कहा कि एक इंटीमेट वेडिंग सेरेमनी इनका होगा और मीडिया कवरेज काफ़ी अट्रैक्टेड हो चुके हैं इस अनाउंसमेंट को लेकर. सरप्राइज़ और क्यूरियोसिटी भी ऑनलाइन मिला है फैंस के थ्रू, फैंस के तरफ से. और सेरेमनी बहुत प्राइवेट रहेगा और कहा गया है कि वन ऑफ दी मंथ्स बिगेस्ट सेलिब्रिटी स्टोरीज़ में ये कहानी, ये स्टोरी को रखा गया है जहां पर बार बार मीडिया इसी बात को लेकर बुलेटिन या न्यूज़ बना रहे हैं कि आमिर खान की शादी इज़ गोइंग टू बी मच अवेटेड इवेंट. मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूं और भी प्यारे गाने आपके लिए, रोमांटिक गाने एक के बाद एक आपके लिए आज.

नाइट कैफे यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा। और मैं होप करता हूँ कि आपने रोमांटिक सॉन्ग्स को पसंद किया होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखे, अब मुलाकात होती है सैटरडे मॉर्निंग को, मैं आ जाऊँगा। कल फ्राइडे का दिन बहुत ही अच्छी तरह बीते, फ्राइडे नाइट अच्छी तरह बीते, सैटरडे मॉर्निंग की को सबसे पहले मॉर्निंग में आपको जगाने के लिए मैं आ जाऊँगा। कृष का बहुत सारा प्यार, गुड नाइट एवरीवन।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
2: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
3: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
2: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
4: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड। ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव। नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
5: द बीट ऑफ बॉलीवुड,
6: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: Flight on Hum.
1: Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, hey.

0: दिया।
1: स्ट्रीमिंग ऑन रोवर।
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09 27 99 439 और विजिट लीगल एसोसिएट्स डॉट को डॉट इन सेट।

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे। नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस। हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स। लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही। अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ। बोली, बस मेरा फोकस है।
4: हाँ। अच्छा
3: बताओ तो आड़ा फोकस साड़ा कुछ नहीं।
4: मिसेस सिंह,
5: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन।

0: flight on Hum.
1: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
2: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
1: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
2: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
3: इंट्रोड्यूसिंग द न्यू चटनी रेंज फ्रॉम अम्मास फूड, ट्रेडिशनल कोकोनट, टैंगी टोमेटो और क्रंची पीनट चटनी, परफेक्ट विद अम्मास इडली और डोसा बैटर। अम्मास फूड 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, नाउ अवेलेबल एट ग्रोसरी स्टोर्स नियर यू।
4: Smart Pay is now
5: Shift 4 Dakota NZ Global Commerce Local Service.
4: Running a business keeps you busy enough. Managing your payments should be the easy part. Shift 4 is here to help with friendly 24/7 local support. Plus, their simple merchant dashboard lets you see your daily sales and more at a glance. So, make the shift today.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Arey Babita, thank you so much for giving me Guru's number, yar.
5: Kyun? Kya hua?
4: Mujhe urgent kaam se Fiji jana tha. $20,000 chahiye the. Bank gayi to itne documents mange ki bas poochho hi mat. Ek hafta ho gaya. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424।
6: द बीट ऑफ बॉलीवुड
7: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: The beat of Bollywood.
2: World's best. हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: Night flight.

0: Flight on Hum.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर।
1: हाय न्यूजीलैंड, दिस इज सिद्धार्थ रोंदेरिया गुज्जू भाई
2: अने हूँ तेजल व्यास।
1: हमे आवी रहा छे अमारू नवो नक्कोर सुपर हिट कॉमेडी नाटक गुज्जू भाई नी
2: एक्सचेंज ऑफर।
3: फ्राइडे 3 जुलाई विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पर लर्निंग एचक्यू, सोना संसार एंड ट्यूलिप फाइनेंशियल सर्विसेज प्रेजेंट्स सिद्धार्थ रोंदेरिया नू नवो नाटक गुज्जू भाई नी एक्सचेंज ऑफर। हसी हसी ने लोटपोट थवा तैयार थई जाओ। टिकट्स जल्दी बुक करी लेजो। फोन करो 021-244-6278 पर।

0: सूचित किया जाता है कि भूरा एन जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहनीश और रोविन जोखन की मां, होटन स्ट्रीट सुबह फिजी की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे वतुअंगा सुबह शमशान भूमि में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं। भूरा एन जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी यानी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहनीश और रोविन जोखन की मां, होटन स्ट्रीट सुबह की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन उर्फ केवला की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे वतुअंगा सुबह शमशान भूमि में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-332-6843 पर संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि शेंटेल और भावना के पिता यानी कुशमिला मंसेल के पति गुडवुड हाइट्स मेनुकाओ के कीस ईएन मेंसल की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-396-4660 पर संपर्क कर सकते हैं। शेंटेल और भावना के पिता यानी कुशमिला मंसेल के पति गुडवुड हाइट्स मेनुकाओ के कीसीएन मेंसल की मृत्यु मिडलमो अस्पताल में हो गई। अंतिम संस्कार कल 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रमेशंस 11 बोल्डरवुड प्लेस वीरी में किया जाएगा। श्रद्धांजलि और जानकारी के लिए आप 022-396-4660 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: शोक सूचनाएं वीक डेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
2: जबरदस्त हिट्स
3: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं,
2: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
3: हम।
2: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
0: लगभग 10 डिग्रीज टेम्परेचर ऑकलैंड में अभी आप फील कर रहे हैं। आज का हाई 14, ओवरनाइट कम से कम 8 डिग्रीज रहेगा। गंभीर बारिश के साथ दिन की शुरुआत, शाम और रात के समय कुछ हल्की बारिश हो सकती है। सनराइज 7:34 AM पर और आज का सनसेट शाम 5:14 पर होगा।
2: Breakfast show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
2: Breakfast catch up.
0: नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ब्रेकफास्ट शो में। और हम पर आज हफ्ते का आखिरी दिन, आप में से कई लोगों के लिए फ्राइडे 26 जून की ये सुबह आप सभी को बहुत बहुत बार शुभ और मुबारक हो। आगे हैं एक बार फिर आपका साथ देने के लिए और अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ होने वाला है इस प्रोग्राम में। 4 घंटे का ये बहुत ही खुशनुमा सफ़र आपकी खातिर होगा। हालांकि मौसम बीते 2 दिनों की तरह आज भी कुछ खास ठीक नज़र नहीं आ रहा है। दिन भर बारिश होती रहेगी और दिन की शुरुआत तो आज कुछ गंभीर बारिश के साथ होने को है। बाद में चलकर मौसम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आप नोटिस करेंगे, बारिश थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन आज भीगा भीगा मौसम जो है ये रहने वाला है। तो अपनी पूरी तैयारियों के साथ आज के दिन घर से आप निकले, छतरी वगैरह जो है ये अपने साथ में रखें, इट कम्स हैंडी। और सुनते रहें मौसम पर नवीनतम जानकारियां। वीकेंड में किस तरह का वेदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसकी भी जानकारियां आपको हम पर हम देंगे। और साथ ही में आज कुछ ज़रूरी खबरें हैं, एंटरटेनमेंट की कुछ बातें हैं, इनाम जीतने के मौके हैं, ये सब कुछ रहेगा अभी से लेकर ठीक 10 बजे तक। आज के सनी साइड अप स्टोरी के साथ हम आगे बढ़ेंगे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। बस इतना ही कहना है, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हम 104.2 FM और रोवर पर।

0: Inside Up.
1: चौदह मिनट हो रहे हैं, छह बजकर और आज का सनी साइड अप स्टोरी का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग आपको.
2: गुड मॉर्निंग आप सभी को भी, अ वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
1: बारिश हो रही है तो ऐसे में यू नो बेड से बाहर निकलने का मन नहीं होता किसी को ना.
2: मेरे को तो जरा भी नहीं होता. आई मीन इट्स नॉट जस्ट मी, आई बिलीव इट्स अ लॉट ऑफ यू एज वेल, कि आपको भी दिल नहीं करता है कि ऐसा कुछ करे. मतलब सुबह सुबह जिनका शिफ्ट होता है उनको तो ज़्यादा दिक्कत होती है कि उठकर भैया जाना है, और बारिश अगर ज़्यादा हो उसी समय पर तो बहुत रोना आता है. मुझे तो आता है, आई डोंट नो, बट ऐसे मौसम में अभी कंट्रोल तो है नहीं हमारा, अभी जो वेदर है उसके हिसाब से चलना ही पड़ेगा. बट नेवरदलेस आगे है आप सभी का साथ देने के लिए. थोड़ी देर से मैं आई हूँ ज़रूर, बट आई एम हियर फाइनली, और आपके साथ आज की सुबह हम जरूर स्पेंड करने वाले हैं, और आपके साथ आज का ब्रेकफास्ट शो जो है ये बिताने के लिए एकदम एक्साइटेड, जहां पर वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद आवर सनी साइड अप स्टोरी.
1: आज का सनी साइड अप स्टोरी जो है थोड़ा डिफरेंट है, तो आप पहले ये सुने.
3: एक आदमी दो गधों पर दो दो बोरियां लादकर पहाड़ पार कर रहा था. बीच रास्ते में पहले गधे जबरू के पैर कांपने लगे. उसने दूसरे गधे से कहा, भाई गबरू मेरी एक बोरी ले लो ताकि मैं घाटी चढ़ सकूं. लेकिन गबरू ने कहा, ये तेरा काम है, तेरा वजन है, मैं क्यों उठाऊं. जबरू उदास मन से चढ़ाई करने लगा. अचानक उसका पांव फिसला, दो बोरियां जमीन पर गिरी और जबरू खाई में गिर गया. आदमी रो पड़ा, लेकिन एक गधा तो हमेशा के लिए चला गया. अब आदमी ने जमीन से दो बोरियां उठाई और गबरू की पीठ पर लाद दी. अब गबरू की पीठ पर चार बोरियों का बोझ था, साथ में पछतावे का भार भी था. अगर मैंने समय रहते एक बोरी उठा ली होती तो इसके बदले दो नहीं उठानी पड़ती. दोस्तों, जिम्मेदारी से भाग के आज हल्का लगेगा, पर कल उससे दुगना भार होगा, साथ में मन में पछतावा भी होगा जो तुम्हें तोड़ देगा. इसलिए अगर कोई जिम्मेदारी आती दिखे तो उससे मुंह मत फेरो, बल्कि उसे खुशी खुशी पूरा करो.
1: तो ये थी आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरी.
2: It was literally a story, but stories में इस story में भी एक सीख ना, जहाँ पर आपको कुछ सिखाने के लिए ही ये story जो है ये बताई गई.
1: या दो गधों की कहानी. जिम्मेदारियों से भागना जो है ये जिम्मेदारियों को कम नहीं कर देता, इस बात का आप हमेशा ख्याल रखें. थोड़ी देर बाद न्यूज हेडलाइंस भी हम आपके लिए लेकर आएंगे. The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: headlines.
1: सुबह के मुख्य समाचारों में वेनेजुएला में पिछले एक सदी का सबसे भयानक 7.5 मैग्नीट्यूड का एर्थक्वेक आया है, जिसमें कम से कम 188 लोगों की मौत हो गई है और 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक रबल यानी मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और US ने हेल्प के लिए टीम्स भेजी हैं, जबकि देश का मेन एयरपोर्ट भी काफी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। भारत में अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के पैसे चोरी करने के आरोप में 8 लोगों को कस्टडी में लिया गया है, जिनमें से 6 कैश काउंटिंग करने वाले टेम्पल एम्प्लॉइज हैं और उन्हें CCTV पर एम्बेजलमेंट करते हुए पकड़ा गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कंप्लेन पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपीज गायब होने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव द्वारा इस डोनेशन रॉ को उठाए जाने के बाद SIT ने इसकी जांच की थी और अब इन अरेस्ट पर SP ने इसे राम भक्तों के लिए जीत बताया है। फिजी के भूतपूर्व इकोनॉमी मिनिस्टर अय्याज सैयद खयूम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फिजियन प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रम्बुका की सरकार को आने वाले बजट में बिना आम जनता पर बोझ डाले डेट यानी कर्ज कम करने और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर घटाने की सलाह दी है। उन्होंने होटल टैक्स री इंट्रोड्यूस करने, हाई इनकम NS पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवी बढ़ाने और मिनिस्टर्स की संख्या 2/3 यानी 2/3 कम करके देश का पैसा बचाने के बड़े सुझाव दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने बस फेयर्स पर कंज्यूमर्स को डायरेक्ट सब्सिडी देने, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक्सप्रेस लेन्स बनाने और इलेक्शन से पहले किसी भी नए एड हॉक बिल्स और कमीशंस की फंडिंग को तुरंत रोकने की मांग की है। फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज 6 और मैचेस खेले जाएंगे। सुबह 8 बजे ग्रुप ई के

0: कल अभी साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के बीच मैच खेला जा रहा है। नेदरलैंड्स ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और साउथ अफ्रीका 12.2 ओवर्स में अभी 117 रन बनाने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा इंडियन मेंस क्रिकेट टीम जो है ये कल आयरलैंड का सामना करेगी और दोनों देशों के बीच 5 T20 मैचेस जो है ये खेले जाएंगे या 2 T20 मैचेस जो है ये खेले जाएंगे और इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। फिजी में बिग फिजी फैक्ट के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स इस सप्ताह अंत खेले जाएंगे। कल पहले सेमीफाइनल में होस्ट लंबासा बा से खेलेगा जबकि दूसरे सेमीफाइनल में लोटोका का मुकाबला नावुआ से होगा। इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे। ये रहे सुबह के ग्लोबल हेडलाइंस।
1: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सबडिविजन्स। विजिट indelibleholmes.co.nz।
2: Hollywood's most wanted.
3: Gundi khad gao ya seedha andar aao.
4: Main laun apna A game.
2: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके लिए जारी है। अभी 28 मिनट रह गए हैं 7 बजने में और बॉलीवुड में भी तमाम चीज़ें जो है ये हो रही हैं और होती रहती हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारियां जो है ये हम आपको देते रहते हैं। कल आपको याद होगा हमने बातें की थी अबाउट मिर्ज़ापुर द मूवी।
1: यस आई नो।
0: तो उसका टीजर जो है ये कल रिलीज हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ पहले। यू हैव अ लिसन।
1: ओके
0: एंड देन टेल मी।
2: काबिल औलाद बहुत मुश्किल से मिलती है और कभी कभी नहीं भी मिलती।
3: आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जितने गैंगस्टर लोग एम्बिशियस रहे हैं सब साले टॉप पे पहुंचे हैं, नीचे से उठकर ऊपर गए।
4: वो सब ऊपर नहीं गए, ऊपर ही चले गए।

0: सीटी बजाना बंद करो।
1: तो फिर क्या बजाएं?
2: हम ही लोग चला रहे हैं कालीन भैया का एम्पायर।
3: हमें एम्पायर चलाना नहीं है गुड्डू भैया, बनाना है।
4: ए, नमक लिया रे।
5: भैया नमक तो ठीक डाले थे, कम लग रहा है क्या?
4: हम कब बोले कि खाने में डालना।

0: सारी प्रजा को मार देंगे तो राज किस पे करेंगे।
1: ये है टीजर इस पिक्चर का।
2: वेरी नाइस, आई लाइक द लास्ट डायलॉग।
1: उसी लास्ट डायलॉग के लिए मैं रुका हुआ था, वरना मैं कब का रोक देता, लेकिन इट वाज इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस टीजर। बट माय गॉड, मिर्जापुर द मूवी
2: समथिंग लुक्स, आई मीन लुक्स तो खैर लुक्स तो उनके लिए जिन्होंने लुक किया हो, बट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। Since we are on radio, अब आपने मुझे कुछ सुनाया और मैं भी आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ और इससे जुड़े डिटेल्स जो है मैं आपको बताती हूँ। तो आपके पास ये ऑडियो पहुँच चुका है एंड बिफोर एक्चुअली आप ये अप्लाई करें, आई लाइक टू टॉक टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बनती है, राइट? वी वॉच देम, वी गेट एंटरटेन्ड, वी एन्जॉय दैट एंड शायद कुछ दिनों तक उसका नशा जो उतरता नहीं उस फिल्म का, we go crazy over it, but certain movies are made not just for entertainment purposes. कुछ फिल्में ऐसी भी होती हैं जो कुछ ऐसे लोगों की कहानी हम तक पहुंचाई जाती है जिसके जरिए, जिनके बारे में शायद हमें पता नहीं होता है, या फिर कुछ ऐसी कहानियां पहुंचाई जाती है जिसकी असल चीज हमें पता नहीं होती है unless and until we watch this movie. So इस बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं a new movie which has been announced by Dinesh Vijjan और साथ में Madhok Films. And I would say I'm a big fan of this production house, Madhok Films. क्योंकि जब भी ये कोई मूवी अनाउंस करते हैं ना, तो वो मूवी मुझे इवेंचुअली बहुत पसंद आती है. And they have actually announced a movie with this teaser. और ये फिल्म 7th of August को रिलीज होगी इन cinemas.
1: So have a listen. इस फिल्म के बारे में आज सुबह मैं भी पढ़ रहा था. And पहले आप सुन ले.
3: Your Honor, पिछले डेढ़ साल में इस केस के चलते बहुत बार लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछे कि जब फोटोज वीडियोस में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो हम कसाब को फांसी क्यों नहीं दे रहे, क्यों इतना पैसा इतना वक्त बर्बाद कर रहे हैं आतंकवादी के ऊपर। कुछ देर के लिए अपने आप को 26/11 की रात को इंस्पेक्टर गोविलकर की जगह रखकर देखिए, जिन्हें कसाब ने गोली मारी, तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि गुस्सा भरा होगा गोविलकर साहब में। और फाइनली जब कसाब को निहत्ता पकड़ा गोविलकर साहब ने यह नहीं कहा कि गोली मारो इसे खत्म करो जल्दी, नहीं, उन्होंने कहा याला मारू नका, हाँ एविडेंस आहे। गोविलकर साहब ने ऐसा क्यों किया, इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है, इंडिया। और यही कारण है कि कसाब जैसे आतंकवादी को भी कानून के रास्ते पर चलकर उसके गुनाहों की सजा देंगे हम। That's why, for the crime of waging war against India, I, Ujjwal Nikam, ask that Ajmal Amir Kasab

0: बादशाह हुआ अपनी सदारत के, लेकिन ये लोग हैं ना ये मुझे देखने आते हैं।
1: तो दिस पर्टिकुलर मूवी जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं अविनाश अरुण, और इसे इसमें आपको दिखने वाले हैं नन अदर देन राजकुमार राव, जो कि उज्जवल निकम इनका कैरेक्टर जो है, इनका किरदार जो ये निभा रहे हैं। द नेम ऑफ द मूवी इज प्रहार, द उज्जवल निकम स्टोरी। ये दरअसल एक ऐसी फिल्म है विच हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी ऑफ इंडिया के सबसे जाने माने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और जो फिल्म है ये बेसिकली आपको कहीं ना कहीं उस दर्दनाक हादसे से वापस से गुजारेगी, और उसके बाद क्या होता है उसकी कहानी जो है ये भी आपको दिखाएगी। एंड इस फिल्म में वामिका गबी, जयदीप अलावत, सिकंदर खेर और तरुण शर्मा जो है ये नजर आने वाले हैं।
2: तो दो ऐसी फिल्मों के बारे में आज सुबह सुबह बातें हो गई हैं, और आप भी जाकर जो टीजर्स हैं ये डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। अभी 21 मिनट रह गए हैं 7 बजने में।
3: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: देखो आ गए
3: Accurate traffic.
5: Denza premium plug-in hybrid SUVs.
6: Clouding today, some light rain, a high of just 14. Southern Motorway, 25 minutes, Monaco to town, 40 from Drury. A breakdown just after the Drury on-ramp sorted. We're slow in patches around Manurewa, Papatoetoe and Mount Wellington. Fine on the southwestern, but a bit of traffic heading to the airport terminal. Northwestern, 22 and from Massey, slow at Te Aratu and St. Luke's to the city. Northern, slow Constellation to Waito Valley and at Esmond.
5: Visit Denza, Auckland City. Plug-in hybrids from $89,990 plus on-road costs today.
7: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology, and right now it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech, available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
8: It's a client who tried DIY, it did not work. It's that 5-minute job still going 5 weeks later. It's a supplier, everything is out of stock. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
9: Discover the magic at Go Bananas Chaike, jahan aapke bachche seekhenge in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, hum hamesha aapke paas hain.
10: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
9: To jaldi join kare to enjoy these special offers. Aur sabse khas baat, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. To dekh मत कीजिए, कॉल 0800 46 26 26 टुडे।
10: अवेलेबल एट सिलेक्टेड ब्रांचेस, टीज एंड सीज अप्लाई।
11: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
12: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
13: And award goes to Indelible Homes.
12: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
14: Kahani of Indelible Homes.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
15: Breakfast Catch Up.
2: 19 मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे। और आज गुड मॉर्निंग के आपके जो मैसेजेस आए हैं, सबसे पहले राम राम, जय माता दी, हैप्पी फ्राइडे एवरीवन, हैव अ गुड डे। मिस्टर मटा मटा, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग।
1: और इनके अलावा देखा जाए तो आज कुछ और गुड मॉर्निंग मैसेज जो है ये भी आए हैं। मैंडी, इन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग विजय पूजा, हैव अ वंडरफुल फ्राइडे। थैंक यू सो मच मैंडी, आपके भी मैसेज के लिए।
2: और उसके अलावा नमस्कार विजय एंड पूजा, मे दिस डे बी वंडरफुल एज बोथ ऑफ यू आर। माता रानी कृपा करे, एंजॉयिंग माई ड्राइव, लिसनिंग टू यू बोथ, हैव एन अमेजिंग डे। जया, अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आपको भी इस दिन, इस सुबह की बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू जया। मॉर्निंग पूजा एंड विजय, जय माता दी, हैप्पी शुक्रवार एंड एंजॉय सप्तांत, माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ये बॉबी मान जी ना हमेशा मुझे सरप्राइज कर देते, आज पूरा हिंदी में लिख के भेज दिया, लाइक नो इंग्लिश लेटर्स एट ऑल। थैंक यू सो मच बॉबी जी आपके भी मैसेज के लिए, एंड विशिंग यू द सेम, हैप्पी शुक्रवार और एंजॉय योर वीकेंड।
2: जय सियाराम विजय और पूजा जी, हैव अ ग्रेट डे एंड माता ब्लेसिंग्स अपॉन यू ऑल। परम महाराज जी, आपको भी इस सुबह इस दिन की शुभकामनाएं।
1: और कोमल ने भी अपना मैसेज भेजा है गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, इन्होंने कहा है थैंक यू सो मच कोमल आपके भी मैसेज के लिए। तो आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस तो हो गए, पर ये याद दिला दे कि अगर आज यानी कि द 20 6th of June अपना special day आप celebrate कर रहे हैं, चाहे शादी की सालगिरह है या आपका happy birthday or someone you know जो अपना birthday मना रहे हैं, हमारे पास आप जरूर अपना मैसेज जो है ये सेंड कर सकते हैं. एंड ऑल्सो 5599 पर जब आप टेक्स्ट कर रहे हैं तो याद रहे बिफोर 7 AM अगर मैसेज भेज देंगे बड़ी मेहरबानी आपकी होगी, बिकॉज द टाइम व्हेन वी विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे तो हम आपको जरूर उस दौरान उस समय में विश कर पाएंगे सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन इट. अभी चलो इस घंटे आपके लिए एक सवाल हम लेकर आए हैं. आज का हमारा सवाल आपको बता दें इज अबाउट अ मूवी जो अभी से 20 साल पहले रिलीज हुई थी.
2: अच्छा.
1: और अभी से 20 साल पहले जब ये फिल्म आई इट वॉज बेसिकली अ फ्रेंचाइज ऑफ अ वेरी पॉपुलर फिल्म विच रिलीज अ फ्यू ईयर्स अर्लियर. और इस मूवी के कुछ किरदार नहीं बट एक्टर्स का नाम जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको अनुमान लगाना है कि ये कौन सी मूवी हो सकती है. और अगर आपने मेरे मैं दो एक्टर्स बताऊंगी आपको और अगर आपने सही सही पहचान लिया कि ये कौन सी फिल्म है तो सही, अगर नहीं पहचान पाए तो एक एक्स्ट्रा एक्टर का नाम भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप अनुमान लगा सके कि ये कौन है. सो रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर मूवी रिलीज्ड 20 years ago और फ्रेंचाइज थी ये पार्ट मतलब पार्ट्स में जो मूवी आती ना जैसे गोलमाल गोलमाल 1 गोलमाल 2 ऐसे तो ये इट वाज पार्ट ऑफ अ फ्रेंचाइज. और इसमें जो एक्टर्स हैं जिनका नाम चलिए आपको बताते हैं इज ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन. लेट्स सी इफ यू कैन फिगर आउट कौन सी फिल्म हो सकती है ये. अगर आप पहचान गए इस फिल्म के यू नो नाम से मतलब एक्टर्स के नाम से तो गुड, नहीं पहचान पाए मैं 2-3 मिनट बाद आपको एक और एक एक्टर का नाम बताऊंगी.
2: तो BF आंसर और नाम 5599 पर आप हमें भेजें.

0: जुबिन नौटियाल की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत ये ट्रैक आपके लिए हम लेकर आ रहे थे। फिल्म आई थी 2022 में अटैक, उसी फिल्म से इस गाने को हमने आपके लिए शामिल किया। इधर हमने कहा था कि आपको अनुमान लगाना है आज किस मूवी के बारे में हम बातें कर रहे हैं। इट्स अ फ्रेंचाइज और अभी से करीबन 20 साल पहले ये फिल्म आई थी और दो एक्टर्स जिनका नाम हमने रिवील किया, ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय। अजय, आपने अपना जवाब लिखा है क्रिस, और साथ में रोनाल्ड आपने कहा है गुजारिश। तो आपको मैं बता दूं कि आप दोनों के आंसर्स हो गए हैं गलत। और साथ में 9251 आपने भी अपना आंसर जो ये भेजा है, बट अनफॉर्चुनेटली इवन दैट इज रॉन्ग। शिखा ने अपना जवाब तो भेजा है लेकिन साथ में क्वेश्चन मार्क लिखकर, तो आई डोंट रियली नो कि शिखा जवाब दे रही है या सवाल पूछ रही है।
1: वो सवाल में जवाब में सवाल कर रही हैं।
0: ओके, तो अभी चलिए हम तीसरे एक्टर का नाम जो ये रिवील करती हूँ, एंड आपको हम देंगे ओनली 2 minutes टाइम टू सेंड इन योर आंसर्स। तो द थर्ड एक्टर इन द लिस्ट वुड बी उदय चोपड़ा। अगर आपने सही सही पहचान लिया, 5599 पर अपने नाम के साथ अपना जवाब हमारे पास आप भेजिए। राउंड थ्रोबैक, विल सी आप में से कितने लोगों ने हमें सही जवाब दिए हैं।
2: मॉर्निंग्स मेड बेटर,
3: दो फ्रेंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय।
2: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा।
4: ड्राइविंग यू होम, द ड्राइव शो विद सैंडी एंड रुस्बी।
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिल्ली बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप जी तो
6: आए आए बताओगे यार।
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku. Hum, accurate traffic.
8: What's my house value.co.nz.
9: Cloudy today, some light rain, a high of just 14. Southern Motorway, 25 minutes Manukau to town, 40 from Drury. A breakdown just after the Drury on-ramp sorted. We're slow in patches around Manukau, Rewa, Papatoetoe and Mount Wellington. Fine on the southwestern, but a bit of traffic heading to the airport terminal. Northwestern 22 and from Massey, slow at Te Aratu and St Luke's to the city. Northern, slow Constellation to Waito Valley and at Esmond.
8: Looking to sell your home? Visit whatsmyhousevalue.co.nz.
10: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
11: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
12: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
13: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है। हाँ।
14: अच्छा
13: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
14: मिसेस सिंह,
15: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in.
16: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
2: The Breakfast Show with Vijay and Poo.

0: सात मिनटों के बाद न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में। कुछ और लोगों ने अपने जवाब जो है ये भेजे हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। और उसके बाद हमारे पास देखा जाए तो और भी जो आंसर्स आए हैं, सपना ने माफ कीजिएगा, अजय ने दोबारा से अपना जवाब भेजा है, विधि है, साथ में सनी आपका भी आंसर आया है, फिजा है, दिवी है, और कुछ लोगों ने जवाब भेजे हैं, नाम नहीं लिखा है।
0: हाँ, और साथ ही में माय नेम सनी, आई सेंड टू टाइम्स एसएमएस बट नॉट मेंशन माय नेम, अरे सनी सॉरी भाई, गुड मॉर्निंग टू यू बोथ। हिचके आपने भी अपना जवाब भेजा है, मितेश है, रिया, थैंक यू सो मच आप सभी के आंसर्स के लिए।
1: और इसके अलावा देविका है और मानिक आपका भी आंसर हमें मिला है, शेखर थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर एज वेल। तो आज का हमारा जो सबसे पहला सवाल था प्रोग्राम में, उसका सही जवाब इज धूम 2, जिसका गाना अभी आपको हम सुना रहे हैं। एंजॉय द थ्रोबैक।

0: go.nz.
1: गुड मॉर्निंग, आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और ऐसे में आपको हम याद दिला दें कि आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो मॉर्निंग मैडनेस की शुरुआत जो कि आपके साथ हम करने जा रहे हैं इसी घंटे, हैप्पी बर्थडे आपको हम विश करेंगे. सो इफ यू हैव नॉट सेंट योर मैसेजेस इन एज येट, आपके पास अभी भी थोड़ा टाइम है, अपने अपने मैसेज जरूर भेज दीजिएगा ताकि समय पर आपको हम विश जरूर कर सके.
2: और कई अन्य स्टोरीज वगैरह जो हैं ये भी आपके लिए इस प्रोग्राम में हम लेकर आते रहेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इनाम जीतने के कई मौके ये भी आपके लिए होंगे. लेकिन इतना आपको याद दिला दें कि अगले साल का ईस्टर आपके लिए यादगार हो सकता है, जहां पर आपके पास शायद खुद का एक रोड ट्रिप प्लेलिस्ट हो, कुछ नए दोस्त हों, खूबसूरत नज़ारे हों, बढ़िया खाना हो, ये सब कुछ हो सकता है. बट यू नीड टू स्टे ट्यून्ड.
1: और क्या होगा जानने के लिए जो कि आप हमारे साथ ही बने रहिएगा, तो आपको ये भी याद दिला दे कि थोड़ी देर बाद आपको एक बहुत बेहतरीन मौका भी हम देने वाले हैं. A lot of you might have heard about it, but अभी तक आपने इसमें पार्ट नहीं लिया, लेकिन हो सकता है कि आज आप पार्ट ले ले. The interesting thing is कि हमारे साथ मंडे से लेकर थर्सडे तक हर दिन किसी न किसी ने ये खेल खेला. अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी अपने नाम को ड्रो में शामिल नहीं किया था अंटिल यस्टरडे. यस्टरडे हमने अमित का नाम जो ये ड्रो में शामिल किया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, नो वन गॉट अ चांस टू पुट देयर नेम इन द ड्रो. सो आज आपके पास मौका है. हम द ब्रेकफास्ट शो, दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस इज द लास्ट वन जो हम ब्रेकफास्ट शो में करने वाले हैं, जहां पर यू जस्ट हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस अबाउट राहत फतेह अली खान. और हमारे साथ ड्रो में शामिल होकर आप एक डबल पास जीत सकते हैं उनको जाकर देखने के लिए, क्योंकि वो परफॉर्म करने वाले हैं ऑन द 25th ऑफ जुलाई.

0: Ashi Vibes.
1: सबसे पहले मेष यानी एरिस, आज कोई बड़ा काम आपका होगा जिससे यू विल बी रियली हैप्पी अबाउट इट। बिजनेस ट्रेवल अच्छा जाएगा, झगड़ा झंझट से बचने की कोशिश करें, कोई वैल्यूबल चीज या इम्पोर्टेंट चीज आज आपकी खो सकती है।
2: और उसके बाद अगर देखा जाए तो आज वृष ने टोरस आपके लिए बताया गया है कि बिजी दिन रहेगा। इनफेक्ट आपकी आंखों में कुछ तकलीफ है, कुछ पीड़ा है जो आपको आज काफी परेशान जो है करने वाली है। और साथ ही साथ आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि एक्सपेंसेस आपके बढ़ सकते हैं, उस पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत जरूरी है।
1: और उसके बाद मिथुन यानी जेमिनी, आज रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, खुशी होगी, बॉसेस काम से खुश होंगे, लंबी ट्रेवल पर आप निकल सकते हैं, मे बी फॉर द वीकेंड, और आज आपको काफी प्रेज भी किया जाएगा।
2: करके ने कैंसर, आपके लिए बताया गया है कि काम पूरे होंगे आपके, जिसकी वजह से आप काफी खुश रहेंगे, किस्मत भी आज आपका साथ दे रही है। हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट टू ऑल द कैंसरियंस, इतने दिनों से हम आपको जो भी दिनों राशि वाइज में बता रहे हैं, मेजोरिटी टाइम आपके हेल्थ पर बड़ा फोकस जा रहा है, सो प्लीज लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड पे अटेंशन अपनी तबीयत पर भी।
1: सिंह यानी लियो, सरकारी सपोर्ट से आपके काम पूरे होंगे, उससे आपको फायदा होगा, हो सके कोई रिस्क ना ले, खासतौर पर बिजनेस को लेकर। ऑफिस में भी दिन अच्छा रहेगा और आज अच्छी संगति का फायदा आपको हो सकता है।
2: कन्या यानी वर्गो, आपके लिए कहा गया है बिजनेस आपका ठीक ठाक चलेगा एंड रिस्क से दूर रहना है आज। टुडे इज नॉट द डे टू टेक एनी रिस्क, सो बी केयरफुल। और साथ में आपके लिए ये भी कहा गया है, गाड़ी चलाते समय, किसी भी तरह का मशीन का इस्तेमाल करते समय, कहीं पर आग वगैरह का इस्तेमाल करते समय यू हैव टू बी केयरफुल।
1: फिर तुला यानी लिब्रा, आज बिजनेस से फायदा होगा, ऑफिस में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा आपका, आज कुछ पैसे स्पेंड आप कर सकते हैं लग्जरी आइटम्स पर। और आज साथ ही कहा गया है कि आपके सारे काम बनते जाएंगे।
2: वृश्चिक ने स्कॉर्पियो, आपके लिए बताया गया है मौका जो है ये खुद को साबित करने का है, और आज किस्मत भी आपका साथ दे रही है और आप खुद अपना साथ दे रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ यू गोना मेक थिंग्स वर्क, जहां पर लोग आपकी ना केवल तारीफ करेंगे लेकिन आपकी इज्जत भी करेंगे। प्रॉपर्टी के कुछ बड़े बड़े सौदे करने का इरादा है आपका, तो हो सकता है ये आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो। इफ यू गॉट एनी सच प्रॉपर्टी, एनी सच प्लान्स, गेट दैट डन फॉर योरसेल्फ।
1: धनु यानी सेजिटेरियस, एंटरटेनिंग होगा आज आपका ट्रेवल, फैमिली में कोई शुभ कार्य ऑर्गेनाइज हो सकता है, काम कुछ ज्यादा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ ज्यादा होंगी, मेहनत काफी करेंगे उसका पूरा फल आपको नहीं मिलेगा, और काफी मेहनत करेंगे इसका असर आपके हेल्थ पर भी कुछ हद तक पड़ सकता है।
2: मकर यानी कैप्रिकॉन, आपके लिए बताया गया है बिजनेस अच्छा चलेगा, लेन देन में थोड़ा केयरफुल हो जाए और किसी भी अननोन व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास ना करें।
1: कुंभ यानी एक्वेरियस, काम बनते जाएंगे, खुशी होगी इसको लेकर, कुछ सोशल वर्क करने के ये मौके भी आपको मिलेंगे, बिगड़े काम बनेंगे, घर बाहर आपके बारे में काफी पूछ परख होगी, और आज समय अच्छा है तो इसका फायदा उठा लें।
2: एंड फाइनली मीन यानी पाइसेस, आपके लिए कहा गया है कि आज कुछ नए दोस्त बनेंगे और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपका नुकसान चाहते हैं, उनसे थोड़ा केयरफुल हो जाए आप। आज काफी खुश रहेंगे, काम में भी रफ्तार जो है ये देखेंगे, जिसकी वजह से समय पर आपके डेडलाइंस भी मीट होंगे। सो ये थी आज के आपकी राशि वाइब्स, उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे। एंड गेट रेडी फॉर आवर सेलिब्रिटी अलार्म, थोड़ी देर बाद ये आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं।
0: Breakfast show with Vijay and Pooja.
3: Chup ho ja, papi ho. Chup ho ja.
4: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना,
4: और गानों में

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: 18 मिनट हो रहे हैं, अब 8 बजकर वक्त हो चुका है। आज का सेलिब्रिटी अलार्म हम आपके लिए लेकर आए और आज का सेलिब्रिटी अलार्म भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।
1: बिल्कुल, तो सबसे पहले चलिए आपको आवाज सुनाते हैं।
0: Have a listen very, very, very carefully.
2: 4 साल तो वो अकाली दल में वित्त मंत्री था, 5 साल वो कांग्रेस में वित्त मंत्री था, मनप्रीत बादल। वो 9 साल यही कहता रहा, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा अगर खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, है ना।
0: जब तो ये है आज के हमारे सेलिब्रिटी।
1: ये जो सेलिब्रिटी है काफी जाने माने हैं और बातों से तो खैर पता चल ही रहा है कि ये है एक पॉलिटिशियन। नाउ 0800 004866 पर कॉल कीजिए, बताइए हमें कौन है ये आज के हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में, किन की आवाज आपने सुनी।
0: तो पहले कॉल करने का मौका हम आपको दे रहे हैं, जल्दी से आपको कॉल करना होगा क्योंकि बहुत कम वक्त हमारे पास है और अगर आप टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलनी चाहिए कि आप बता सकें। और सबसे पहले स्वागत है आपका। हेलो,
3: हेलो
0: जी।
3: हाय विनय, गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
3: हम ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो?
1: बढ़िया जी। आपका नाम?
3: पल्लवी नाम है मेरा।
1: पल्लवी, तो पल्लवी कौन है ये आज के हमारे सेलिब्रिटी?
3: ये भगवान मान
1: है। अच्छा जी, अरे बड़ा हंस रही हैं
0: आप। ओके, चलो,
1: थैंक यू आपके कॉल के लिए।
0: थैंक यू पल्लवी। गुड मॉर्निंग एफएस।
4: गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
0: गुड गुड गुड, आप बताइए आपका जवाब क्या होगा।
4: एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज था दो नामों में, जो जो नाम इन्होंने बताया और अरविंद केजरीवाल, दो के बीच में मैं कंफ्यूज था।
1: एक एक आंसर चूज करो एफएस।
4: मुझे लग रहा है जो इन्होंने बताया पहले वही है।
1: अच्छा,
0: ओके,
1: चलो, थैंक यू
0: सो मच आपके भी कॉल के लिए। आवाज जो है एक बार फिर हम आपको सुना रहे हैं, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना।
2: 4 साल तो वो अकाली दल में वित्त मंत्री था, 5 साल वो कांग्रेस में वित्त मंत्री था, मनप्रीत बादल। वो 9 साल यही कहता रहा, खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। मैंने कहा अगर खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो, उसको पीपा कहो, है ना।
0: तो आप अब कोशिश कर सकते हैं BF आंसर और नाम
1: 5599 पर आप हमारे पास टेक्स्ट कीजिए, किन की आवाज आपने सुनी आज सेलिब्रिटी अलार्म में। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन फिगर इट आउट। पल्लवी ने अपना जवाब दिया, एफाज ने अपना जवाब दिया, पर क्या वो सही है या गलत ये जानेंगे थोड़ी देर बाद।
5: मैं लाऊं अपना A game.
6: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Co.nz. News headlines.
1: आज सुबह के मुख्य समाचारों में पुलिस कमिश्नर रिचर्ड चैंबर्स के खिलाफ दो अलग अलग महिलाओं से अलेज कॉन्डक्ट के मामले में आईपीसीआई और नेशनल इंटेग्रिटी यूनिट ने जांच शुरू कर दी है, जिसे चैंबर्स ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है। वन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मिनिस्टर मार्क मिचेल ने बताया कि उन्हें ये कंप्लेंट्स पिछले साल नवंबर और इस साल फरवरी में मिली थी, जिसे उन्होंने तुरंत अथॉरिटीज को भेज दिया, पर उनका चैंबर्स पर अभी भी एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस है। चैंबर्स को नवंबर 2024 में एक बड़े पुलिस स्कैंडल के बाद कमिश्नर बनाया गया था और अब उनका कहना है कि वो इस इंक्वायरी में पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। न्यूजीलैंड पुलिस ने अपने पुराने और फ्रेगमेंटेड कंप्यूटर एडेड डिस्पैच आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए अभी कोई कमिटमेंट नहीं दिखाया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए उनके पास जरूरी फंडिंग नहीं है। अप्रैल में आई एक परफॉर्मेंस रिव्यू ने चेतावनी दी थी कि बिना नए सिस्टम के पुलिस बढ़ते क्राइम रेट्स का सामना नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी डिस्पैचेस को अलग अलग स्क्रीन्स पर मैन्युअली काम करना पड़ता है, जिससे गलतियों का खतरा बढ़ता है। ब्लैक कैप्स टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना तीसरा और डिसाइडर टेस्ट मैच जो है उसको बैटिंग करने के साथ शुरू किया है। पहले इनिंग्स के बाद 84.1 ओवर्स में ब्लैक कैप्स ने चार खिलाड़ी खोकर 364 रन बनाए हैं। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप के अंतर्गत आज मैचेस एक बार फिर जारी रहेंगे। अभी से तकरीबन आधे घंटे में जो पूल ई के मैचेस हैं, कुरासाओ और आइवरी कोस्ट, साथ में इक्वाडोर और जर्मनी के बीच खेले जाएंगे। दिन में 11 बजे ट्यूनिजिया नेदरलैंड से खेलेगा और उसी समय पर जापान की भिड़ंत स्वीडन से होगी। आज दिन में 2 बजे टर्की यूएसए का सामना करेगा और उसी समय पर पेरेग्वे और ऑस्ट्रेलिया का खेल भी खेला जाएगा। अभी तक राउंड ऑफ 32 के मैचेस की ओर अगर देखें तो राउंड ऑफ 32 का पहला मैच अगले सोमवार को सुबह 7 बजे साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच खेला जाएगा। मंगलवार को सुबह 5 बजे ब्राजील एक मैच में नजर आएगा, लेकिन उनका मुकाबला किससे होगा इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इसके अलावा जर्मनी, मोरक्को, मैक्सिको, साथ में यूएसए, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, ये सारी टीमें राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। फीफा वर्ल्ड कप पर और भी अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आते रहेंगे। ये रहे सुबह के मुख्य समाचार।
0: फुटबॉल अपडेट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 इयर्स। गूगल PFSL टुडे, अम्मास फूड, 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव, एंड इंडेलिबल होम्स, योर बिल्डिंग एक्सपर्ट्स नोन फॉर सब डिविजन्स। विजिट indelibleholmes.co.nz. Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Hey, dekho maa gaye.
0: Accurate traffic.
3: 15% off airport parking.
4: A bit cloudy, wet and windy today and a high of just 14 degrees. Motorways fast into the city, northern 23 minutes in from Constellation Drive. Bit heavy at Constellation, slow through to Waito Valley and slow again at Esmond. Northwestern 24 minutes in from Massey, slow from St Luke's, a little heavy to Grey Lynn. Southern 28 minutes in from Manukau, slow at Manurewa and East Tamaki to Remuera, southwestern fine.
3: 15% off Auckland airport parking. Book now using promo code EARLYBIRD. Conditions apply.
5: Professional by Ninjas has साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
6: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक।
5: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
6: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T&Cs, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
7: Roadside drug testing is here. New Zealand Police can now test drivers with a saliva test anytime, anywhere. This screens for the recent use of drugs, including cannabis, methamphetamine, MDMA, and cocaine. Learn more at police.govt.nz/drugdriving.
8: Imagine waking up a millionaire. Powerball's mid-year millionaire promotion is on now. For your chance to win one of three $1 million prizes, get a triple dip at your local Lotto NZ store or online. Prizes drawn Saturday 4th of July. T's and C's apply.
9: Shop and scan to win a share of $800,000 at Woolworths. Just buy any three products from Gillette, Nestle, Oral-B and more for your chance to win instant money off your shop. In-store only at Woolworths. T's and C's apply.
10: Want $500 phone dollars to spend on your next interest-free phone? Simon's all over it. Join 1NZ on an eligible pay monthly plan this June only to redeem your phone dollars. T's and C's apply. One New Zealand. Let's get connected.
11: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively at Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
12: Playing Bollywood's biggest hits.
13: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
13: Birthday greetings.
15: Iska birthday bhai?
16: Mera bhi birthday hai, chalo line mein aa jao.
15: Happy birthday to you.
1: A very, very happy birthday. Many, many happy returns of the day. Aaj sabse pehle, a very happy and blessed birthday, Nirvair. On this first birthday, I wish you a happy, healthy life ahead. This 1 year has been an amazing journey, full of happiness and new experiences. I wish you all the luck and may God bless you with a very, very blessed life. I love you so much. Aaj aapki maasi Rajni ki ur se ye message aaya hai. Nirvair, aaj ka ye khas din aapko bahut bahut bar shubh aur mubarak ho.
17: Wishing a very happy 78th birthday to my nani ma Devki in Fiji. May you always be strong and keep smiling as always. Lots of love, hugs and kisses to you from your daughter Roshni Kumari. Grandkids hai Sagar, Sonam, Radhna. Our great grandkids hai Glory, Jasleen, Evelyn, Isaac. God bless you always, Nani. We miss you a lot. Have a wonderful day. Happy, happy birthday, Nani. Ye kisi ne message kiya hai.
1: स्नेहा की ओर से मैसेज आज आया है पापा टोए टोए से और आज खासतौर पर अपने पति श्री को विश कर रही हैं क्योंकि ये दोनों शादी की 22वीं यानी 22nd एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं. वी बिकेम फ्रेंड्स फर्स्ट एंड देन स्टार्टेड नोइंग ईच अदर एंड मेनी मोर इयर्स ऑफ टुगेदरनेस. आवर रिलेशनशिप बिटवीन अस इज वेरी स्पेशल. तो आप दोनों को हैप्पी हैप्पी 22nd एनिवर्सरी हम कहना चाहेंगे. ये दिन आज का खास आपको अनेकों बार शुभ और मुबारक हो.
17: और उसके अलावा हैप्पी बर्थडे आज हम विश करना चाहते हैं. हैप्पी 9th बर्थडे टू आवर स्वीट एडवेंचरस एंड अमेजिंगली फ्लेक्सिबल गर्ल अनाया. It is so much fun watching you leap high, practice your tumbling and tackle every day like it is a brand new adventure. Even more than your awesome skills, we are so incredibly proud of your huge kind heart and how much love you share with everyone around you. 9 cheers for 9 wonderful years. We love you to bits. Best wishes from Mum, Dad and your big sister Ahana ki ur se. A very, very happy birthday. Many, many happy returns of the day to you, Anaya. Jaramdeen, bahut, bahut baar aapko mubarak ho.
1: आज 26th of June को आप में से जितने भी लोग आज सालगिरह या शादी की सालगिरह मना रहे हैं, ये खास दिन आपको शुभ और मुबारक हो.

0: Set.
1: अभी 22 मिनट रह गए हैं 8 बजने में. आज का जो हमारा सेलिब्रिटी अलार्म था, आप में से कई लोगों ने अपने आंसर्स जो है ये हमारे पास भेजे.
2: बिल्कुल, थैंक यू सो मच आप सबके आंसर्स के लिए. आज सबसे पहले हमारे पास अपना आंसर जो है सोम, इन्होंने टेक्स्ट किया. गौरव ने क्या लिखा है मुझे नहीं पता, बट गौरव का भी एक मैसेज जो ये आया था अराउंड द सेम टाइम. लवप्रीत सिंह इनवकागिल से थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग. आपके भी जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: और उसके अलावा 0502 आपने भी अपना जवाब भेजा है. राउडी कोचर हैं, इसके अलावा रौनक हैं और गैरी, आप लोगों ने अपने आंसर्स भेजे. साथ ही में 4142 आपने लिखकर कुछ भेजा है, बट अनफॉर्चुनेटली हमको वो पढ़ना नहीं आता.
2: हाँ बिल्कुल भी, तो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया. और 4142 इज लवप्रीत ना, उन्होंने जवाब जो ये भेजा है.
1: अच्छा, इनवकागिल से.
2: हाँ
1: तो क्या मैंने सुना है इनवकागिल बहुत खूबसूरत जगह है.
2: मैंने भी बहुत सुना है पर पता नहीं किस्मत कब खुलेगी कि उधर जाने का मौका लगेगा ऐसे घूमने के लिए. इट्स सो वियर्ड ना, हम जिस कंट्री में रहते हैं लाइक इतने साल बिता देते हैं वहाँ पे, और वहाँ के कुछ ऐसे जगहों पर हम घूमते भी नहीं है जो वहाँ की खूबसूरती हो या फिर हिडन जेम्स जिसे भी कहा जाता है. बीन इन न्यूजीलैंड फॉर सो मेनी ईयर्स और नॉर्थ आइलैंड जो है ऑलमोस्ट पूरा घूम लिया है मैंने, लेकिन साउथ आइलैंड में कदम तक नहीं रखा. अभी तक मेरा प्लेन उधर लैंड नहीं हुआ.
1: होपफुली इन द नियर फ्यूचर. तो आज का जो हमारा सेलिब्रिटी अलार्म एंड जो सेलिब्रिटी थे भगवंत मान.
2: यस, भगवंत मान जो कि मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर है ना, करंट चीफ मिनिस्टर. सो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने हमारे पास अपना आंसर भेजा. द वेरी फर्स्ट वन टू गेट इट राइट वाज पल्लवी जिन्होंने कॉल करते हुए अपना आंसर भेजा था. सो थैंक यू सो मच पल्लवी आपके कॉल के लिए भी. आज फिलहाल सेलिब्रिटी लाम में आज की आवाज तो पहचान गए, अब देखते हैं मंडे को आप क्या गुल खिलाते हैं. याद रहे थोड़ी देर बाद मौका देंगे आपको राहत फतेह अली खान, इनके शो के लिए डबल पास जीतना है, कैसे जानने के लिए सुनते रहिएगा.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Accurate traffic.
2: The LifeWise Trust Big Sleep Out. Please donate now.
3: A bit cloudy, wet and windy today. A high of just 14 degrees. Motorways not a drama into the city at all. Southern 28 minutes, Manukau to town 42 from Drury. Slow at Manurewa and Papatoetoe. Then East Tāmaki through to Remuera. Northwestern 23 minutes in from Massey-Quirk. Just a bit heavy at St. Luke's, then slow from there. Southwestern fine. Northern 21 from Constellation. Slow there to Glenfield.
2: Support Auckland's homeless by donating at bigsleepout.org.nz.
4: Most Aucklanders are within 3 kilometres of an NZ Post store. With 110 stores across Auckland, it's easy to access the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
5: When you're in the loop with ANZ and you spend on a new lippy,
6: fabulous!
5: Money loops back.
6: Fabulous!
5: Get in the loop for cashback shaped around you. Join ANZ with a Visa debit. Eligibility criteria, T's and C's and exclusions apply.
7: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
8: Film bilkul fake aur danger ekdam real. India's first 2000 crore fake film Welcome to the Jungle, starring Akshay Kumar, Jackie Shroff, Arshad Wasi, Paresh Rawal, Raveena Tandon, Disha Patani, Jacqueline Fernandez and many more.
9: Ek zabardast kahani hai.
10: Aur title kya hai film ka?
9: Welcome to the Jungle.
8: Welcome to the Jungle, now showing in cinemas. Distribution partner Forum Films. Rating TBC.
11: Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
11: Throwback.
13: अभी तो 13 मिनट रह गए हैं 8 बजने में. 8 पर न्यूज एंड स्पोर्ट्स अपडेट आपके लिए होगा इस प्रोग्राम में. लेकिन याद रखें, आज 26th ऑफ जून हो चुका है और अब एक महीने से कम बचा है जब उस्ताद राहत फतेह अली खान ऑकलैंड में रहेंगे, ट्रस्ट एरिना में रहेंगे. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ये पेशकश. इनको लाइव ऑन स्टेज देखने का मौका, इनके साथ इनके बेटे शाहजमान खान भी रहेंगे. टिकट्स बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं dryTickets.com पर. याद रहे dryTickets.com विजिट करते हुए जल्द से जल्द आप अपने टिकट्स ले ताकि आपको समय के करीब पछताना ना पड़े.
14: बिल्कुल. और टिकट्स वंस आप ग्रैब कर लेंगे तो आप तो इस शो का हिस्सा बनेंगे ही, क्योंकि आपने अपना टिकट ले लिया है, अपने अब जगह जो है ये कंफर्म कर लिया है फॉर द शो. एक ऐसा शो जिसे देखना तो बनता ही है. और आपने अगर पिछली बार मिस किया था, यू माइट हैव हर्ड द किस्सास कि यार कितना कमाल का शो था, इतने अमेजिंग आर्टिस्ट हैं. हमने बहुत किस्से सुने थे वहाँ, जहाँ पीपल जो है दे फेल इन लव विद द वे ही परफॉर्म्ड. कितने घंटों तक एक ही जगह पर बैठे एंड ही कंटिन्यूअसली सेंग, ही एंटरटेन्ड द पीपल एंड दैट्स व्हाट पीपल लव अबाउट हिम. तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, मेक श्योर टू ग्रैब योर टिकट्स. बट ऑन द अदर हैंड, ट्राई योर लक टू विन अ डबल पास एज वेल.
13: आज फाइनल डे है ऑन द ब्रेकफास्ट शो जब कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका हम आपको दे रहे हैं. तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी, रैपिड फायर आपके साथ हम खेलेंगे. 5 क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब विद इन 30 सेकंड्स आपको देना होगा. सही आप जवाब दे देते हैं तो आपका नाम ड्रॉ में शामिल होगा. और नेक्स्ट वीक जब ड्रॉ होगा, आपका नाम अगर निकला तो आपको एक डबल पास मिलेगा. लेकिन उससे पहले अभी आपको कॉल करना है. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज कॉल अस. और कॉल करने के लिए नंबर तो आपको पता ही है, 0800-004866. इस नंबर पर कॉल करते हुए बस 5 सवालों के आप जवाब दें, अपना नाम ड्रॉ में शामिल कराएं एंड बिकम पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन. इट्स दैट सिंपल. तो जो सबसे पहले कॉल करेगा, द लकी फर्स्ट कॉलर विल गेट द अपॉर्चुनिटी आज राहत फतेह अली खान का रैपिड फायर खेलने के लिए. लेट्स सी आप में से कौन है जो आज पहले कॉलर होते हैं टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन. कल अमित का नाम ड्रॉ में शामिल हुआ ना?
14: हाँ जी बिल्कुल, और आज क्या आपका नाम ड्रो में शामिल हो गया नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। आज मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 5 क्वेश्चंस है हमारे पास, उनमें से 3 क्वेश्चन तो ट्रू और फॉल्स वाले हैं, बस 2 ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आपको डायरेक्ट आंसर देना है।
13: तो लो भाई, और भी इजी हो गया, लेकिन उसकी खातिर आपको कॉल करना होगा, टाइम इज रनिंग आउट एंड लेट्स सी हु इज द फर्स्ट कॉलर टुडे। गुड मॉर्निंग, हेलो।
6: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, हेमंत हियर, हाउ आर यू?
14: बढ़िया जी हेमंत जी, आप कैसे हो?
6: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मौसम के अलावा सब कुछ ठीक है फिलहाल।
14: अरे मौसम में क्या खराबी है, बढ़िया तो है मौसम। चाय पीजिए, पकोड़े वकोड़े खाइए, आप देखिए कैसे आपका मूड बनता है।
6: हाँ, मेरा बॉस मुझे छुट्टी देता तो डेफिनेटली करता।
14: बहुत छुट्टी दे तो वेरी नाइस। ओके, आर यू रेडी हेमंत जी आज के हमारे कॉम्पिटिशन के लिए?
6: जी बिल्कुल।
14: ओके, आपको हम देंगे 30 सेकंड्स का टाइम, फटाफट जवाब देना है ताकि विद इन 30 सेकंड्स आप 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, और अगर सही हुए तो आपका नाम हम जरूर ड्रो में शामिल करेंगे। ठीक है?
6: ठीक।
14: ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स आफ्टर आई आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, द हिट सॉन्ग जग सुना सुना लागे फ्रॉम ओम शांति ओम इज संग बाय राहत फतेह अली खान, ट्रू और फॉल्स?
6: ट्रू।
14: Which popular Rahat Fateh Ali Khan song starts with the line "Taakte rehte tujhko saanch savere"?
6: Tere mast mast dhone.
14: Rahat Fateh Ali Khan publicly performed at the age of 9 for the very first time. True or false?
6: True.
14: Ustad Nusrat Fateh Ali Khan is Rahat Fateh Ali Khan's grandfather. True or false?
6: False.
14: With which song did Rahat Fateh Ali Khan make his Bollywood debut?
6: मैं जा रहा हूँ
14: इज लाइक फ्रॉम नमस्ते लंदन ना?
6: यस, नमस्ते।
14: हेमंत जी आई मस्ट से आपने बहुत अच्छा किया, लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया था तो आप अटेम्प्ट करने जा रहे थे, एंड देन व्हेन दैट्स व्हेन द टाइम जो है ये फिनिश हुआ। और बिफोर आई टेल यू व्हाट द रिजल्ट ऑफ दिस, आई वुड लाइक टू गिव यू वन मोर चांस। Are you 100% sure कि आपका जो लास्ट आंसर है वो आप वही रखना चाहते हैं? बिकॉज आज आखिरी अटेम्प्ट है हमारा ब्रेकफास्ट शो में राहत फतेह अली खान के इस शो के पासेस जीतने के लिए, तो आई एम जस्ट बीइंग अ बिट मोर दिलदार एंड आई एम गिविंग यू वन मोर अपॉर्चुनिटी। यू वांट टू कीप दैट आंसर, यू वांट टू चेंज दैट आंसर?
6: I'm not sure. I would like to think again.
13: अब देखो
14: जल्दी जल्दी जल्दी
13: गूगल पर आप कितनी तेजी से चल सकता है,
14: गूगल मत करना। एग्जैक्टली,
6: I'm driving, I can't google, that's the problem।
14: अच्छा, तो आज फटाफट
6: और इट कुड बी, मेरे माइंड में दो चीजें हैं। एक आई थिंक देयर वाज जॉन अब्राहम्स मूवी, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट सॉन्ग, इट्स कमिंग अप।
14: चलो लाइक आपने सभी सवालों के सही जवाब दिए अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन, हमने आपको टाइम भी दिया और अनफॉर्चुनेटली वो भी आपका गलत हो गया। यू गॉट A few of those things right. Movie John Abraham की ही थी और 2003 में आई थी और गाना था मन की लगन।
13: अरे अभी इतना अनफेयर तो नहीं हो सकते ना, उनको वो नहीं याद आ रहा था।
6: ये तो सॉन्ग तो पता था।
14: अच्छा,
6: पर मुझे वर्डिंग्स नहीं याद आ रही थी।
14: हाँ, अभी आज के बाद ना आपको ये इस गाने के वर्डिंग्स याद रहेंगे। तो चलो अच्छा ऐसा करते हैं कि टुडे इज द लास्ट वन, दे देते हैं आपको, रख देते हैं आपका नाम ड्रो में। अब अगर आप पास जीते तो आपकी किस्मत, पर आपने कॉल किया, आपने पार्टिसिपेट किया, उसके लिए थैंक यू। वी आर पुटिंग योर नेम इन द ड्रो।
13: कुछ फाइनल अपॉर्चुनिटीज आज और आपको मिल सकती हैं ओनली ऑन हम।

0: तो ये जो गाना है आपके लिए आज हम ट्रेन पेट्रोल में प्ले कर रहे थे. Now the reason why we played this song is because जब से India's Got Talent season 2 का पहला एपिसोड आउट हुआ है and this particular song has been trending like crazy. पहले एपिसोड में शर्वरी बाग और साथ में आलिया भट्ट as guests जो है ये आए और एक कंटेस्टेंट थे जो कि आई थिंक फाइनल राउंड में नहीं पहुंचे थे टू परफॉर्म, बट बोनस जो क्लिप्स होते हैं उनमें उनका ये परफॉर्मेंस था. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि उन्होंने इस गाने पर डांस किया. भैया ये गाना क्या है मुझे नहीं पता. इट्स अ वेरी weird song I would say, but it's trending because it's one of those type of songs जो आपके ज़ुबान पर चढ़ जाता है, you know, if you listen to it, it's like just like वो baby shark वाला जो गाना जब आप सुनते हो जैसे सुना था, या there was a time you remember Gangnam Style लोगों के दिमाग में कैसा चढ़ा था जब वो गाना आया था. and there was this one more song pineapple pen, like कुछ मतलब नहीं है गाने का, सिर्फ दो ही शब्द है apple pen, नहीं दो ही नहीं तीन है apple pen pineapple whatever, and then वो गाना इतना कैची हो गया कि जस्ट इट वॉज लाइक अ ब्रेन रॉट. उस जमाने में जब ब्रेन रॉट शायद नहीं भी जानते थे लोग, इट वॉज लाइक दैट, इट वॉज जस्ट इन योर माइंड ऐसा चिपका वो आपसे. सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विद दिस पर्टिकुलर सॉन्ग चाय की टपरी जो इंडियाज़ गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया गया. एंड आई डोंट रियली नो ये इतना वायरल हो चुका है दैट पीपल आर एक्चुअली मेकिंग रील्स ऑन दिस. तो हमने सोचा कि आज का ट्रेंड पेट्रोल आपको इसके बारे में हम बताते हैं. रश आवर की शुरुआत ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा आपके साथ हम कर रहे हैं. इस बार थोड़ी देर बाद आपके लिए लेकर आएंगे क्या
1: व्हाट्स योर टेक आज का हमारा टॉपिक, और साथ में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बातें हम करेंगे ऑन द शो. अमित पापाटोयटोय से वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आपके भी गुड मॉर्निंग मैसेज के लिए. अभी 6 मिनट हो रहे हैं 8:00.

0: Toy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page, RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
2: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
3: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
3: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
5: What's your take?
6: तो आज का जो व्हाट्स योर टेक टॉपिक है आपके लिए हम लेकर आए हैं, जिसमें वी'd लव टू हियर फ्रॉम यू. वी नो कि समटाइम्स हम आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल या फिर इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स जो है ये लेकर आते हैं, यू नो समथिंग दैट इज़ कंसर्निंग आवर कम्युनिटी, ऐसे भी टॉपिक्स वगैरह जो ये हम करते हैं. पर कभी कभी कुछ हम डिफरेंट को टॉपिक्स भी करते हैं. सम पीपल फाइंड इट, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद द वर्ड्स, वेस्ट ऑफ टाइम दे कॉल इट, कि ऐसे टॉपिक्स क्यों कर रहे हो आप, ब्ला ब्ला ब्ला. बट हम सब बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम कभी कुछ एंटरटेनिंग, कभी कुछ फन, कभी कुछ ऐसे रिलेटेबल टॉपिक्स टू आवर लाइव्स भी आपके लिए लेकर आते हैं. एंड आज भी ऐसा एक टॉपिक है.
7: अच्छा,
6: नाउ आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग इस टॉपिक के साथ रिलेट कर पाओगे, बट इफ यू थिंक यू कैन रिलेट विद इट तो आप जरूर कॉल कीजिएगा 0800 00 हम 0800 00 4866 पर, और आप हमें बताइएगा कि आप का क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई एक शख्स जिससे आप मिले हो पहली बार, या फिर जिनके साथ आप कांटेक्ट में आए हो पहली बार, एंड यू स्टार्ट लाइकिंग दैट पर्सन? लाइक व्हेन आई से लाइकिंग, आई डोंट मीन इट इन अ रोमांटिक वे, आई मीन कि आपको वो शख्स की यू नो हेल्पफुल नेचर, उनका स्वीट तरीके से बात करना ये पसंद आता है. लाइक सच अ नाइस पर्सन, इतने प्यार से बात करते ये, ओ माई गॉड इतने हेल्पफुल है, इतने अच्छे से बातें करते हैं, यू रियली लाइक दैट पर्सन. एंड देन यू नो यू ऑलवेज टॉक अबाउट द नाइस थिंग्स अबाउट दैट पर्सन, कि यार वो तो सच में बहुत अच्छे इंसान है, इतनी मदद करते, इतना अच्छा करते, दिस एंड दैट. एंड इवेंचुअली समथिंग और द अदर हैपेंस एंड दैट सेम पर्सन आपको मतलब इतना बड़ा धोखा देते लाइफ में कि आपकी आँखें खुल जाती है इन सम सिचुएशंस. एंड कुछ कुछ टाइम ऐसे आंखें नहीं भी खुलती है, फिर दो तीन ऐसे और लोग मिलते हैं तब जाकर शायद आपकी आंख खुलती है. सो हैज दिस एवर हैपेंड टू यू?
7: अच्छा, तो ये आप जानना चाहती, कोई ऐसा क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आया है या आपका इंटरेक्शन ऐसे पर्सन से हुआ है जिनका फर्स्ट इंप्रेशन आप पर बहुत अच्छा रहा, बट इवेंचुअली आपको पता चला कि नहीं, ये फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो सही नहीं था.
6: हाँ, इट वॉज समथिंग एज, द पिक्चर इज टोटली डिफरेंट, एकदम टोटल ऑपोजिट. सो इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग सही या गलत, आई एम जस्ट सेइंग कि हैव यू हर्ड दिस एक्सपीरियंस, आपके साथ क्या ऐसा कभी कुछ हुआ है? अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो 0800 00 हम 0800 00 4866 पर आप हमारे पास कॉल कीजिए. लेट अस नो व्हाट्स योर टेक, और डू यू अग्री और डिसअग्री कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होता है, और या फिर यू हैव गॉट अ स्टोरी टू टेल. आई हैव गॉट मेनी स्टोरीज, लाइक ऐसे बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई है.
7: नहीं, आपकी स्टोरीज रहने दो.
6: हाँ, मेरे स्टोरीज में टाइम निकल जाएगा ना, तो हम आपकी स्टोरी सुनते हैं.
7: तो इंग्लिश में एक कहावत है कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन.
6: या
7: तो क्या ये बात सही है बेसिकली, कि क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट दिया है कि have you ever experienced कि आपका जो first impression है was not the last impression because it changed over time.
6: Yes, so what do you think?
7: क्या सोचते हैं आप? What's your take? 0800 00 हम 0800 00 4866 नंबर है हमारा. इंतजार है हमें आपके कॉल का, एंड होपफुली आप कॉल करेंगे और कहीं ना कहीं कोई राय तो आपने डेफिनेटली बनाई होगी इसके बारे में. जब आप अभी इतनी देर से जो बातें हम करते आए हैं उसे सुनने के बाद मन में आपके कुछ तो आया होगा कि हाँ, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, या फिर नहीं नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन. परविंदर, गुड मॉर्निंग.
8: गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
7: हम तो ठीक हैं, आप कैसी हो?
8: मैं भी बढ़िया. मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं ऐसे मतलब चंद नहीं पर ऐसे फील एक वाइब ऐसे फील होता है ना कि यहाँ वधिया बंदा है पर बाद में जब पता चलता है कि मतलब वो एक एक ऐसा पर्सन है जिसको मैं जानती हूँ कि मुझे लगता था कि बहुत ही मतलब बेस्ट बंदा है दुनिया का है ना पर अब जब हो गया काफी टाइम मैं जानती हूँ ना तो मुझे पता है कि वो ऐसे बहुत ही वो वाली फीलिंग रखता है कि अगर आपने कभी उसको कुछ बोल दिया वो याद रखेगा और वो मुड़ के कभी ना उस चीज का बदला ले लेगा कि हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूँ
6: बदला भी लेता है
8: हाँ मतलब वो आपको फील करवाएगा कि तुमने किसी टाइम में ऐसा किया था
7: और ये आज
8: तो
7: उसका रिजल्ट है
8: आपको भी हुई बट मुझे लोगों ने मेरे बारे में ये बताया है कि मैं जब मेरा जो पहला उनको वो आता है ना वो ये आता है कि मैं बहुत खड़ूस हूँ और सड़ी हुई हूँ पता नहीं क्यों क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने बताया है आई थिंक मेरा एक रेस्टिंग बिच फेस है अगर मैं चुप रहती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मैं सड़ी हुई हूँ बहुत ज्यादा पर जब मेरे से बात बात होती है तो उनको पता लगता है कि आज पागल है
7: सड़ी नहीं है फ्रेश है
6: कुछ तो गड़बड़ है दया
7: अच्छा परविंदर ये बताओ
8: मतलब
7: कि अच्छा एक पहलू आपने प्रेजेंट किया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन का जो नेगेटिव विजन है कि भाई सोचा तो अच्छा था लेकिन ऐसा नहीं है उसके ऑपोजिट कभी हुआ आपके साथ कि देखने में खड़ूस था लेकिन बाद में निकला बहुत अच्छा
8: हाँ मेरी एक फ्रेंड है उसको सभी ऐसे मतलब सोचते हैं कि वो खड़ूस है पर मेरी उससे अच्छी बात है
6: ओके
7: थैंक यू परविंदर आपके कॉल के लिए 0800-800-004-866 ये हमारा नंबर है जिस पर आप चाहे तो कॉल कर सकते हैं या फिर
6: 5599 पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं इफ यू कांट कॉल एंड लेट अस नो ऑफ योर व्यूज
7: ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास प्रोग्राम में हिस्सा लेने का 30 सेकंड्स का टाइम लेट्स सी इफ समवन कॉल्स थ्रू विल कैरी ऑन अदरवाइज विल मूव ऑन लेकिन आगे तो जाना ही है प्रोग्राम में और देखना है कि आज इम्प्रेशंस के बारे में और रियलिटी के बारे में बातें जो है ये हो रही हैं 23 मिनट हो रहे हैं 8:00 इस प्रोग्राम में खैर अब आगे बढ़ते हैं ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली एकदम सिंप्लीफाई करके हम आपको

0: जरूर हमारे साथ कर सकते हैं।
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड,
2: गुंडी घड़ लो या सीधा अंदर आऊं,
3: मैं लाऊं अपना ए गेम।
1: ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Chubo jao, papi ho. Chubo jao. Accurate traffic.
2: Checked your KiwiSaver fees lately?
3: Wet this morning, cloudy and windy today, high of just 14. Motorways fairly fast, northern 22 minutes, Constellation Drive to the city. We're slow at Snow Planet, Constellation to Glenfield and Esmond to the bridge. Northwestern 24 in from Massey, slow from Point Chev but heavy there and at St Luke's. Southern 32 in from Monaco, fine to East Tāmaki, slow there to Remuera. Southwestern slow northbound up to the airport link.
2: See what you could save with Simplicity, the low-fee, non-profit KiwiSaver provider.
4: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
5: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
4: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
5: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
6: Introducing the new chutney range from Amma's Food. Traditional coconut, tangy tomato or crunchy peanut chutney. Perfect with Amma's idli or dosa batter. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. Now available at grocery stores near you.
7: Want to go halvesies with Mercury? Just sign up for electricity and add broadband, mobile or both, and we'll give you 50% off your monthly broadband and mobile plan for 12 months. Terms and eligibility apply. Broadband availability may vary. Mercury, bring the buzz.
8: HBO Max is that all-killer, no-filler.
9: So wait, a streaming service that's full of the good stuff and no boring filler?
8: Exactly.
9: Right, we'll see. What are they called?
8: There's HBO original series The White Lotus, House of the Dragon, Euphoria, The Last of Us, The Sopranos, hit movies like Wuthering Heights, Superman, one battle after another, and then there's Friends, The Big Bang Theory.
9: Whoa, okay, I get it. Fair call.
8: HBO Max, all-killer, no-filler. Stream now.
10: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūriki, Altogether Auckland.
11: If you're looking for premium comfort, head into Beds R Us. Sleepyhead's luxurious Swiss-Tech range of beds has exclusive smart suspension technology. And right now, it's half price. Discover better sleep with Swiss-Tech. Available exclusively in Beds R Us Manukau and Pukekohe, where dreams begin.
0: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
13: अच्छा, किसी ने हमारे पास आज के हमारे टॉपिक ऑफ द विनवर्थ टेक के टॉपिक के लिए मैसेज किया है. व्हेन आई मेट माय हस्बैंड एट फर्स्ट साइट, आई लाइक बिफोर एंड आफ्टर. तो मुझे ऐसा लग रहा है कहना चाहती है कि जब ये इनकी हस्बैंड से इनकी पहली मुलाकात हुई थी तो उनको पहले ही पसंद आया, फिर बाद में पसंद आया. दैट्स व्हाट आई फील.
14: उनका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन भी है,
13: सेम रहा. हाँ,
14: okay.
13: और आप भी अपने जो यू नो टेक्स हैं ऑफ द टॉपिक टुडे की हमारे पास भेज सकते हैं. आई गेस इट्स नॉट वेरी रिलेटेबल टू मोस्ट ऑफ यू टुडे, बट इफ यू गॉट एनी सच स्टोरीज टू शेयर, मोस्ट वेलकम. 5599 पर आप हमारे पास मैसेज जो है अपना भेज सकते हैं. नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये हुई थी कि कल आप बातें कर रहे थे अबाउट दिस प्लेलिस्ट, राइट, रोड ट्रिप प्लेलिस्ट के बारे में. बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स गोना हैपन फॉर यू, इट्स क्वाइट पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ईस्टर में क्या कुछ होने वाला है उसके थ्रू आपको पता चलेगा. बट देट इट गेव मी एन आइडिया. आज वेदर देखो कैसा है, बारिश हो रही है बाहर ना काफी ज्यादा, और ऐसे मौसम में हम सर्टन टाइप्स ऑफ गाने जब सुनते हैं तो बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है. वी एंजॉय लिसनिंग टू सच सॉन्ग्स. तो आज ऑन द ब्रेकफास्ट शो वी आर क्रिएटिंग आवर बारिश प्लेलिस्ट. मौसम को ध्यान में रखते हुए आज हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक पर हमने एक पोस्ट किया, फिगर एंड विजिट दैट, आपको दिखेगा वो पोस्ट. okay. आपको बस उसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना फेवरेट बारिश वाला गाना जो है ये लिखना है. कमेंट द टाइटल ऑफ योर फेवरेट बारिश सॉन्ग, और जब आप वो कमेंट सेक्शन में डालोगे तो हम आज एक कोई सिलेक्टेड गाना फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट जो आप और हम मिलकर तैयार करेंगे, बेसिकली यू ऑल जो मैं फिलहाल सुन रहे हैं, हम उसमें से कोई एक गाना आज जाने से पहले आपके लिए एज द फाइनल सॉन्ग ऑफ आवर शो ये प्ले करेंगे.
14: अच्छा, ओके.
13: सो यू कैन राइट योर बारिश सॉन्ग देयर इन द कमेंट सेक्शन एंड देन स्टे विद अस 104.2 FM पर या फिर रोवा ऐप पर to find out कि क्या आपका सॉन्ग हमारे इस प्लेलिस्ट का हिस्सा बना है या नहीं, बिकॉज वन सेलेक्टेड सॉन्ग आज द फाइनल सॉन्ग ऑफ द शो रहेगा
14: बारिश। या मेरा जो गाना है वो तो आ ही नहीं सकता।
13: कौन सा?
14: बारिश वाला।
13: हाँ, कौन सा गाना?
14: मेरा जो वो होगा, क्या बोलते हैं,
13: मुझे क्या पता आपका जो क्या होगा।
14: हाँ, जो जो सॉन्ग होगा।
13: हाँ?
14: वो गाना जो है जो दैट आई'd लव टू लिसन वुड बी आई'ड से ये जो गाना है, मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा।
13: व्हाट आर यू सेइंग? यू डिसाइड पहले, क्या बोल क्या रहे हो आप?
14: मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो गाना मुझे पसंद है बारिश से रिलेटेड,
13: हाँ,
14: वो प्लेलिस्ट में नहीं आ सकता
13: क्योंकि इट्स अ पर्टिकुलर सॉन्ग जो बहुत पुराना है।
14: हाँ
13: ओके okay.

0: ये गाना एक
1: वेरी नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो डेफिनेटली ये खैर हम रेडियो पर नहीं प्ले कर पाएंगे बिकॉज इट्स अ 70s का गाना इफ आई एम नॉट मिस्टेकन.
0: हम रिवाइंड पर रोवर पर ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो
1: आप सुन सकते हैं. यस बट राइट नाउ ऑन ब्रेकफास्ट तो आप नहीं सुन पाएंगे. बट अगर चलो हम गाना पूरा नहीं प्ले कर पाए बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर बिकॉज विल चूज दैट वन सॉन्ग, तो हम पूरा गाना ना सी गाने का हुक आपको सुनाएंगे बिफोर वी गो.
0: ओके
1: ठीक है. अगर इफ इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम 70s 60s 80s तो गाने का हुक सुनाएंगे इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द होल सॉन्ग. बट इफ इट्स अ सॉन्ग दैट वी कैन प्ले ऑन हम तो आपके लिए वो हम प्ले करेंगे. इज द लास्ट सॉन्ग फॉर टुडे. सो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में सिर्फ चाय और पकौड़े ही फेवरेट चीज नहीं होती जो लोग एंजॉय करते हैं, बट गाने भी एंजॉय करते हैं जो हम पर आपके लिए हम लेकर आते हैं. इफ यू वांट योर बारिश सॉन्ग टू बी पार्ट ऑफ आवर बारिश प्लेलिस्ट टुडे ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा, फटाफट आप अपना गाना जाकर हमारे फेसबुक पेज के उस पोस्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड देन लिसन, हैज योर सॉन्ग बीन पार्ट ऑफ द प्लेलिस्ट टुडे.
0: या सनी है, इन्होंने जो गाना लिखा है वो भी बहुत ही कमाल का है, तो उनका गाना आप जाकर
1: कहाँ पे न्यूज सुना रहे हैं आप लोगों को?
0: न्यूज नहीं सुना रहा, मैंने सनी ने जो गाना लिखा है ना
1: आप सुनिए आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ.
0: है
1: आप ध्यान से सुनिए आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ.
0: अब बोल तो कुछ रही नहीं हो, मैं सुनू कैसे?
1: Listen to your music bad dude.
0: Oh okay dude, aise batao na.
1: I have to like literally point out aapki galtiyan. Logo ko kabhi kabhi vishwas nahi hoga ki aap hamare team leader hai. Aisi galti aap karenge to baaki ka kya hoga?
0: Disasters do happen.
1: अब आपके पास कोई हक नहीं है कि
0: आपकी नहीं, आपकी बात इतनी सीरियस है कि म्यूजिक बेड ऑटोमेटिकली मेरा चेंज हो जाता है.
1: पूरा माहौल बदल दिया आपने, मेरा ध्यान तो उधर गया, मैं हैप्पी हैप्पी म्यूजिक सुन रही थी, ये क्या हो गया? मतलब क्या क्या हो क्या रहा है? सनी अमीगो, इन्होंने जो गाना कमेंट किया है वेरी नाइस, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, दैट सॉन्ग इज क्वाइट पॉसिबल की प्ले हो सकता है एल्बम का गाना है वो.
0: विजिट करें हमारा फेसबुक पेज, आपका भी जो फेवरेट बारिश सॉन्ग है प्लेलिस्ट में जाकर ऐड करें एंड लेट्स सी कि आपका गाना जो है क्या आज जाने से पहले सेलेक्ट हो सकता है या नहीं.

0: smile right there.
1: Streaming on Rover.
2: Hum. Accurate traffic.
3: Papakura Toyota. Fuel saver month.
4: Mostly cloudy, wet at times, high of just 14 today. Very quick on motorways into the city. The southern 28 minutes, Manukau to the CBD. Bit slow joining at Drury. Slow at Otahuhu and Mount Wellington to Remuera. Southwestern, bit slow northbound up to the airport link. Northwestern, 20 minutes in from Massey. Very fast, just slow from Grey Lynn. Northern, 22 minutes in from Constellation. Slow there to Glenfield.
3: Buy a used Toyota. Get a $500 fuel voucher. Terms apply. Visit Papakura Toyota.
5: अरे सुनो, मुझे इस डोसा बैटर के साथ फ्री कंटेनर मिला।
6: फ्री कंटेनर तो अच्छा है, लेकिन डोसा कैसा था?
5: डोसा तो ठीक ही था, लेकिन कंटेनर देखो कितना अच्छा है।
6: फ्री गिफ्ट्स लोग भूल जाते हैं, असली टेस्ट के लिए ही वापस आते हैं।
7: Introducing the new chutney range from Amma's Food. Traditional coconut, tangy tomato or crunchy peanut chutney. Perfect with Amma's Idli or Dosa Batter. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. Now available at grocery stores near you.
8: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
9: It's easy for life admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider.
10: TradeDepot.co.nz. Get 199 deals this week only at Trade Depot. Chest freezers, 199. 32-inch smart TVs, 199. Ceramic cooktops, 199. Laundry tub and cabinet, 199. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
1: TradeDepot.co.nz.
11: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. Football updates brought to you by PFSL. Providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food. 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes. Your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
13: दो मैचेस खेले जा रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में और अभी फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने ही वाला है. आइवरी कोस्ट की जीत कुरसाओ के खिलाफ 1-0 से हो रही है. इक्वाडोर एंड जर्मनी लॉक्ड एट 1-1. और भी अपडेट्स हम आपके लिए बारी बारी से इस प्रोग्राम में लेकर आते रहेंगे. आज के अगले थ्रोबैक का टाइम हो चुका है. ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा ऑनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 104.2 एफएम और रोवर पर अगर आप हमारे साथ शामिल हैं. सो थैंक यू सो मच. प्लेलिस्ट जो है ये भी जाकर हम चेकआउट करेंगे. संजेशनी ने जाकर अपना जो ऑल टाइम फेवरेट शेयर किया है, रिम झिम सावन बरसे प्यासा प्यासा मंतर से.
14: ये कौन सा गाना है, मैं भी सोच रही हूँ.
13: SP बाला सुब्रमण्यम एंड लता मंगेशकर.
14: I'm thinking, but I can't remember ये कौन सा गाना. शायद मेरे को ढूंढना पड़ेगा भी to understand. But अभी तक दो ही लोगों ने अपना गाना हमारे प्लेलिस्ट में भेजा है, बेसिकली अपने अपने सजेशंस. एक तो संजेशनी और दूसरा है सनी. तो लेट्स सी आपके कौन से गाने, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग आवर वेरी ओन बारिश प्लेलिस्ट टुडे, कीपिंग द वेदर इन माइंड. और आप अपना फेवरेट बारिश सॉन्ग जो है कॉमेंट सेक्शन में जाकर, हमारे फेसबुक पर जो हमने पोस्ट किया है उसके कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं. एंड देन लिसन टू अस ऑन हम 104.2 FM या फिर रोवर ऐप पर, क्योंकि पता चलेगा कि क्या आज आपका गाना सेलेक्ट हुआ है इन आवर प्लेलिस्ट और नॉट. बिकॉज जो भी गाना हमारे पास आएगा उसमें से कोई एक गाना है रहेगा जिसको आज हम प्ले करेंगे इज द फाइनल सॉन्ग ऑफ द शो टुडे.
13: ओके, वैसे आज जैनम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. इनकी उम्र है 14 ईयर्स. 14 साल इनकी उम्र है. और 13-14 साल की उम्र में, यू नो, व्हेन किड्स आर बिजी प्लेइंग स्पोर्ट्स या फिर वॉचिंग क्या अभी ट्रेंड कर रहा है, वो सारी चीज़ें. ये जो लड़का है अभी तो 14 साल का हो चुका है. ही हैज बिल्ट एन AI स्टार्टअप इन दुबई.
14: ओह.
13: और अब उनका खुद का एक ऑफिस है बुर्ज खलीफा में.
14: हूँ क्या बुर्ज खलीफा में ऑफिस है?
13: हाँ, बुर्ज खलीफा में ऑफिस है खुद का.
14: I don't know what to say now.
13: मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि कैसे यार आईआई का वो सारी चीजें कैसे कर लेते कैसे. जैनम जैन जो है ये फाउंडर है ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी कॉल्ड मैंगो इंजिन, MENGO, मैंगो इंजिन. और इनका जन्म पुणे में हुआ था. इनकी फैमिली मूव टू दुबई जब वो आई थिंक अराउंड 5 years के थे. और एमिरेट्स 24/7 के साथ बातें करते हुए ही डिस्क्राइब ग्रोइंग अप इन अ होम फील्ड विद बुक्स जहां बोथ ही एंड हिज यंगर सिस्टर वर एनकरेज टू परस्यू एम्बिशियस गोल्स. फेलियर्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, जस्ट डू जो
14: व्हाटएवर यू कैन.
13: और उन्होंने शेयर की कि कैसे 6 साल की उम्र में ही अटेंडेड अ बिजनेस मीटिंग विद हिज फादर और उसको बिजनेस में इंटरेस्ट हो गया एंड टेक्नोलॉजी फिर वहां से आगे चलकर. ये छोटा सा एम्बिशन जो उनके अंदर जागा और उनके सिस्टर के साथ बहन के साथ वो खत्म ही नहीं हुआ. एक समय भाई बहन दोनों उन्होंने गोल सेट किया टू अटेंड 50 नेटवर्किंग इवेंट्स इन 50 days ताकि वो अच्छी तरह से कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, रिलेशनशिप बिल्डिंग ये सब कुछ सीख ले. अनदर ईयर दे चैलेंज देमसेल्व्स टू रीच 50 सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स इन 0 to 50 days. ऐसा करते करते उनकी जिंदगी जो है कि पूरी तरह से बदल गई. 2022 में ये दोनों इन्होंने ट्रेवल किया अक्रॉस महाराष्ट्र टू कंडक्ट 100 मोटिवेशन इवेंट्स इन 50 डेज व्हाइल इंस्पायरिंग 50,000 पीपल. लेकिन दे एंडेड अप एक्सीडिंग देयर टारगेट्स. 120 इवेंट्स इन्होंने किए. और 7 साल की उम्र में ही एंड हिज सिस्टर लॉन्च देयर ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो.
14: That is amazing, यार. See, सही गाइडेंस जब आपको बचपन से ही मिले तो आप कहीं ना कहीं उस तरह से उस रूट पर चल पड़ते हैं. बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट द गाइडेंस, इट्स अबाउट द फैक्ट कि आप कितना पैशनेट होते हैं चीजों को लेकर ना. द मोर पैशनेट यू आर द मोर एनर्जी यू विल पुट इन टू गेट दैट थिंग डन फॉर यू. एंड एट सच अ यंग एज अचीविंग सच बिग ड्रीम्स इज वेरी अमेजिंग यार. हैट्स ऑफ टू द बॉय.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 11.5 degrees अभी आप टेम्परेचर फील कर रहे हैं. आज का है 14.18 कम से कम 8 डिग्रीज. गंभीर बारिश के साथ दिन की शुरुआत, बाद में चलकर हल्की बारिश होगी. सनसेट शाम 5:14 पर होगा.
0: Breakfast show with Vijay and Pooja,
2: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
3: What's going on? क्या बकते हो?
4: अरे कहना क्या चाहते हो?
1: हर दिन ना आपको हम बताते हैं क्या बकते हो, क्या होता है, कुछ अजीबोगरीब चीजें जो हैं ये दुनिया में हो जाती हैं, और उन्हीं की खबरें जो है ये हम आपके लिए लेकर आते हैं ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. और एक चीज़ जो है ये मैं पढ़ रहा था, हार्वर्ड के रिसर्चर्स का ये मानना है दैट पीपल हु आर ऑलवेज रनिंग लेट टेन टू एंड अप लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइव्स.
5: ये कैसे पॉसिबल है?
1: नहीं, ऐसे नहीं, आपको बोलना था क्या बकते हो.
5: क्या बकते हो? Like, how is it connected?
1: I don't know, मुझे नहीं पता. ये क्लेम जो है इसे 2018 से काफी सेक्युलेट किया गया है, एट्रिब्यूट किया गया है डायरेक्टली टू हार्वर्ड रिसर्चर्स. क्या एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल पब्लिकेशन जो है ऑन ऑप्टिमिज्म, इसने पाया कि एक ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक अर्ली इन लाइफ प्रिडिक्स बेटर हेल्थ एंड लोअर रेट ऑफ डेथ over follow-up periods of 15 to 40-year-old. Aur Harvard led ek alag study mein 70,000 participants ne paya optimists live 11 to 15% longer than pessimists and are significantly more likely to reach the age 85. तो उसके बाद चलकर ये बात सामने आई कि लोग जो हैं जो हमेशा जिनको देर होती रहती है, टाइम पर पहुंचते नहीं हैं और भागते रहते हैं कि अरे रे रे रे देर हो जाएगी, सो दे एंड अप लिविंग लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइव्स.
5: ये मेरे इस पर्टिकुलर स्टडी के हिसाब से तो आई एम गोइंग टू लिव लॉन्गर एंड आई बी वेरी हेल्थी इन माई लाइफ. करेंटली आई एम नॉट इन दैट फेज दो, आई एम नॉट रियली हेल्थी, बट whatever the survey says, अगर ये सच है तो मैं हो जाऊंगी हेल्थी एंड आई लिव लॉन्गर एज वेल.
1: उसके बाद कई लोगों ने जाकर कमेंट किया. एक ने तो कमेंट किया कि डिड अ पर्सन हु इज ऑलवेज लेट राइट दिस.
5: हो सकता है ये वेरी ट्रू, इट्स क्वाइट पॉसिबल एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग यार. बट ऐसे कुछ और भी क्या भक्ति हो स्टोरीज आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा में. अभी हमने पिछले घंटे हमारा बारिश प्लेलिस्ट क्रिएट किया तो कुछ और लोगों ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए, पर कुछ लोगों ने थोड़ी गलती कर दी. और वो है ये कि आपने इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड राइटिंग इट इन द कॉमेंट सेक्शन हमारे फेसबुक पेज के उस पोस्ट में जहाँ पर हमने आपसे कहा था, हमारे पास इसे टेक्स्ट कर दिया. Web Fit News, thank you so much for joining us early in the morning. But unfortunately, जो गाने आपने text किए, अगर वो वहाँ पर आप लिखेंगे, तो it would be something more interesting because we've created a playlist post for you to go and comment on. Jyoti, आपने भी अपना जवाब भेजा है या अपना गाना भेजा है basically. Arvina, आपका भी message आया है. बड़ा interesting है यार इनका गाना.
1: Arvina, क्या लिखा है Arvina ने?
5: मंडोले मेरा तंडोले, मेरे दिल का गया करार.
1: ये बारिश होंगे?
5: I don't know. She wants it in a barish playlist, so all good.
1: Okay, okay.
5: Gaurav ne bahut hi khoobsurat gana jo ye bheja hai. So let's see. Aap jaakar Facebook page hamara visit kijiye. If you're not following us, hum 104.2 FM with the blue tick, there's a verified page. Follow us, like our page, aur fir pehla post aapko dikhega on our page jo humne kiya hai. We've created a barish playlist jahan par aaj ke mausam ko dhyan mein rakhte hue barish wale gaane encourage kar rahe ki aap bhi apna favorite barish song jo ye mein bataye and then listen to us because jab hum aaj साइन आउट करेंगे, मैं बोलने जा रही थी लॉग ऑफ करेंगे. जब हम साइन आउट करेंगे तो हमारे शो का जो लास्ट गाना हम नॉर्मली प्ले करते हैं ना साइन आउट से पहले, दो बातों के बाद में बजाते हैं आपके लिए, वो इस बारिश प्लेलिस्ट में से कोई एक गाना होगा.
1: ओके, तो हमारा फेसबुक पेज विजिट करें और वहां से वहां पर जाकर अपना जो फेवरेट बारिश प्लेलिस्ट सॉन्ग है उसमें ऐड कर दें कमेंट सेक्शन में. फिलहाल हम अपने प्लेलिस्ट से हटकर मैं कुछ सुनाने जा रहा हूं आपको, ये आप सुने थोड़ा सा,
5: सुनाइए
1: उसके बाद tell me how is it.

0: ऑफलाइन है।
1: So, how?
2: I liked it. बहुत बढ़िया वॉइस था यार इस गाने का, वेरी नाइस, लव्ड इट, आई लव्ड इट, आई लव्ड ईच एंड एवरी लाइन। वाइब तो बहुत पसंद आया मुझे, लाइक द वाइब वाज बहुत कैची, बट द फैक्ट कि इस गाने में जो चीजें बोली गई है दैट इज सो ट्रू, ईच एंड एवरीथिंग, क्या हो रहा है, क्या खा रहे, क्या पी रहे, कहाँ जा रहे, क्या कर रहे, वो सब आजकल ऑनलाइन जाता है।
1: पहले नहीं सुना था आपने ये गाना?
2: मैंने सुना था ये गाना, पर रिएक्शन भी तो देना पड़ता है ना ऐसे, जैसे कि मैं पहली बार सुन, मतलब क्या यार,
1: नहीं मुझे पता नहीं था कि सुना था कि नहीं ना, तो पूछ लिया।
2: मैंने सुना था, बिकॉज़ आई नो ये गाना आपने लिखा है, ये गाना आपने बनाया है, सो आई हैव हर्ड इट बिफोर, इट्स जस्ट दैट व्हेन यू लिसन इट लाइक दिस इट्स अ डिफरेंट वाइब, यू नो।
1: या हो गया भाई, थोड़ी देर बाद कम्युनिटी की खबरें जो है ये हम आपके लिए लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में।

0: What's going on?
1: What's up?
0: What's up, Auckland?
2: सबसे पहले तो आज आखिरी दिन है फिजी इलेक्शंस वोटर रजिस्ट्रेशन का इन ऑकलैंड, और आज दिन में 12 से रात 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन जो है कि होगा मैंग्री सेंटर पार्क 101 रॉबर्टसन रोड मैंग्री में। आप जाकर यहां रजिस्टर हो सकते हैं। और कल और संडे को रजिस्ट्रेशन जो है हैमिल्टन में होगा, तेफनाओ पुताही 37 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट फेलेंस में 3 से लेकर 9 बजे तक, 3 PM to 9 PM। जिसके बाद नेक्स्ट वीक मंडे एंड ट्यूसडे रोटोरुआ में मैथडिस्ट चर्च हॉल में ये होगा 3 to 9 PM। वेंसडे फेस्ट जुलाई को नेपिया में ये होगा ग्रीन मीडोज ईस्ट कम्युनिटी हॉल में शाम 6 से लेकर रात 10 बजे तक। पाम्स्टन नॉर्थ इज नेक्स्ट वीक थर्सडे 2nd जुलाई और 3 से लेकर 9 बजे तक, फॉलोड बाय वेलिंगटन फ्राइडे और सैटरडे को 3rd और 4th जुलाई को। वेस्टली मेथडिस्ट चर्च में दिन में 12 से रात 8 बजे तक आप जाकर आगामी फिजियन जनरल इलेक्शंस के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। उसके साथ ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की मासिक रामायण कथा आज होगी 7:15 PM से, यानी रात 7:15 बजे से IRST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी में। और इस में आपके लिए प्रसाद और भोजन का भी प्रबंध रहेगा, तो आप जाकर हिस्सा ले सकते हैं। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री राम लीला। ये 8th of August को होगा वैदिक सेंटर 32 ग्लेसगो एफ पापाटोईटोई में, जिसके लिए टिकट्स अब रिलीज हो चुके हैं और जेस फ्रेश मार्ट से आप टिकट्स ले सकते हैं। साथ ही में अगर स्टॉल वगैरह आपको चाहिए या फिर आप इस टीम में शामिल होना चाहते हैं एज ए विजुअल क्रिएटिव डायरेक्टर, तो भी आपके पास मौका है। मास्टर अशोक से आप बातें कर सकते हैं, 0217954599 नंबर है जिस पर आप उन्हें डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा हंसी और ठहाके की एक बहुत ही अनोखी रात, गुज्जू भाईनी एक्सचेंज ऑफर, सिद्धार्थ रंडेरिया आ रहे हैं ऑकलैंड नेक्स्ट वीक फ्राइडे को रात 7:30 बजे से विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में, जहां पर एक बहुत ही अनयूजुअल एक्सचेंज ऑफर को एक प्ले के रूप में आपके लिए पेश किया जाएगा। बहुत मज़ेदार मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, बहुत ही फनी सिचुएशंस, ये सब कुछ आपके लिए होगा सिद्धार्थ रंडेरिया का जो गुज्जू भाई प्रोडक्शंस ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं। टिकट्स गिने चुने जो हैं ये बाकी रह गए हैं, premierTickets.co.nz विजिट करते हुए जल्द से जल्द टिकट्स अपने आप ले सकते हैं।

0: में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: Here's how to beat rising fuel prices with one easy step. Just step onto a bus, train or ferry. Because travel on Auckland Transport buses, trains and inner harbour ferries is still capped at no more than $50 a week when you use your hop card. Track your progress in MyAT and see if your next trip could be free. Search AT 7-day fare cap for all the details and conditions, then just grab your hop card and save.
7: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Smart Totoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite master builder.
4: Kahani of Indelible Homes.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
6: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
7: What's going on?
6: Football updates brought to you by PFSL. Providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food. 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes. Your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
8: 23 मिनट हो रहे हैं 9 बजकर अभी भी स्कोर्स वही हैं इनटू द सेकंड हाफ आइवरी कोस्ट की जीत कुरसाओ के खिलाफ 1-0 से हो रही है इक्वाडोर और जर्मनी 1-1 से बराबर और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे इस प्रोग्राम में और अभी एक और जबकि आप अपना जो बारिश प्लेलिस्ट है ये हमारे फेसबुक पेज पर शेयर कर रहे हैं अगर आप

0: ROVA रोवा लिखें, उसके बाद अगर आप रोवा पर फ्रिक्वेंसी पर 104.2 FM पर नहीं, अगर आप रोवा पर अपने ऑफिस में या अपने शॉप में हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, तो अभी आपको इतना करना है, ROVA उसके बाद ऑफिस का नाम और लोकेशन कहाँ पर ये ऑफिस है, ये तीन चीज़ें लिखकर 5599 पर हमारे पास भेजनी है। और साथ ही में मत भूले, थोड़ी देर बाद आज का हमारा डेली राउंडअप भी हम लेकर आएंगे इस प्रोग्राम में।
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: 27 मिनट रह गए हैं अभी 10 बजने में. एक सेटा ओनर है इन इंडिया प्लस, इनको ये एक ट्रेड एनालिस्ट भी है, इनका नाम है विशेक चौहान. और उन्होंने अभी हाल ही में सिद्धार्थ कनन के एक पॉडकास्ट में हिस्सा लिया, जहां पर उन्होंने आदित्य धर के स्किल्स को काफ़ी प्रेज़ किया, धुरंधर को काफ़ी प्रेज़ किया. एंड आई थिंक धुरंधर जो है ओवर 3,300 crores इस फिल्म ने कमाए हैं. और उन्होंने कहा कि वो फिल्म इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, व्हेन आई वाज वाचिंग इट आई न्यू कि ये फिल्म रिकॉर्ड्स तोड़ेगी, आग लगा देगी फिल्म, अनस्टॉपेबल होगी, ये सारी बातें उन्होंने कही. साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि एक फिल्म है जो धुरंधर का रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है.
1: कौन सी फिल्म?
0: पहले ये बताओ कौन से एक्टर हो सकते हैं इस फिल्म में
1: जो धुरंधर का भी रिकॉर्ड तोड़ दे?
0: हाँ, द बज इज वेरी गुड, उन्होंने कहा है.
1: कुड इट बी रणबीर कपूर, उनकी जो आने वाली है एनिमल पार्क?
0: द एक्टर इज करेक्ट,
1: रणबीर कपूर. ओह, रामायण.
0: यस,
1: राइट.
0: उनका कहना है कि रामायण को लेकर बहुत अच्छा बज है, इट इज अ सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू पीपल्स हार्ट, द वे रणबीर इज लुकिंग एंड द काइंड ऑफ स्टार कास्ट फिल्म हैज इंक्लूडिंग सनी देओल, यश, डायरेक्टर इज ऑल्सो लुकिंग गुड, सो आई हैव नो डाउट द फिल्म विल ब्रेक रिकॉर्ड्स.
1: Oh, nice. Very nice. So let's see, क्या इनका ये prediction सच में पूरा होता है या नहीं. But on the other hand, I've got a news to share as well. Samantha Ruth Prabhu, जिन्होंने न केवल साउथ इंडियन फिल्मों में काम किया है, लेकिन she has been seen in a lot of web series and of course she's a known face in the industry. और इनकी एक और एक फिल्म जो है, सबसे लेटेस्ट फिल्म जो आने आ चुकी है, इनफैक्ट 19th of June को ये रिलीज हुई है, माँ इंटी बंगरम्मा इस फिल्म का नाम है. और इस फिल्म के बारे में आपको बता दें कि कमाल बात ये है कि समंथा और उनके हस्बैंड राज, इन दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है.
0: अच्छा.
1: बट इस फिल्म के एक इवेंट पर ये पहुंची, जहां पर शी हैज स्पोकन अबाउट समथिंग जिसके बारे में र्यूमर्स उड़ रहे थे, एंड शी हैज कन्फर्म्ड इट नाउ. शी वेंट टू अ इवेंट जहां पर ये अटेंड करने गई थी इस फिल्म का एक इवेंट, और उन्होंने बात ही बात में किसी को, अपने किसी एक फैन को या किसी जर्नलिस्ट के सवाल को रिप्लाई करते हुए कहा कि आई एम सो सॉरी, आई हैव टू अगेन टेक अ स्मॉल गैप. और इन्होंने कहा कि अभी तो ये फिल्म ये कर रही हैं, ये रिलीज हो चुका है, बट इसके बाद अब उनको मैटरनिटी लीव पे जाना पड़ेगा, और जिसके बाद वो एक छोटा सा गैप लेकर फिर वापस फिल्में करने वाली हैं अपने फैंस के लिए. सो इफ यू रिमेम्बर ऑन द ब्रेकफास्ट शो, आई थिंक लास्ट वीक या अर्लियर दिस वीक हमने बातें की थी कि ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं दैट शी इज एक्सपेक्टिंग अ फर्स्ट चाइल्ड. और कुछ कन्फर्मेशन उनकी ओर से तो नहीं आया था, पर आई थिंक बॉलीवुड हंगामा ने इसे रिपोर्ट किया था, एंड देयर सेड कि उनके क्लोज सोर्सेज ने कन्फर्मेशन दी थी. हाउएवर समंथा डिडंट से एनीथिंग इन रिगार्ड्स विद दिस, सो फाइनली शी हैज अग्रीड टू इट, शी हैज कन्फर्म्ड द न्यूज, एंड दैट्स इट, शी इज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, सो वेरी सून वी विल गेट टू हियर द गुड न्यूज.
0: ओके, 23 मिनट रह गए हैं 10 बजने में. वैसे पानेल मास्फेन, इफ आई एम मिस प्रोनाउंसिंग इट राइट, यहाँ पर अरोवा पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, साथ में तमाकी हेल्थ एलएसडी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एक और मैसेज आया है,
1: इन्होंने लिखा, राज हियर लिसनिंग टू योर प्रोग्राम ऑन रोवा, केम फ्रॉम ऑकलैंड डाउन टू क्वींसटाउन टू वर्क. अभी ये क्वींसटाउन में है, डाउनर्स के लिए काम करते हैं ये,
0: तो क्वींसटाउन में रोवा पर प्रोग्राम सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच आपके भी मैसेज के लिए. तो हमने कहा है कि बस इतना ही आपको करना है, अगर आप अपने काम पर रोवा पर हमारा प्रोग्राम सुनते हैं तो आप रोवा लिखें, कहाँ काम कर रहे हैं, किस एरिया में हैं वो बताएं, और किस बिज़नेस के लिए काम कर रहे हैं उस बिज़नेस का नाम जो है ये आपको लिखकर 5599 पर हमारे पास भेजना है.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन,
2: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे

0: Contrast पे on Rova, Spotify और anywhere you get your podcast.
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz.
4: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
5: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
6: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
8: हाँ. अच्छा
7: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं?
8: मिसेस सिंह.
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहोहो. कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz.
11: Working hard deserves a serious reward. There's never been a better time to get into an LDV. Choose a free accessory pack worth up to $5,000 on new T60 Utes. Plus, get a $1,000 fuel voucher with every new LDV purchase, along with sharp finance options across the range. LDV, built tough, priced right, and now packed with deals. Visit ldv.co.nz to find out more. Terms and conditions apply. Offer ends 31st July while stocks last.
12: Ready to escape and get rewarded with Singapore Airlines? Book your getaway with special fares to destinations across Europe, Asia and beyond, and receive a bonus $150 Prezi card when you book online using your MasterCard. That's an extra $150 to spend in Singapore, Thailand, Vietnam, Delhi, London and more. Escape the cold and book your 2026 getaway today at singaporeair.com. Hurry, deals end June 26. T's and C's apply.
13: Okay, everyone, I'm calling an important meeting for next Tuesday afternoon.
14: Sounds important.
13: It's bloody important. It's a bloody important meeting.
14: A bloody important meeting?
13: Bloody important. We're giving blood and plasma as a blood group.
14: Oh, I've always wanted to be in a group.
15: This week, get your blood group together to give blood or plasma. Go to nzblood.co.nz now to see if you can donate, book, and then send that bloody important meeting invite. Give blood. Give plasma. Save lives.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
16: What's going on?
17: Daily Roundup ka waqt ab ho chuka hai aur आज के हमारे डेली राउंडअप में सबसे पहले आज वेलिंगटन के खुले इलाकों में एक्सपोज्ड एरियाज में झोंके के साथ अप टू 150 किलोमीटर्स पे आवा की रफ्तार पर हवाएं रिकॉर्ड की गई और इसकी वजह से फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस जो है ये हुए हैं. कल मेट सर्विस ने हैवी रेन वॉचेस और वार्निंग्स जो है ये इशू किए थे और आज सुबह मोस्ट फ्लाइट टू एंड फ्रॉम वेलिंगटन जो है इनको या तो कैंसिल किया गया है या फिर डिले किया गया है. एयरपोर्ट के वेबसाइट ने 31 फ्लाइट्स कैंसल्ड जो है ये लिस्ट किए आज सुबह और साथ ही में इंटर आइलैंडा और ब्लू रिच फेरी सेलिंग्स उनको भी आज के लिए कैंसिल करना पड़ा है खराब मौसम की वजह से.
18: और ये भी आपको बता दें कि कल भी ये अपडेट जो है सामने आया था एंड इट माइट बी फॉलोड थ्रू. रीज़न बीइंग कि इतना ज़्यादा बारिश और साथ में तेज़ रफ्तार से हवाएं वगैरह चल रही है जिसकी वजह से कहा गया है कि ऑकलैंड में जो हार्बर ब्रिज है इस पर कुछ डिस्ट्रप्शन हो सकते हैं या फिर साथ में जो ट्रैवल आप अगर कर रहे हैं अक्रॉस द ब्रिज तो थोड़ा आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा बिकॉज यू डोंट रियली नो कि कब ज़्यादा हवा चलने की वजह से जो ब्रिज है इसे बंद कर दिया जाए.
17: और उसके अलावा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो तीसरा और डिसाइडर टेस्ट मैच है ये शुरू हुआ है और यहाँ पर टॉम लेथम और डेवन कॉनवे जो ओपनर्स रहे हैं इन्होंने एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप जो है ये बनाया है, पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है और इन दोनों ने जैकी मिल्स और स्टीवी डेम्स्टा का जो रिकॉर्ड था 1930 का विद एन ओपनिंग स्टैंड ऑफ 317 जो है ये तोड़ा, और उनका मार्क जो था 276 रन्स था, और इन्होंने 317 रन्स जो है ये बनाए। द होम साइड फॉट बैक वेल विद टू विकेट्स लास्ट टू ओवर्स में, लेकिन न्यूजीलैंड ने कल जो है काफ़ी कमांडिंग फिनिश जो है कल के दिन को दिया, 361 for 4। लेथम एंड कॉनवे जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ायदा उठाया जो बेटर फ्रेंडली कंडीशंस थे उसके, और मैच जो है ये आज एक बार फिर जारी रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप टुडे।
18: और इधर चलिए द फाइनल अपडेट फ्रॉम माय एंड टुडे इज कि आपको याद दिला दूं कल लोटो पावरबॉल जरूर अगर आप खेलते हैं देन ट्राई योर लक बिकॉज इट्स $15 million फॉर टुमारो नाइट।
17: और साथ ही में जो मैचेस हैं फीफा वर्ल्ड क्लब कप के, अब आइवरी कोस्ट की जीत क्रोसाओ के खिलाफ 2-0 से होने लगी है, और दूसरा जो मैच है अराउंड 7 मिनट्स टू गो फुल टाइम होने में, उसमें अब इक्वाडोर की जीत जर्मनी के खिलाफ 2-1 से हो रही है, इक्वाडोर 2-1। 11 बजे याद रखें अगले दो मैचेस खेले जाएंगे ग्रुप एफ के, टूनिजिया वर्सेस नेदरलैंड्स और जापान वर्सेस स्वीडन, तो ये दो मैचेस 11 बजे होंगे। एंड एट 2 PM टुडे ग्रुप डी के मैचेस खेले जाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, टेकी वर्सेस USA और दूसरा मैच पेरेगुए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना इज एक्सट्रीमली क्रूशल, पहले मैच में उनकी जीत हुई थी, दूसरे मैच में USA के खिलाफ उनकी हार हुई थी, तो अगर वो इससे आगे बढ़ना चाहते हैं तो दे विल नीड टू विन अगेंस्ट पेरेगुए। वैसे पेरेगुए की जीत आई थिंक सैटरडे को टर्की के खिलाफ 1-0 से हुई थी, पेरेगुए के खिलाड़ी को रेड कार्ड भी किया गया था उस मैच में। और जो फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस थे उनकी ओर अगर देखें तो उसमें पेरेगुए की हार जो है USA के खिलाफ 4-1 से हुई थी, तो बहुत टीम्स दोनों टीमें पेरेगुए और USA ऑस्ट्रेलिया जो है दे विल बी ट्राइंग टू विन द मैच। वहीं पर दूसरा जो मैच है ये रहेगा USA और टर्की के बीच, तो इन मैचेस पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम जरूर लेकर आएंगे।
10: Football updates brought to you by PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today, Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelibleHomes.co.nz. Love.

0: दो बातों से पहले, आज आपने कहा था कि आज हम बारिश का प्लेलिस्ट जो है ये बनाएंगे, और प्लेलिस्ट में जो भी सिलेक्शंस आएंगे उनमें से कोई एक गाना जो है जाने से पहले आपको सुनाएंगे।
1: बिल्कुल सुनाएंगे, लेकिन मैं अभी आपको कुछ सुना रही हूँ। आप सुन रहे?
0: हाँ, मैं सुन रहा हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है?
1: बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो जाने से पहले हमने कहा था कि आपको गाना जरूर सुनाएंगे ना। समथिंग वियर्ड हैज हैपेंड, वी डोंट नो व्हाट, बिकॉज हम जब मैसेजेस चेक कर रहे हैं, सॉरी कमेंट्स चेक कर रहे हैं, इट शोज कि प्लेलिस्ट में अपना अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए 8 कमेंट्स आए हैं, जिसमें से एक ने तो गाने का एक लिंक जो है, अपने गाने का लिंक जो ये पोस्ट किया, तो इट मेक्स 7 गाना होना चाहिए, 7 कमेंट्स होने चाहिए। बट व्हेन आई एम ट्राइंग टू व्यू ऑल द कमेंट्स, तो सिर्फ मेरे को 5 या 6 ही दिख रहे हैं। आई कांट सी द अदर वन, बट नेवरदलेस जो दिख रहे हैं उनमें से एक गाना हमने पिक कर लिया है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो गाना इन्होंने चुना है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। ओरिजिनल हम नहीं प्ले कर रहे बिकॉज इट्स फ्रॉम द 80s, बट वी वॉन्ट टू प्ले द होल सॉन्ग बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। इसीलिए हम नॉट फ्रॉम द 80s, आई थिंक इट्स फ्रॉम द 70s, तो इसीलिए हम आपके लिए उसका एक अनप्लग्ड वर्जन प्ले करने जा रहे हैं, विच इज इक्वली ब्यूटिफुल।
0: दो बातें आज की पहले सुन लें। मंदिर में मेवा चढ़े खड़ा भिखारी रोए, मंदिर में मेवा चढ़े खड़ा भिखारी रोए, मूरत पे चद्दर चढ़े ठंड में नंगा सोए।
1: आजकल की रियलिटी है एक्चुअली।
0: और दूसरी बात, इस दुनिया में सिर्फ धोखा और धक्का ही मुफ्त में मिलता है, बाकी हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है।
1: वेरी ट्रू। वी होप कि इन दो बातों को आप याद रखेंगे अपनी लाइफ में कुछ जरूरी फैसले करने से पहले, कुछ कदम उठाने से पहले। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने की, जाने का समय हो रहा है। आपके साथ और समय के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब एक बार फिर मंडे को ठीक सुबह 6 पर द ब्रेकफास्ट शो विद विजन पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे। बट बिफोर वी डू दैट, आज का ये गाना जो हमारा बारिश प्लेलिस्ट में आपके लिए हम छोड़े जा रहे हैं, अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वन अनप्लग्ड वर्जन ऑफ अ सॉन्ग जो हमारे पास आज भेजा था अरवीना शर्मा जी ने।

0: Midwinter Meltdown on now at No Leeming.
1: Bunnings Trade is here to help get interior jobs sorted with a huge range of kitchen and laundry cabinetry, flooring, wardrobes and more. Our kitchen experts can help with the plan and design of your next job. Call 0800 134 872 to arrange a quote or book a consultation at Bunnings Trade.
2: Discover the magic at Go Bananas Chaike, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
3: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
2: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
3: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
5: Dad, I feel sick.
6: Yep, we've all been there, and so has Sealegs. For over 55 years, Sealegs has been answering distress calls and helping Kiwis prevent motion sickness for up to 24 hours. So, whether you're travelling by car, plane, boat, or walker, pack your Sealegs and enjoy the journey. Sealegs is a pharmacy medicine. Always read the label and use only as directed. May cause drowsiness, avoid alcohol and driving. If symptoms persist, see your healthcare professional. Radiant Health, Auckland.
7: As a baby, I was burnt in hot water.
8: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
9: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
10: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now.
11: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
12: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. Strong wind and now heavy rain is lashing the lower North Island. Flights in and out of Wellington have been mostly cancelled. Met Service meteorologist Braden White expects rivers to rise during the day.
13: We've definitely heard of trees coming down and power outages in a number of places. There's also the possibility of slips. Definitely a day where there is a risk of damage.
12: Strong winds have already downed trees across Porirua. The council says one's fallen and blocked Belmont Road. They've also come down on Paikakuri Hill, Gillett Street and Takutai Street. Flooding has also been reported. A new study here has been presented as an opportunity to improve bowel cancer support. It found 1 in 5 patients under 50 wait more than a year to be diagnosed. Researcher Rachel Purcell says it's not a great look.
14: The message is to not dismiss bowel symptoms just because somebody's under 50. And we really need more public awareness and more awareness among primary health providers and the health system in general.
12: And overseas, the death toll from two massive earthquakes in Venezuela yesterday has risen to at least 188. Around 1,500 others are injured. The UN is coordinating the deployment of teams from right around the world. In sport, football first, and a tense finish to Group E at the FIFA World Cup. A short time ago, almost full-time, Ecuador were leading Germany 2-1. Ivory Coast led Curaçao 2-0 in the other match. The next pair of games is in Group F, the Netherlands playing Tunisia and Sweden battling Japan beginning in an hour. Football with Hisense, proud partner of the FIFA World Cup. And a rugby former Wallabies prop, Jermaine Ainsley, is returning to the Highlanders. Ainsley has signed a 2-year deal through to the end of the Super Rugby Pacific Comp in 2028.
11: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
15: मौसम की तरफ हम देखें तो भाई मौसम काफ़ी ख़राब है एंड क्लाउड्स जो हैं ये दोपहर के बाद बारिश और भी लेकर आ सकते हैं. हवाएं तेज़ हैं. इट फील्स लाइक 11 डिग्रीज 5:14 पर सनसेट बताया गया. दी हाई द 14 ओवर टेम्परेचर ऑफ 8 इज द फॉरकास्ट.
11: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स बजट गाने My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
16: Ladies and gentlemen, Dil Thamke.
5: से बैठे क्योंकि आ रही है
11: माय टाइम विद काशिका.
16: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल. हाउ आर यू. स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो रहा है जहां पर आपको कह सकती हूं कि ये बस अगले वीकेंड पे तो अगला महीना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं. लेकिन आपके लिए एक्साइटमेंट इसीलिए बिल्ड हो जाता है क्योंकि वीकेंड आ गया है. अब जब वीकेंड आ गया है तो मैं आपकी रिमाइंडर क्लॉक बनके आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी, आप अपने लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अरे भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. तभी तो आप मेरी बात सुनते हैं और कहते हैं हाँ हाँ भाई ठीक है भाई मैं अपने लिए समय निकालने वाला हूँ या निकालने वाली हूँ. इतना समय आपको ज़रूर निकालना पड़ेगा कि आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ अबाउट समथिंग जो आने वाले ईस्टर में हो सकता है 2027 में. शायद इमेजिन कीजिए एक सनराइज़ व्यू, कुछ नए दोस्त आप बनाएं, एक रोड पे आप जब जा रहे हैं तो उसकी आप अलग से प्लेलिस्ट रखें, अच्छा अच्छा खाना, अच्छी खूब सारी हंसी मजाक. अरे भाई ये म्यूज़िक नहीं है, ये कहानी आपकी बन सकती है और ये आने वाले ईस्टर पर. कैसे, इसके बारे में बातचीत करेंगे बहुत जल्द. लेकिन अभी तो घुमाते चले जाएंगे थोड़े टाइम के लिए. बट अभी घूमने घुमाने के लिए आपके पास आज का दिन तो खैर बहुत समझ के चलना पड़ेगा. रोड्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. लेट मी रिमाइंड यू, वीकेंड पर अपने लिए टाइम निकालना बिल्कुल मत भूलना. कशिश फूड्स की ओर से आपके लिए मुमकिन हो जाता है जहां मंडे टू फ्राइडे आपके साथ मैं 10 से 12 बजे तक आ जाती हूं आपकी रिमाइंडर क्लॉक बनके. मैं काशिका माय टाइम लेकर एंड अभी थोड़ी ही देर बाद मेरी कोशिश है कि आखिरी मौका आपको दे दूं कि आप ये डबल पास राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट का कैसे जीत सकते हैं. ओके गाना बजा रही हूं, उसके बाद बात करती हूं.
11: बचाओ क्या

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: मैं चाहती हूँ कि आप एक्सपर्ट बन जाएं और फटाफट मुझे कॉल करें 0800 00 हम पर, क्योंकि यू नो ये एक्सपर्ट पैनल आपका और मेरा होने वाला है। मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी, आपका नाम ड्रॉ में ऐड करूंगी फॉर द अमेजिंग कॉन्सर्ट जहां 25 जुलाई के दिन आपके लिए ट्रस्ट अरीना में राहत फतेह अली खान लाइव परफॉर्म करने वाले हैं। ये अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा आप बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए मुमकिन है कि जब आप वहाँ बैठे हों तो चाहे वो बॉलीवुड के गाने हों, चाहे वो कवाली हो या फिर उनके कोई सूफी अंदाज़ को आप सुनना चाहें, तो डेफिनेटली मंत्रमुग्ध हो सकते हैं उनके गानों के साथ, उनकी आवाज़ के साथ। और मुझे पिछली बार याद है कि इन्होंने नॉन स्टॉप गाया था अपनी टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ बैठ के इन्होंने जब स्टेज पर आ गए उस एंड तक उन्होंने गाते ही वो चले जा रहे थे। सो आपका टाइम है, मैं आपसे 3 बहुत आसान से सवाल पूछूंगी, आपको उसका मुझे रिप्लाई देना है एंड दैट्स इट। आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड कर दूंगी 0800 00 हम 0800 00 4866 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप ये टिकट खरीदना चाहते हैं तो dryTickets.com के ज़रिए आप ये टिकट खरीद सकते हैं। जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, साथ साथ ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस आपके लिए ट्रस्ट अरीना में 25 जुलाई के दिन लेके आने वाले हैं। हमारे ढेर सारे विनर्स जो हैं उनको हम कॉन्टैक्ट करते चले जा रहे हैं और ये लकी हैं आपके बहुत सारे लोग इसमें से सेलेक्ट भी हो चुके हैं। सो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, डरना नहीं, आ जाओ एक्सपर्ट बन के। और राहत जी के 3 सवाल हैं आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, देखती हूँ कि आप इसका जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते। हाँ भाई, इजी रहेगा, कल भी मैंने सबको टटोल टटोल के कैसे कैसे आप लोगों को मैंने पूछ लिया था और आपका नाम ऐड कर दिया था। बाय द वे, जहाँ हम बात कर रहे हैं मौसम की, जब तक आपकी कॉल नहीं आती, हवाएं जो हैं 150 किलोमीटर की रफ्तार से ओवरनाइट विलिंगटन एरिया में रिकॉर्ड की गई, और जिसकी वजह से जो फ्लाइट्स थी कैपिटल में डिसरप्ट भी हो गई थी। विलिंगटन एयरपोर्ट की 60 फ्लाइट्स जो थी वो कैंसिल हो गई थी। आप पैसेंजर्स जो अगर जा रहे हैं डेफिनेटली चेक करें आप एयरपोर्ट पे जाकर और पता लगाएं कि भाई आपकी फ़्लाइट टाइम से जा रही है, कैंसिल हो गई है, क्या कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन कोशिश यही है कि आप अगर हमारे साथ भी बने रहेंगे हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ हवाएँ जो चल रही हैं, जहाँ अराउंड द कंट्री 300 लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो हुई हैं, और साथ साथ गिस्बन एरिया में 35 मिलीमीटर की बरसात भी हुई है। चलो, आप में से कोई कॉल नहीं कर रहा, मैं एक काम करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, आपके साथ ऑफिस शाउट आउट में ज्वाइन करती हूँ।
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live

0: चाहे आप हमके दें चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
2: The King Living Winter Sale is on now. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale on now. Shop online or visit a King Living showroom today.
3: Film बिल्कुल फेक और डेंजर एकदम रियल। इंडियाज फर्स्ट 2000 करोड़ फेक फिल्म वेलकम टू द जंगल स्टारिंग अक्षय कुमार, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस एंड मेनी मोर।
4: एक जबरदस्त कहानी है।
5: और टाइटल क्या है फिल्म का?
4: वेलकम टू द जंगल।
3: वेलकम टू द जंगल नाउ शोइंग इन सिनेमास। डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फोरम फिल्म्स। रेटिंग टीबीसी।
6: Hi there. Sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
7: Neighbourly News. Local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
8: This dry July, do something good for yourself and for others. Go alcohol-free for 31 days and raise funds for Kiwis affected by cancer. Do good, feel good. Go dry this July. Sign up now at dryjuly.co.nz.
9: Some things belong in a warm home. A cup of tea, a cozy hot water bottle, a steaming hot bowl of soup. In homes just like yours, serious burns happen every day. Especially to curious little hands over winter. Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 44999 to make a $3 donation now.

0: सो मुझे इस समय सुन रहे हैं व्हाट इज नेम दिव्यम फ्रॉम वेस्ट सिटी ऑटो ग्रुप. आप मुझे सुन रहे हैं एंड आपका काम भी चल रहा है. आपके जो यू नो मोटर यार्ड में जो यार्ड में आप लोगों ने हम लगा रखा है. सो बिग थैंक यू टू यू फॉर हमिंग अलोंग विद मी एंड हमिंग अलोंग ऑन हम. अच्छा कहाँ से बाकी के लोग सुन रहे हैं? रोवा से कौन सुन रहा है अभी बताओ जल्दी से. अच्छा आपका सवाल जो है अगर आप मुझे देना चाहते हैं, अभी तक एक कॉल आई थी एंड बाय द टाइम आई कुड पिक अप द फोन ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी. कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ कॉल करें. अगर अभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मुझे कोशिश कर सकते हैं बात करने की, तो डेफिनेटली आप कीजिए, क्योंकि मैं ये कॉन्टेस्ट अब यहाँ ख़त्म कर रही हूँ. इसके बाद माय टाइम में आपको मौका नहीं मिलेगा अपना नाम एंटर करने के लिए. फिर मत कहना कि कशिका ने मौका नहीं दिया. चलिए एक काम करते हैं, अब आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक मैं बजाना चाहती हूँ, लेकिन इसको बजाने से पहले आपको कुछ और याद दिलाना चाहती हूँ. और वो बात है कि आप जब बाहर निकल रहे हैं बी वेरी वेरी केयरफुल. आपने ये आंधी तूफान का मौका है, मौसम है, और ऐसे में बारिश से बचकर रहिएगा, हवा से यू नो ड्राइविंग की स्पीड अपनी कम करते चले जाइएगा.
1: Top hit of the hour brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: Matter.
1: So, मेरे पास एक कॉलर है एंड ये गुड मॉर्निंग. मैं किन से बात कर रही हूँ?
2: गुड मॉर्निंग, निशा से.
1: अच्छा अच्छा, बताइए. मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ राहत फतेह अली खान से, ताकि मैं आपका नाम ड्रॉ में ऐड कर सकूँ. एक सॉन्ग है जो आफरीन आफरीन जो राहत जी ने गाया था, उसे पहले किसने गाया था? डू यू नो दैट?
2: नुसरत फतेह अली खान जी ने.
1: ओके, फर्स्ट वन आंसर इज राइट. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन टू यू इज, देयर वाज अ सॉन्ग यू नो माय नेम इज खान फिल्म में जो राहत जी ने गाया था. डू यू रिमेम्बर द सॉन्ग?
2: तेरे नैना, आई थिंक.
1: ओके, लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट. माधुरी दीक्षित ने एक गाने पर डांस किया था और वो राहत फतेह अली खान जी का गाना था. कुछ याद है कौन सी फिल्म का गाना है या कौन सा गाना है?
2: माधुरी दीक्षित, सोचना पड़ेगा मेरे को. ओरे पिया, यस यस यस यस यस.
1: मतलब करती है. यू आर एन एक्सपर्ट. ये बताओ, अच्छा ये बताओ.
2: अरे पिया.
1: हाँ, नहीं गाओ, नहीं गाओ, नहीं. ठीक है ठीक है, अप्रूव्ड अप्रूव्ड. लेकिन ये बताओ कि आपने इतने लेट कैसे फोन किया?
2: अरे नहीं, वो बस मैं काम कर रही थी तो मैं रूम पे लगा रखा था. बीच में बच्चे बात कर रहे थे तो मुझे एकदम से लगा कि कॉन्टेस्ट कुछ तो क्वेश्चन चल रहा है मेरे फोन पे चलते हैं एक्चुअली रोमा.
1: ओके,
2: तो मुझे लगा अभी फोन करती हूँ बस.
1: अच्छा अच्छा, लेट हो गई. ओके, नहीं नहीं, आप लेट नहीं हुए. हमारा डिले आता है थोड़ा सा, शायद उसकी वजह से आप लेट हो गई थी. बट डजंट मैटर, आपका नाम मैंने ड्रॉ में ऐड कर लिया है. थैंक यू निशा फॉर कॉलिंग. टेक केयर.
2: थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक यू. टेक केयर. बाय.

0: PFSL, providing the best home loan advice for the last 20 years. Google PFSL today. Amma's Food, 100% authentic and pure as mother's love. And Indelible Homes, your building experts known for subdivisions. Visit indelblehomes.co.nz.
1: वैसे आज सुबह जापान एंड स्वीडन के बीच में 11 बजे मैच शुरू हो जाएगा. उसके बाद टूनिसिया नेदरलैंड्स के बीच में भी 11 बजे का ये मैच है. लेकिन फुल टाइम में इक्वाडोर जो है इनकी जीत हुई जर्मनी के अगेंस्ट, और साथ साथ आज कुराकाओ, इफ आई हैव नॉट प्रोनाउंस्ड इट राइट माय अपोलॉजीज, एंड कुते वोएर, अगेन माई अपोलॉजीज इफ आई एम नॉट प्रोनाउंस्ड इट राइट, वो 2-0 से आगे हैं. तो भाई अब क्या होने वाला है, मेक्सिको तो इस समय 9 पॉइंट्स पर बैठा हुआ है. आगे क्या होता है हमारे साथ साथ जुड़े रहिएगा.
2: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
3: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
4: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
5: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
6: वो भी आई लव यू वाला.
5: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
6: अच्छा आप दिलजीत हो?
5: आए आए बताओगे यार.
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99, on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jeku.
7: Turn up the heat with a Subway 6-inch spicy meal from just $16.50. Get a new peri peri style chicken sub or a Korean style barbecue steak sub, a drink and a cookie. Subway, good food, good value. Order yours now. Now, T's and C's apply.
8: Oh no, we'll be late.
9: We'll be all right. I'll call the AA.
10: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
11: Wo, Indelible Homes wali kahani sunao na.
12: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
13: And award goes to Indelible Homes.
12: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favourite Master Builder.
14: Kahani of Indelible Homes.
15: As a baby, I was burnt in hot water.
16: At 5, I got burnt when I got too close to a gas heater.
17: When I was a toddler, my feet were burnt from a hot bath.
18: Serious burns happen every day over winter. Remember, this National Burns Awareness Month, everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 44999 to make a $3 donation now.

0: डायरी।
1: सो आपने ड्रीम किया गोल्ड को, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लाइफ के परसेप्शन में कुछ वैल्यूबल प्रेशियस चीज़ें या कोई एसेट है, गुड इज़ गोल्ड, वो मैटर करता है। एक यूनिवर्सल कॉमन परसेप्शन है लोगों का कि कुछ वैल्यूबल चीज़ें या गोल्ड को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फीलिंग में आने लगती है, और इस तरह से आपको एक सेंस ऑफ समथिंग वेरी प्रेशियस इन योर लाइफ जो आप वैल्यू करते हैं, इसलिए शायद वो गोल्ड का कलर आपको बार बार आ रहा है नज़र। और ये एक चीज़ और हो सकती है कि ईदर समबडी इज़ फीलिंग वेरी प्रेशियस अबाउट यू, कुछ इंजॉय करने का मौका है, खुद को इम्पॉर्टेंट फील कराने का मौका है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का मौका है, मैं कह सकती हूँ। इमोशनल वेल्थ एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज एज गुड एज गोल्ड, इज़न्ट इट ट्रू। नेगेटिवली अगर मैं इसके बारे में कुछ बात करूँ, इट्स अ फियर ऑफ लॉस की कोई एसेट या कुछ ऐसा है जो आपका खो जाए शायद, ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो यू नेवर नो, आपका कुछ माइंड में चल रहा हो तो प्लीज़ पूरी डिटेल में बताइए। अगर आप जैसे लिख के टेक्स्ट भेजते हैं आई ड्रीम्ड ऑफ गोल्ड कलर या गोल्ड कलर से, तो यही इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट हाँ, आपकी ड्रीम के बारे में अब मंडे के दिन बात करेंगे। अगर किसी को कुछ और ड्रीम आ रहा है, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू आउट।
0: दिल से दिल तक।
1: सो निशा, आप सुन रहे हैं रोवा से, आपका टेक्स्ट आया है 9881, गौरव 7164 एंड राज 8900 आपका भी टेक्स्ट आया है। थैंक यू सो मच फॉर हमिंग अलोंग, दिस इज फॉर यू।

सर मूवी, मेरे को इतना याद है कि इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए अनु मलिक का कंपोजिशन बहुत ही खूबसूरत थी। 1993 की रिलीज़ की हुई इस ब्यूटीफुल सी म्यूज़िकल में मुझे ये पर्टिकुलर सॉन्ग आज तक पसंद आता है, और मुझे लगता है इस पे कितने ज़्यादा इस पे वीडियोस या आई थिंक रील्स वगैरह बनी होंगी। लेकिन अगर मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों की मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करूं और कुमार सानू के इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को मैं आप तक लेकर आऊं, एंड इतना ही कहूंगी कि इस गाने के साथ साथ वाकई जब कभी भी आप बारिश में जाएं उसकी धुन को सुनें और फिर आप उसमें एक अपना खुद का एहसास ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इस गाने

0: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज में, अभी तो नहीं।
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज़ न

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Winter's here, and so much to do at home. Fix the leak, clear the gutters, service the heat pump. When the to-do list calls, AA Home can help tackle all those winter jobs. Search AA Home to book a job today. Your trusted tradies on tap.
1: बाढ़ किसी वक्त भी आ सकती है। क्या आप तैयार हैं? बारिश शुरू होने का इंतजार ना करें। गटरों को साफ रखें, खुली चीजों को बांध लें। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखें। अभी की गई तैयारी बाद के तनाव से बचा सकती है। तूफान से आगे रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अधिक जानकारी के लिए विजिट aucklandemergencymanagement.gov.nz/floods.
2: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
3: Hum, time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited. Changing lives with logic.
4: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 11. People across the Wellington region are being urged to stay home if possible as a storm batters the lower North Island. Around 60 flights in and out of the capital have been cancelled this morning. Wind gusts reaching 110 km/h in the suburb of Kelburn, and they're yet to peak. Very windy in Taranaki too. The new Plymouth District Council asking residents not to call in missing bins today as strong winds litter them across roads. In the south, a number of trucks are stuck due to snow and ice in parts of Canterbury. NZTA says it follows a closure between Springfield and Arthur's Pass Village, and State Highway 8 is also still shut between Tekapo and Twizel. Today's planned firefighter strike has been canned due to the wild weather. They'll down tools on Wednesday next week instead. Watty Watson from the Professional Firefighters Union says talks are dragging on.
5: And the only way it's going to be resolved is the senior leadership are held to account financially and to be responsible for the bargaining to get it done.
4: A pedestrian has died after a crash west of Hamilton on State Highway 39. And overseas, King Charles has revealed how much he pays in tax, becoming the first monarch to do so. He paid just over 30 million New Zealand dollars for the 2024-25 period. In sport, a major upset at the Football World Cup, Ecuador coming from behind to beat Germany 2-1 on TVNZ+.
6: They were required to beat the four times champions of the world, and they did!
4: Elsewhere, Ivory Coast beat Curaçao 2-0. Football updates brought to you by Hisense. And in cricket, the Black Caps will start day two of the third and deciding test against England later on tonight on 361 for 4.
3: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill.
7: Hum par shok suchnaye aap tak laate hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
8: भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुबह के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनेश, जयंत, मनीष और रोविन जोखन की मां हॉटन स्ट्रीट सुबह की भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे वातुवाका सिमिट्री में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 022-332-6843 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, भूरा एंड जोखन लिमिटेड सुवा के स्वर्गीय जय नारायण जोखन की पत्नी रजनीश सेन, अंजनीश, जयंत, मोहनीश और रोविन जोखन की मां हॉटन स्ट्रीट सुवा फिजी के भूतपूर्व निवासी माउंट रॉस्किल की कमलावती जोखन क्योला की मृत्यु हो गई है। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे वातुवाका सिमेट्री में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 022-332-6843 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचित किया जाता है कि शैंटल और भावना के पिता ओसामा अली और मोहम्मद अली के ससुर कुशमिला मंसेल के पति गुडवुड हाइट मैनकाओ के कीत अयान मैंसल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 022-396-4660 पर आप संपर्क कर सकते हैं। सूचना दोबारा सुने, शैंटल और भावना के पिता ओसामा अली और मोहम्मद अली के ससुर कुशमिला मैंसल के पति गुडवुड हाइट मैनकाओ के कीत अयान मैंसल की मृत्यु मिडलमोर हॉस्पिटल में हो गई। अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे एंस फ्यूनरल होम अनाउंसेड क्रीमेशंस में किया जाएगा। जानकारी श्रद्धांजलि के लिए 022-396-4660 पर आप संपर्क करें।
7: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
3: वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय गो बनानास चाइल्ड केयर, वेयर लर्निंग इज फन। कॉल 0800-462626।
8: इट फील्स लाइक 12 डिग्रीज, वैसे दी हाइज ऑफ 14 ओवर नाइट, टेम्परेचर ऑफ 8। आज का फोकस बताया जा रहा है क्लाउड्स जो हैं ये आपको इस समय हवाओं के साथ बहते हुए ज़्यादा नज़र आएंगे एट 90 किलोमीटर्स की रफ्तार पर, और सनसेट 5:14 पर बताया गया है।

0: Factor.
1: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye kyunki aa rahi hai
2: My Time with Kashika.
3: Kia ora, namaskar and a very very good morning to you people. How are you? Studio ki ghadi mein is samay subah ke 11:05 hone wale hain. Aapka saath nibha rahi hu main Kashika all the way up till 12 बजे और उसके बाद आपका साथ निभाने के लिए केतन आ जाएंगे यहाँ पर स्टूडियो में. लेकिन हाँ भाई, ये आखिरी घंटा है माय टाइम के इस हफ्ते का, सो मेरा फ़र्ज बनता है आपको बताना कि आपका समय बहुत ही मूल्यवान है कि नहीं. देखो ना, ये रिमाइंड करते करते मेरा नाम ही आपने रिमाइंडर क्लॉक रख दिया है. कशिश फूड्स के सौजन्य से माय टाइम लेकर मैं कशिका आ जाती हूँ 10 से 12 बजे मंडे टू फ्राइडे, और मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको याद दिलाना कि आपकी ज़िंदगी आपके लिए एक ही बार आती है, जिसे आपको डेफिनेटली जीना है और बहुत अच्छी तरह जीना है. और जब तक आप उसमें थोड़े बहुत ठहराव नहीं लाएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना. ओके, अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग हमेशा यहाँ विंटर्स में फेस करते हैं, और दैट इज़ अबाउट अ विंडस्क्रीन. वो कई बार सुबह जब उठ के हम आने लगते हैं, काम पे कोल्ड होता है, आइसी होता है कि नहीं? डोंट यू रिलेट टू दिस? ओके, सी, इवन आई डू. ऐसा करते हैं, आप थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा मैं आगे चलती हूँ, इस गाने की तरफ हम बढ़ते हैं. बजाऊँ क्या? बजाती हूँ, उसके बाद आती हूँ.
0: जाओ क्या?

0: ये ठंड के टाइम हम लोग कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हम करते हैं अपनी गाड़ी को डिफ्रॉस्ट या डिफॉग करने की कोशिश करते हैं, विंडस्क्रीन को खासतौर पे. द ईजीएस्ट एंड द मोस्ट एसेसिबल वे इज़ रेगुलर टैप वाटर और कुछ अफेक्टेड एरिया पे. लेकिन इफ़ पानी का टेम्परेचर इज़ अबव फ्रीजिंग तो वो आइस की तरह बन जाता है. ठंडा पानी होता है वो आइस की तरह बन जाता है. यू कुड यूज़ अ वाटर बॉटल या कोई होज होता है और ऐसे में आपको वॉर्न किया जाता है कि बहुत ज़्यादा हॉट या बॉइलिंग वाटर इस्तेमाल मत कीजिएगा. डेफिनेटली ये रैपिड जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उससे आपके विंडस्क्रीन में क्रैक आना शुरू हो जाता है या ग्लास में जो लैमिनेटेड होता है उसमें क्रैक आना शुरू हो जाता है. इफ़ यू प्रेफर बैंक कार्ड या कोई प्लास्टिक कार्ड होता है उससे भी आप इसको स्क्रैच कर सकते हैं फ्रॉस्ट को. एंड प्रॉबेबली यू कैन बाय दोज यू नो वो एक वो बिल्ड स्क्रेपर्स होते हैं ना जो वो यू गेट दैम इन द मार्केट $2 स्टोर में. ज़रूर ट्राई कीजिए. कुछ डी आइसिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं और ये जो क्विकली आइस को मेल्ट कर देते हैं. एंड दे आर द वंस जो विंडस्क्रीन पर अवेलेबल होते हैं. कुछ चीज़ें वेराइटी ऑफ चीज़ें जिसमें प्रोपिलीन ग्लाइकोल होता है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं. डी आइसर के स्प्रेज होते हैं, एक सोल्यूशन होता है जिसमें विनेगर और पानी आप ऐड करके विंडस्क्रीन पर डालते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है. एंड साथ साथ कहा यह जाता है कि इफ़ यू हैव गॉट दिस फ्रॉस्ट, आइसी फ्रॉस्ट, पहली बात तो ये है एक ब्लैंकेट या टावल जो है अपने विंडस्क्रीन पर आप छोड़ दिया करें. वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है रात भर में. एंड इट्स वेरी इजी कि आप कुछ भी आइस क्रिस्टल्स जो फॉर्म होते हैं वो बार हटा सकते हैं आप. हाँ, कुछ लोग जो है वो लोग कहते हैं कि सुबह का जो सन पड़ता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. एक हॉट वाटर बॉटल ऊपर रख दीजिए पानी ना डालने के बजाय. इट शुड बी यू नो केप्ट देयर ताकि आप ब्रेकफास्ट से पहले पहले अगर आपने रख दिया तो वो हो सकता है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यही सजेशन किया जाता है कि सबसे पहले आप गाड़ी का हीटर ऑन कर दीजिए और फिर अपना ब्रश व्रश कीजिए दांत, ताकि वो उतने टाइम में सब कुछ वो मेल्ट हो जाए. और एक हाफ पोटैटो भी कभी कभी काफ़ी हद तक काम आ जाता है. अपने स्क्रीन को, विंडस्क्रीन को अगर आप डिफॉग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कोशिश कीजिए कि पानी को इवेपोरेट होने दीजिए. और अगर आपकी गाड़ी में एयर कंडीशनर है तो एक एंटी फॉग का वाइप या वो स्प्रे का एक ऑप्शन होता है उसमें, उससे भी आप कर सकते हैं. आई नो ठंड लगती है मगर दो मिनट की बात होती है, लेकिन ग्लास को आप डेफिनेटली प्रिवेंट करना होता है. एंड ये कुछ प्रोडक्ट्स जब आप अपने विंडस्क्रीन पर डालते हैं कभी कभी वो वाटर की ड्रॉपलेट्स नहीं बनाता. कुछ लोग जब इस्तेमाल करते हैं इनको स्प्रे कर देते हैं और वो फिर आइसिकल्स नहीं बनते हैं. आई विल ट्राई एंड फाइंड समथिंग लाइक दिस क्योंकि आपका टेक्स्ट आया था एंड आई वाज जस्ट रीडिंग दिस आउट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट अपनी गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर, गाड़ी को खोलिए और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर जो है उसको आप लोअर होने दीजिए और उसके बाद यू विल फील दैट या समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ओके, सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट. कोई सिक्स वर्ड स्टोरी है तो जरूर बताइए.
1: 80s के रेट्रो गाने

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. Jen didn't think she needed a DVS system.
2: Oh, I've got insulation in that.
1: But Jen had forgotten about the mould on her walls and curtains.
2: Ah, yeah.
1: So Jen got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier, plus mould and mildew free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
3: Reliance Ventilation System.
4: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
3: Moisture और ventilation का problem लगता है.
4: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
3: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
5: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18.
6: वो इंडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना.
7: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
8: Award goes to Indelible Homes.
7: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
9: Kahani of Indelible Homes.
10: Sun Tours के सक्सेसफुल मार्च 2026 बेस्ट ऑफ इंडिया टूर के बाद अब बुकिंग्स ओपन है फॉर बेस्ट ऑफ इंडिया सितंबर 2026 टूर. दिल्ली की शॉपिंग, आगरा का ताजमहल, जयपुर अमेर फोर्ट और एलिफेंट राइड, एलपी में हाउस बोट का एक्सपीरियंस और आमची मुंबई की बॉलीवुड स्टूडियोज विजिट विद ऑल बफे मील्स, फ्लाइट्स और फाइव स्टार अकोमोडेशन, ऑल फॉर जस्ट $8,500 पर पर्सन. कॉन्टेक्ट अनिल ऑन 0800 4 Sun Tours. दैट्स 0800 4 7 8 6 8 6. लिमिटेड स्पेसेस.
11: MediaWorks complaints. How can I help?
12: My kids won't shut up.
11: I'm not sure that's our problem.
12: They keep reciting lines from one of your radio ads.
11: Aw, cute.
12: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
13: What do you want, son?
14: I want me some of that real southern chicken.
12: 28 times.
11: So where are you now?
12: Eating chicken.
15: Advertise with
16: MediaWorks.
15: New Zealand listens to us.
17: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
18: Mid-morning Maza.
19: Six-word story.
20: So, six-word story, वैसे एक बात तो है कि इसे फॉर्म करने में आपके लिए एक बहुत खूबसूरत चीज़ हो जाती है, जहाँ आपकी एक स्किल जो है वो बहुत खूबसूरत रहती है और आपकी स्किल जो है आप उसमें बिलीव करते हैं कि हाँ आप इसे कर सकते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी उस समय बढ़ने लग जाती है. रिंग ऑन हर फिंगर ही सेलिब्रेटेड. रिंग ऑन हर फिंगर ही सेलिब्रेटेड. ओके, आई टेक दिस बिकॉज दिस एक्चुअली मेक सेंस. आपने एक कितनी बड़ी कहानी होगी शायद कि जो आप उसको आपने छोटा करके उसका सिनॉप्सिस बना दिया. तो जैसे कि मैंने एक बहुत पहले कहा था कि डेफ ईयर्स हर्ड आई लव यू. डेफ ईयर्स हर्ड आई लव यू. सो यस, इट मेड सो मच ऑफ सेंस. इट्स गॉट अ वेरी डीप मीनिंग बिहाइंड इट. तो अगर आप इस तरह की चीज़ें जो आप करते हैं, मैं इतना ही कह सकती हूँ, इसे ट्राई करें कोई भी सेंटेंस बना के उसको रिसाइज करने के लिए. और जब आप उसको रिसाइज करते हैं, आप नोट करेंगे कि आपने कुछ कॉन्कर किया है.
17: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स. बिल्ड योर ड्रीम्स.

सच्ची एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे बहुत एक्साइटमेंट देती है, जब न्यूजीलैंड का, जैसे उस दिन गोल्डन कीवी फ्रूट्स के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि एक्सपोर्ट एकदम से बूम हो गया था, ठीक इसी तरह से रॉकेट लैब ने एक सिक्योर किया है द नया नासा का कॉन्ट्रैक्ट टू लॉन्च 3 साइंटिफिक मिशंस फ्रॉम इट्स न्यूजीलैंड लॉन्च साइट, और ये फ्लाइट्स जो हैं 2027 में टेक ऑफ करने वाली हैं। ये कैलिफोर्निया के हेडक्वार्टर स्पेस कंपनी ने बताया कि नासा ने सेलेक्ट किया है इट्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट, जहां दो सेपरेट अर्थ

और सोलर साइंस मिशन जो हैं वो कैरी किए जाएंगे एंड दिस विल बी लॉन्चिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन ऑन माहिया पेनिनसुला. ये अग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में और मुझे लगता है कितना बड़ा, कितनी बड़ी फख्र की बात है जहाँ पे न्यूजीलैंड इज़ बैक, आई थिंक मोर लेस बैक ऑन ट्रैक, आई कैन से दैट. रॉकेट लैब के जो फाउंडर हैं सर पीटर बेक, इन्होंने बताया कि लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हाईलाइट कर रहा है द इलेक्ट्रॉन्स रेपुटेशन विद द US स्पेस एजेंसी. और इलेक्ट्रॉन्स जो है अब एक रिलायबिलिटी का सोर्स बन चुके हैं जहाँ एक ऑर्बिटरी एक्यूरेसी लेकर आते हैं और साथ साथ जो ये डिलीवर कर पाते हैं फॉर नासा. It's really amazing. My time with Kashika. Wow. How? I'm good.

0: सो वेलकम टू द जंगल एक ऐसी फिल्म है जो मैं कह सकती हूँ आप अपना माइंड लेके आप मत जाएं, आप जस्ट टू एंजॉय अ पर्टिकुलर जॉनर मूवी जहाँ पे इतने सारे स्टार्स हैं, वो एक अपने आप में एक ट्रीट है ना, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और जियो स्टूडियोज़ और साथ साथ अजय देवगन की थिएट्रिकल रिलीज़ 1 अक्टूबर के दिन होने वाली है, एंड दिस इज़ फॉर द मूवी चौहान। अब ये जो है इट्स ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लेट डायरेक्टर एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन जो अजय देवगन के फादर हैं। और ये अनाउंसमेंट हुआ कि ये एक पर्टिकुलर गाना था जो बज रहा था जो जुमा जुमा दे दे, और ये बैकड्रॉप में प्ले कर रहा था और डायलॉग चल रहा था कि पठानों से कहना चौहान आ रहा है। ओ माय गॉड, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस फर्स्ट कोलैब विच इज़ गोइंग टू हैपन बिटवीन जियो एंड देम। लेकिन ये चौहान जो है, ये फिल्म की कहानी कुछ पता नहीं चल रही कि क्या है, बट लुक्स थोड़ा डिफरेंट। 1 अक्टूबर के दिन ये पर्टिकुलर फिल्म जो है ये रिलीज की जाने वाली है, हमें इंतजार है।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
4: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424।
5: Say hello to the Club Plus Smart Shopping Buddies. They're here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. They'll help you scan, score and save on all the stuff you love. And there's a Smart Shopping Buddy for everyone, even you. So join Club Plus to meet yours and get the best of New World, Pack and Save and Foursquare. Find out more at clubplus.co.nz.
6: It's boarding time with Instant Kiwi. But where will you land? Hamilton or Hamilton Island? You never know. For your chance to win a mystery holiday for two, get a $5 cross-world ticket at your local Lotto NZ store and enter online. R18 T's and C's apply.
7: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit AMI.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927994399 और विजिट लीगल एसोसिएट्स.co.nz।

रेस्क्यू में, रिसाइकल में ऐसी कितनी सारी फन चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं. यू नो दिस समथिंग विच आई हैव डन माई सेल्फ, और मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी शायद कर सकते हैं. कुछ जार्स घर में जो होते हैं, जो हमारे पास आते हैं कांच के, हम इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल तरीका है. कुछ कन्फेटी पड़ी हुई है घर में, आप कन्फेटी ले लीजिए और उस कन्फेटी को उसके अंदर आप भरिए बॉटल के अंदर, और थोड़ी सी जगह छोड़िए उसके अंदर जहाँ पर आपके पास जो बैटरी ऑपरेटेड जो लाइट्स होती हैं उनको साथ में आप अगर ऐड कर दीजिए, दैट्स अबाउट इट. और साथ में आपने क्या करना है, वो लाइट्स और वो कन्फेटी को मिक्स करके, और फिर मतलब बहुत ज़्यादा कन्फेटी मत डालिएगा, लाइट्स दिखनी चाहिए, और वो अलग तरीके से आप यू नो चाहे कन्फेटी डालें, चाहे कुछ पेपर डालें, या बॉटल का कलर चेंज कर दें. इट डिपेंड्स अपॉन यू हाउ क्रिएटिव यू गेट विद इट. बोस जो है मार्केट में मिल जाते हैं, आपने आपने बॉटल को बंद किया हल्का सा, थोड़ा सा उसमें से आपने तार निकाल दिया ताकि ऑन ऑफ़ कर सकें, या अंदर भी ऑन ऑफ़ करने के बाद आप उसको कैमोफ्लाज कर सकते हैं जहाँ पे वो बैटरीज आप वापस ऐड करते हैं, उसका एक जो बटन हो यू नो होल्डर होता है उसको कवर कर सकते हैं, कैमोफ्लाज कर सकते हैं. ऊपर से आपने बो लगा दिया, और उसके बाद घर में कोई गेस्ट आता है, इतना खूबसूरत लगता है जब उसको आप लाइट अप करते हैं. मैं इसे कई तरीके से ट्राई कर चुकी हूँ घर में, और घर में जो वाजेस होते हैं, मैं मोस्टली वाजेस में भी कई जगह कई बार फ्लावर्स नहीं मिलते हैं विंटर के टाइम में, तो उस समय मैं यही करती हूँ कि आप उसके अंदर मैं मतलब लाइट्स डाल देती हूँ, और साथ साथ कुछ कपड़ा या कुछ जो कुछ होते जो भी जो मुझे नज़र आता है, आई ट्राई एंड पुट इट एंड इन्हेंस द होल थिंग. और इसी तरह इतना खूबसूरत एक लुक आ जाता है शाम के समय जब घर में गेस्ट आया, वो देखते कहेंगे वाओ इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग. लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है दैट ये ऑकलैंड में हंसाने के लिए आने वाले हैं सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शंस लेकर. ये नेक्स्ट फ्राइडे के दिन होने वाला है, इसे बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा. premierTickets.co.nz के जरिए टिकट खरीदिए, और ये गुजराती क्लासिक ह्यूमर आप सिद्धार्थ रंधेरिया गुज्जू भाई प्रोडक्शंस के जरिए देख सकते हैं. गुज्जू भाई ने ऑफर प्रीमियर टिकट्स के जरिए टिकट्स खरीदे. 3 जुलाई के दिन ये होने वाला है 7:30 बजे एट द विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर.

वैसे एक बात है कि कम्युनिटी में बहुत कुछ होता है, कम्युनिटी की आवाज़ बनकर हम आपके साथ देते हैं। buzz@mfm.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आज आखिरी दिन है जहां ऑकलैंड फिजी इलेक्शंस की वोटर की रजिस्ट्रेशन है जो हो रही है 12 बजे से 8 बजे तक एट द मैंगरी सेंटर पार्क 101 रॉबर्टसन रोड मैंगरी में आप पहुंच सकते हैं। ऑकलैंड रामायण संस्था जो है आज के दिन आपके लिए 7:15 बजे मासिक रामायण कथा लेकर आ रही है। रेस्ट कम्युनिटी सेंटर स्किप्टन में आप पहुँच सकते हैं, सबका इन्विटेशन है यहाँ पर। और इसी के साथ साथ मेरी ओर से इन्विटेशन अब आ रहा है टू नन अदर देन केतन, इनका साथ ज़रूर दीजिएगा। तो कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है शुक्रवार, मेरी मुलाकात आपके साथ होने वाली है दिन कहलाएगा सोमवार। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा एंड मेक श्योर अपने लिए थोड़ा सा टाइम कहीं से जरूर निकालिएगा। मंडे के दिन आपको मैं आकर पूछने ही वाली हूँ कि आपने क्या अपने लिए टाइम निकाला कि नहीं निकाला। सो दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज। डू लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड ड्राइव सेफ, मौसम खराब है, आराम आराम से। टेक केयर, बाय।